FM बैंड 102.1 MHz पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। सवेरे के 5:57 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल

0: और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बंधनवार से पहले चिंतन। आज का चिंतन है, जिंदगी का सबसे बेहतरीन उसूल है हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान कई परेशानियों की सबसे अच्छी दवा है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 6:30 का समय हुआ है। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस का भाग 210 आप सुनेंगे। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिएगा श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला का भाग 5 प्रसारित होगा। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस। ये कार्यक्रम आप पुनः शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। सात बजे सुनिएगा भूले बिसरे गीत। हम हैं राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। 8:15 पर और पुनः दोपहर 2 बजे सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनिस। इसका भाग 31 आज प्रसारित होगा। सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रलोक।

9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर। इस कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे रात पुनः 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत आज सुबह 10 बजे हेलो फरमाइश। ग्यारह बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। 12:05 पर सजाई जाएगी यादों की महफिल। सुरीला सफर आप तय करेंगे दोपहर 1 बजे। 2:30 पर आनंद लीजिएगा सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। 3 बजे सुनिएगा हेलो सहेली। पिटारा के अंतर्गत शाम 4 बजे आपको सुनवाई जाएगी गीतों भरी कहानी। कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का है। 5 बजे सुनिएगा छाया गीत। 5:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर शाम को वक्त होता है कार्यक्रम संध्या रंजन का। 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा गजलों से सजा गुलदस्ता। 8 बजे आप सुनेंगे हवा महल के अंतर्गत झलकी जरा सी आंख लग गई। लेखन और निर्देशन गिरिंद्र प्रसाद का है।

आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे। रात्रि 10 बजे सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर राजुल अशोक का है। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर और रात्रि 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोखा में। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का भाग 210।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की

शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे खास मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। आज सुनिए इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: रविंद्र जी, तबले के दौर की बात हो रही है तो तीन ताल की हमने पिछले कड़ियों में बात की। हाँ। तीन ताल के अलावा फिल्म संगीत में और कौन से ताल है जिनका उपयोग किया गया है?
2: जी, तीन ताल के अलावा शास्त्रीय संगीत के ख्याल गायन में जो ताल हम लोग संगत के लिए लेते हैं
1: जी,
2: उसमें भी एक है कि तीन ताल की जैसी खूबसूरती है तो वैसी ही खूबसूरती है रूपक ताल की। ये सात मात्रा का ताल है, ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना। तो ये रूपक ताल जो है इसकी विशेषता ये रही है कि रूपक ताल में कई सारे गीत फिल्मों में आए हैं और ज्यादातर गीत जो रूपक ताल में बने हैं वो सारे के सारे गाने

0: बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वो जो है सात मात्रा का चक्र जो है
1: जी,
0: वो इतनी खूबसूरती से आता है कि वो बड़ा लुभावना बन जाता है। तो ऐसे कई सारे गाने हैं रूपक ताल के
1: जी। और जहां तक मेरा ख्याल है ये एक ही ताल है जिसकी शुरुआत खाली से होती है।
0: हाँ, खाली से होती है, ती पर खाली है, ती ती ना धी ना धी ना
1: जी,
0: तो वो खाली से शुरू होने वाला ये,
1: और ये निरालापन ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है।
0: बिल्कुल,
1: और इसी वजह से वो सारे गीत जिसमें निबद्ध होते हैं रूपक में,
0: हाँ हाँ,
1: तो बड़े सुनने को
0: बहुत ही
1: प्रिय होते हैं। तो इस ताल में निबद्ध कौन सा गीत हम सुनने वाले हैं?
0: आपकी नजरों ने समझा।
1: क्या बात है, अनपढ़ फिल्म का बहुत ही सुंदर गाना है, लता जी के स्वर में, मदन मोहन साहब की संगीत रचना
0: जी।
1: आइए सुनते हैं।

0: व्यापक ताल में निबद्ध ये गीत हम सुन रहे थे अनपढ़ फिल्म से। रविंद्र जी, रूपक के बाद अब किस ताल की चर्चा करेंगे?
1: रूपक से ही बहुत करीबी रिश्ता रखता है। जैसे रूपक की 7 मात्रा है,
0: जी जी,
1: तो उसकी दुगनी 14 मात्रा, 14 मात्रा का दीपचंदी ताल है। अभी ये जो है रूपक जो है वो ती ती ना धी ना धी ना ती, ये रूपक है। और दीपचंदी जो है वो धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा, तो ये जो है ये रूपक है के साथ में ही दीपचंदी है, जो दीपचंदी 14 मात्रा का ताल है। तो दीपचंदी की भी कई सारी रचनाएं हुई है, और इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि रूपक का जो गीत है वो हम दीपचंदी में भी गा ले या दीपचंदी का जो गीत है वो हम रूपक में भी गा ले,
0: ऐसा नहीं होता।
1: ऐसा नहीं होता क्योंकि वो दोनों ताल की अपनी अपनी खूबसूरती है और अपना अपना उनका एक लहजा है, तो उसी लहजे में वो आता है। इसलिए दीपचंदी के गीतों का भी एक अपना सौंदर्य है, बहुत अच्छा लगता है।
0: मिसाल के तौर पे कौन सा गाना
1: दीपचंदी में? अजीर उठकर अब कहाँ जाइए,
0: आरजू फिल्म की बात आप कर रहे हैं।
1: जी जी
0: जी जी जी, बहुत ही सुंदर गीत है जो राग देश पर आधारित है, और दीपचंदी में निबद्ध इस गीत को पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर आगे।

0: श्रोताओं, शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ गीत आप सुन रहे थे फिल्म आरजू से, लता मंगेशकर का स्वर। ऐसा ही एक और गीत है रविंद्र जी,
1: जी
0: कश्मीर की कली फिल्म से।
1: हाँ।
0: ये भी ताल दीप चंदी में निबद्ध है।
1: हाँ।
0: इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: इशारों इशारों में दिल लेने वाले,
0: इसकी भी झलक सुनते चले।
1: बिल्कुल। हाँ।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये थी झलक कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत की, जो ताल दीपचंदी में निबद्ध है और राग पहाड़ी पर आधारित है। संगीतकार ओपी नैयर। रविंद्र जी, रूपक 7 मात्रा का ताल है और दीपचंदी 14 मात्रा का।
1: हाँ।
0: फिर इन दोनों तालों का एक साथ प्रयोग किसी गीत में कभी हुआ है?
1: बिल्कुल हुआ है, और वो जो गीत है वो मेरे ख्याल से सभी का बड़ा प्रिय गीत है, वो पिया तो से नैना लागे रे। बहुत ही खूबसूरत गाना है और कई सारी विशेषताएं इसमें है। एसडी बर्मन साहब का मतलब बहुत ही अच्छा प्रयोग हम कह सकते हैं। ये इसमें जो है ना वो है तालवाद्य कचेरी।
0: जी,
1: तालवाद्य कचेरी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे तालवाद्य है और उन तालवाद्यों का सोलो परफॉर्मेंस। तो तालवाद्य कचेरी के तो अपने स्वतंत्र कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसको ये फिल्म गीतों में लाना एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है, और जो एसडी बर्मन साहब ने किया है तो पिया तो से नैना लागे में ये जो गीत है तो इसमें वो तालवाद्य कचेरी अंत में बजती है, लेकिन ये जो गाना है इसमें रूपक भी है और उसके साथ साथ दीपचंदी भी है। तो दीपचंदी और रूपक दोनों को सुनने का मजा इसमें है, इस गाने में। मतलब जो उसका वजन एक बार रूपक का है एक बार दीपचंदी का है, दोनों बहुत ही अच्छा लगते हैं। और एक इसमें बहुत अच्छा प्रयोग है जो है कि तबले का उपयोग फिलर की तौर पर, मतलब इंटरलूड।
0: अच्छा।
1: जो गाने के बीच में जैसे वो शब्द आता है पिया तो से धगने धिन्न धनना ना ना ना, तो ये जो छोटा सा पीस है जिसको हम इंटरलूड कहते हैं, तो अक्सर वो किसी इंस्ट्रूमेंट पे बजाते हैं ये इस गाने में।

0: रूपक ताल और दीपचंदी ताल का साथ साथ प्रयोग जिस गीत में किया गया, गाइड फिल्म का वही गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता जी के स्वर में, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आज हमने आपको सुनवाई इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर होंगे।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूं। मैं पूजा नरानिया, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, जिसे गाया है मुकेश ने। भरत व्यास के बोल हैं, सतीश भाटिया का संगीत। फिल्म का नाम बूंद जो बन गई मोती।
1: हरी हरी वसुंध

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव।

0: मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम भूलिए बिसरे गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पतंगा से शमशाद बेगम का गाया गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने, सी रामचंद्र का संगीत है।

अभी आपने शमशाद बेगम का गाया गीत सुना. अब आपको सुनवा रहे हैं तुलसीदास फिल्म से आशा भोसले और साथियों के स्वरों में जीएस नेपाली का लिखा गीत. धुन बनाई है चित्रगुप्त ने.

0: अभी आपने सुना आशा भोसले और साथियों के स्वरों में ये गीत, और आइए अब सुनते हैं ये संदेश, और संदेश के बाद लेते हैं एक अंतराल।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: श्रोताओं, भूले बिसरे गीत में इस वक्त हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।

इस छोटे से अंतराल के बाद कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत। फिल्म का नाम है नास्तिक। प्रदीप ने इस गीत को लिखा है, सी रामचंद्र ने संगीत से सजाया है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मेला से ये गीत। शमशाद बेगम और मुकेश के युगल स्वर हैं। शकील बदायूनी का लिखा गीत, नौशाद अली का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म शर्त से ये गीत, जिसे लिखा है SH बिहारी ने। गायक कलाकार और संगीतकार हेमंत कुमार।

अब आपको सुनवा रहे हैं मयूर पंख फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत। रचना हसरत जयपुरी की है और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

मयूर पंख फिल्म से लता मंगेशकर का गाया ये गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ में कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।

कार्यक्रम हम है राही प्यार की लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं हूँ पूजा नारानिया, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम की शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से। आशा भोसले और अनवर की आवाजें, निदा फाजली के बोल, धुन बनाई है खयाम ने।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार की, चुपके चुपके। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में। आनंद बख्शी की रचना है, धुन बनाई है एस डी बर्मन ने।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हम है राही प्यार की इस कार्यक्रम में सुनिए अगला गीत हमारा संसार फिल्म से।

अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की में स्वागत है। आपको सुनवा रहे थे हमारा संसार फिल्म का गीत महेंद्र कपूर और हेमलता की आवाजों में। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

जिगरी दोस्त इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: मस्ताने का इश्क है दीवाने का और तीर होता है निशाने का मेरी तू।
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम नाइट इन लंदन।

नहीं, मैंने तो नहीं।

आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया गीत राजेंद्र कृष्ण की रचना है, तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की फिल्म का नाम प्यार किए जा।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में प्यार किए जाए इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की यही संपन्न होता है।

0: श्रोताओं, FM बैंड 102.1 MHz पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को फोर

0: बनाने की भी आधारशिला रखेंगे जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
3: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विशेषज्ञों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
2: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के

0: में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

0: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे, लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं स्वीकार किया मैंने फिल्म से, गीतकार निधा फाजली, संगीतकार उषा खन्ना, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म उमराव जान से ये गीत। इस गीत को गाया है तलत अजीज़ ने, बोल है शहरयार के और संगीत है खयाम का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिर में आपको सुनवाते हैं साथ साथ फिल्म से ये गीत। बोल है जावेद अख्तर के संगीत है, कुलदीप सिंह का, और इस गीत को गाया है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने।

0: 27 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये FM सन सिटी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार

0: हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, आप सभी प्रिय श्रोताओं का स्वागत है आप ही के अपने फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर जो प्रोग्राम इस वक्त ट्यून्ड है आप सभी के रेडियो सेट पर, उसका नाम है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। बिल्कुल श्रोताओं, आज एक नया दिन, नए दिन की नई सुबह और नई सुबह के साथ नई ऊर्जा के साथ स्वागत है आप सभी का। आप जुड़िए हमसे क्योंकि आज प्रोग्राम में बहुत सी बातें और बेहतरीन से गीत सुनवाए जाएंगे आपको।
1: आज का खास दिन प्रकृति के नाम, बहुत सारी बातें होंगी प्रकृति से जुड़ी हुई। प्रकृति किस तरह से हमारे जीवन का श्रृंगार बन जाती है, हमारे जीवन का आधार बन जाती है, और भी होंगी तमाम बातें खूबसूरत नए नवेले गीतों के साथ। लेकिन ये सब बातें आप तक पहुंचा रही है जो नमस्कार की क्रिएटिव टीम, उसका परिचय आपसे करवा देते हैं। पहले
0: तो श्रोताओं, ट्रांसमीटर से है कैलाश चंद्र सोलंकी और सीएल सोनी।
1: तकनीकी सहयोग के लिए इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद है इंजीनियर प्रवीण कुमार।
0: अनाउंसर ऑन ड्यूटी हमारे साथ है आकांक्षा वैष्णव और एफएम चैनल पर है कल्याण विष्णु।

0: नमस्कार कार्यक्रम का संयोजन और प्रस्तुति है राजेश राम रोड की।
1: और इन सभी के साथ मैं सूफिया
0: और मैं स्वाति। आज के नमस्कार में है आपके हम सफर, बहुत सारी बातें, बहुत सारे गीत और कार्यक्रम का आगाज इस खूबसूरत से गीत के साथ जो कि है फिल्म जब हैरी मेट सेजल से, और ले जाएंगे आपको जाने कहां हवाएं।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: हम ट्यून्ड हैं इस वक्त मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ। ये जो खूबसूरत गीत हवाएं आपने सुना, और ये हवाएं जो हैं वैसे अभी हमारे राजस्थान में तो इन हवाओं का एक अलग ही परचम लहरा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जो घनघोर आंधी आई थी और उसने पूरे इस मौसम का मिजाज ही बदल दिया था, उसके बाद भी हवाएं तेज ही हैं। हालांकि एक तरफ तो अच्छा लगता है कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है ना सोफिया, थोड़ी गर्मी से राहत
1: मिलती है जून के महीने में।
0: हाँ, जून के महीने में। लेकिन इन हवाओं के कारण एक मुश्किल ये भी आती है कि इधर हम घर की सफाई करते हैं, इधर तेज हवाएं हैं, धूल मिट्टी आ रही है तो घर भी थोड़ा गंदा हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम रेगिस्तान के बाशिंदे हैं, धूल से तो हमें एलर्जी होती ही नहीं है एक तरह से। लेकिन एक बात सोचने लायक है कि ये कभी कभी जो अचानक से ये आंधी तूफान आ जाते हैं, या कभी एकदम तेज गर्मी है, अचानक से मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम विशेषज्ञ कहते हैं कि ये अल नीनो का प्रभाव है। और ये अल नीनो का प्रभाव इसलिए है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग इसलिए है क्योंकि हमने ही तो अपने इस जलवायु का जो ये चक्र हुआ करता था, बहुत सामान्य रूप से चला करता था, उसको हमने अपने ही क्रियाकलापों से बिगाड़ दिया है। प्रदूषण जो हम फैला रहे हैं, प्लास्टिक का कचरा फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब इसके लिए जिम्मेदार तो है ही।
1: बिल्कुल स्वाति, ये जिम्मेदार है, हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम जो है प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर नहीं चलते हैं।
0: हाँ।
1: और इसीलिए जलवायु संकट जो है वो दिन ब दिन उभर रहा है, और साल भर साल जो है इसकी जो स्थिति है वो बदतर होती जा रही है।
0: हाँ।
1: प्रयास बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस दिन पे तो बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आगे आगे जीवन बढ़ता है तो सारी चीजें जो है हम भूलते जाते हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन हम अपनी शायद भारतीय संस्कृति को भी भूल रहे हैं, जहां पर हम पृथ्वी को, इस वसुंधरा को हम अपनी माँ के समान मानते थे।
1: बिल्कुल, वृक्षों की जो है पूजा की जाती है।
0: बिल्कुल,
1: और ये संस्कृति हमारी सिखाती है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए सिर्फ जो रोज की आदतें हैं उसमें हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति जो है वो भी हमें यही सिखाती है।
0: बिल्कुल सोफिया, तो हम और तुम तो आज संकल्प ले ही लेते हैं कि आज से ही हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी हमसे छोटे छोटे सार्थक प्रयास हो सकेंगे वो जरूर करेंगे। कैसे होंगे वो प्रयास वो भी जानेंगे इस खूबसूरत से गीत के बाद, जो कि है जावेद अली की आवाज में, नाफरमानिया।

0: यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पता है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खुले पैसों की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है।
4: हाँ, रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे प्रमुख यूपीआई मोड से डिजिटल माध्यम द्वारा कर सकते हैं।
3: इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर, पार्सल ऑफिस, गुड्स एवं अन्य सभी स्थानों पर QR कोड स्थापित किए गए हैं।
4: डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है, बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
3: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ, उत्तर पश्चिम रेलवे।

0: सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ किए जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ उत्तर पश्चिम रेलवे।

0: इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार इस वक्त ट्यून्ड है आप सभी के रेडियो सेट पर आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर। ये जो खूबसूरत गीत अभी आपने सुना ना फरमानिया, इसमें जावेद अली का साथ दिया था श्रेया घोषाल ने। लेकिन जब ना फरमानियों की बात आती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी ना फरमानियां कर रहे हैं? जो प्रकृति हमें खूबसूरती का संदेश दे रही है, शांति का संदेश दे रही है, और वहीं जीवन का जो मधुर संगीत है वो भी तो हमें प्रकृति के हर एक जो तत्व है उसमें सुनाई देता है, समझ में आता है, उसका एहसास भी हमें पता चलता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं उसमें हम इन सब एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं? जैसे सपोज आप कहीं पर भी किसी फंक्शन में गए हैं, वहां आप डिस्पोजेबल ग्लासेस का प्रयोग कर रहे हैं। आपने एक घूंट पानी पिया, एक ग्लास का प्रयोग किया, थोड़ी देर में, अभी गर्मी है पानी भी ज्यादा पीना होता है, फिर थोड़ी देर में दूसरा घूंट पानी पीने के लिए फिर नई ग्लास उठाई। आप सोचिए ना, ऐसे अगर आपने 10 बार पानी पिया है, 10 ग्लासें आपने अगर प्लास्टिक की डिस्पोजेबल ग्लासें आपने कचरे में डाली हैं, तो सोचिए प्रकृति पर कितना भार बढ़ा दिया है। तो फिर क्या कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, भार तो बढ़ा है और हम ही ने बढ़ाया है। और जो अभी की जो स्थिति है उसमें जो ये सिंगल यूज वाला जो चीज है वो बहुत ज्यादा हो रही है। ये आसानी तो है हमारे लिए, लेकिन ये पर्यावरण के लिए उतनी ही खतरनाक हो रही है। और सिंगल यूज हमारी जिंदगी बेहद आसान बनाता है, लेकिन एनवायरमेंट के लिए खराब है। और आसानी से ये जो चीजें हैं, प्लास्टिक है।

0: वो नालों को जो है वो जाम कर देती है, और
1: बिल्कुल।
0: अभी बारिश आने वाली है तो फिर क्या स्थिति होगी ये हम और आप अंदाजा लगा ही सकते
1: अरे तुमने
0: हैं।
1: तो मतलब ऐसी मेरी कल्पना में ये ला दिया है दृश्य कि अगर ये बरसाती नाले और बारिश आने पर जो उफनते हुए ये सारा गंदगी के साथ कचरा और पानी सड़कों पर फैल गए, सोचे ना हम ही तो परेशान हो रहे हैं ना।
0: हम ही परेशान हो रहे हैं और वजह भी हम ही हैं, क्योंकि
1: हाँ
0: अगर हम ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का तो जो आने वाली चीज़ें खराब चीज़ें हो रही है उन पे हम थोड़ा काम कर सकते हैं। अगर हम पहले काम करें तो जो चीज़ें आ रही है खराब हो रही है वो बेहतर होगी, खराब
1: बिल्कुल।
0: नहीं होगी।
1: सो फिर मैं तो एक काम आजकल किया करती हूँ कि जब भी सपोज किसी फंक्शन में जाना है या कहीं पर भी, अपने साथ घर से ही एक स्टील की बॉटल कैरी कर लेती हूँ
0: बिल्कुल
1: पानी भर के। अगर वहां पानी की व्यवस्था है तो अपनी ही बॉटल भरती हूँ, क्यों सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो यूज करके प्रकृति पर भार डालना। और ऐसा नहीं है, बैग्स पर्स हम सबके पास होते हैं, एक छोटी बॉटल कैरी करने में कोई नुकसान नहीं है। और एक पतला कपड़े का थैला, जैसे हम
0: बिल्कुल
1: मोबाइल कैरी करते हैं, मोबाइल के वजन से तो 10 गुना कम वजन होता है एक पतले कपड़े के थैले का। और आजकल तो ये इतने अच्छे तरीके के मिलते भी हैं कि इनको कैरी करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर हम अपने साथ अपने पॉकेट में या पर्स में इस तरह का कपड़े का थैला, या अगर आप टू व्हीलर यूज कर रहे हैं तो गाड़ी की डिक्की में आपने कपड़े का थैला रख दिया, तो न तो आपको भार उठाना पड़ेगा, लेकिन प्रकृति के प्रति ये एक आपका छोटा सा योगदान प्रकृति को बहुत खूबसूरत बना देगा। तो सोफिया, आज तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में भी एक थैला मैं रखने वाली हूँ।
0: बिल्कुल
1: तो प्रकृति के साथ भी हम इस खूबसूरती को साझा करें, उसके संवर्धन में अपना सहयोग करें। इसी की आशा के साथ ये खूबसूरत सा गीत आपके नाम, जो कि है विशाल मिश्रा की आवाज में।

0: तेरी सूरत देख के नजरें हटाना मुश्किल है। बिल्कुल विशाल मिश्रा के साथ दिया इस खूबसूरत के से गीत में हंसिका पारेख ने। और नजरें अगर प्रकृति की खूबसूरती पर टिक जाएं तो भी नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है ना सोफिया?
1: बिल्कुल, नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रकृति हमें इतने अच्छे अच्छे तोहफे जो देती है अपनी चीजों से, तो उनसे जुड़ना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन
0: लेकिन
1: इसकी जो देखभाल या ध्यान की बात आती है वो बहुत मुश्किल है।
0: हाँ, और हमने इस मुश्किल काम को और ज्यादा मुश्किल कर दिया है क्योंकि चाहे जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट है अगर हम उसका सही ढंग से निस्तारण नहीं कर रहे हैं, हमारे जो व्हीकल इतने दौड़ रहे हैं, गाड़ियां टू व्हीलर फोर व्हीलर या थ्री व्हीलर जितने भी दौड़ रहे हैं, अगर हमने उनका ढंग से पॉल्यूशन चेक नहीं करवाया है और वो अगर धुआं छोड़ रहे हैं तो क्या ये प्रकृति के प्रति हम अपराध नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल, इसका एक उपाय ये भी हो सकता है कि जो वाहनों के प्रति हमारी जो निर्भरता है वो थोड़ी कम हो।
0: हाँ, अगर आसपास ही कहीं सब्जी लेने जाना है या थोड़ा सा दूर
1: तो
0: जाना
1: हम थोड़ा
0: है
1: सा पैदल चल ले तो ये कितना फायदेमंद होगा। हाँ, हमारी सेहत के लिए भी
0: सेहत
1: होगा
0: के
1: और
0: लिए भी।
1: पर्यावरण के लिए तो अपने आप ही होगा, क्योंकि पेट्रोल पर जितनी निर्भरता कम होगी उतना ही पर्यावरण दूषित नहीं होगा।
0: बिल्कुल, तो आजकल उसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है ईवी वाले व्हीकल।
1: बिल्कुल,
0: और इसके साथ ही अगर हम अपने दैनिक जीवन में भी सौर ऊर्जा पे और पवन ऊर्जा पे निर्भरता रखें थोड़ी सी तो फिर जो काम है वो आसान भी हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है कि मेरे यहाँ पर पिछले लगभग लगभग 40 से 42 साल हो गए हैं सोलर कुकर का प्रयोग होता है। और हमारी जोधपुर जो सनसिटी है, सोचिए सोलर कुकर का हम बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर दिन भर धूप आती है आपके घर में तो आप बहुत आसानी से और लगभग न्यूनतम खर्च है, मतलब बहुत जीरो मेंटेनेंस प्रोडक्ट है ये, और अगर इसमें थोड़ा भी हम खाना अपना शिफ्ट कर सकें, जैसे सूजी सीखना है बहुत
1: बिल्कुल
0: एक महिलाओं के लिए घर में रोजमर्रा की चीज है सूजी, तो बहुत आसानी से बहुत अच्छे से हो जाता है। या आलू उबालने हो, टमाटर उबालने हो, सूप बनाना हो, सर्दियों में अगर आपको खाना गर्म रखना है, बना दिया आपने और उसके बाद गर्म रखना है, इन सब के लिए बहुत अच्छे से सोलर कुकर का प्रयोग हो
1: बिल्कुल,
0: सकता
1: ये
0: है।
1: गृहिणियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि अचानक से अगर गैस खत्म हो गया तो
0: हाँ,
1: थोड़ी चीजें जो है उस पे यूज हो सकती
0: यूज
1: है।
0: हो सकती है, यानी निर्भरता हम कम
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं। तो बस प्रकृति की खूबसूरती बनाए रखें और इस खूबसूरत से गीत को हम उसका आनंद लें जो हमें प्रकृति के रंग में ही रंग देगा, ओ रंगरेज।

0: श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में बजने वाले हैं सुबह के 9। हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर से लौटेंगे नमस्कार कार्यक्रम में ठीक 9:10 पर।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। सुनेंगे

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस आज, प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत ये दिवस वर्ष 1973 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत से प्रेरित होकर हम सभी मिशन लाइफ की भावना से काम करते रहेंगे, साथ ही हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी से प्रकृति संरक्षण, जल संवर्धन, वृक्षारोपण और पर्यावरण संतुलन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया है। इस अवसर पर प्रदेश में आज से हरियालो राजस्थान 2026 अभियान शुरू होगा। राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर करेंगे। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी शुरुआत होगी। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के दौरान इस मानसून सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पर्यावरण दिवस पर समारोह रखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। प्रदेश में गंगा दशमी से शुरू हुए 15 दिन के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भी आज समापन हो रहा है।

0: अभियान के तहत आज जिला स्तरीय समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान दिए जाएंगे। अजमेर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बूढ़ा पुष्कर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान के तहत जन भागीदारी से जल संरक्षण से जुड़े कई कार्य किए गए।
1: जिले भर में अभियान के दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी की कई प्रेरक सफलताएं सामने आई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की सफाई, जल संग्रहण संरचनाओं के पुनर्जीवन और पौधरोपण गतिविधियों ने लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज समापन अवसर पर जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन, तुलसी पौध वितरण, हरियाणा राजस्थान अभियान की तैयारियां तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान ने जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने विश्व भर के खिलाड़ियों से चैंपियनशिप के बाद भी लोगों को योग के प्रति जागरूक करते रहने का आग्रह किया।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: 8 जून तक चलने वाली इस योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। गौरतलब है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को अलग अलग श्रेणियों में 6 पुरस्कार मिले हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ये सम्मान प्रदान किए। योजना के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में राजस्थान को मई महीने के दौरान रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के सर्वाधिक आवेदन, इंस्टॉलेशन और वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में 2रा पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार 90 लाख से 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं वाले राज्यों की श्रेणी में दिया गया। इसी तरह सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन वाले 10 जिलों की श्रेणी में जयपुर को 7वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। ऊर्जा सचिव और राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिली है। वे कल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क तंत्र को मजबूत, सुरक्षित और व्यापक बनाने के लिए उनकी सरकार बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सड़कों का निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जालौर झालावाड़, श्रीगंगानगर कोटपुतली, अजमेर बांसवाड़ा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के संबंध में चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाकर उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। मीडिया से बातचीत में श्री डांगी ने कहा कि वे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। श्री डांगी ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्र और राज्य नेतृत्व का आभार जताया। दूसरी ओर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर

जर ने भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने कल रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। गौरतलब है कि इन तीन सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में एक नए परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने से कल राजधानी जयपुर सहित 7 शहरों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाएं भी चलीं। सवाईमाधोपुर में रात से ही रुक रुक कर बरसात का दौर चलता रहा। भीलवाड़ा में कभी रिमझिम और कभी तेज बरसात का दौर जारी रहा। जिले के गुलाबपुरा, आसींद, शाहपुरा, जहाजपुरा और मांडलगढ़ सहित भीलवाड़ा में हुई बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों का कहना है कि कपास की फसल में ये बारिश फायदेमंद साबित होगी। पाली में अल सुबह तेज अंधड़ से पेड़ और होल्डिंग्स गिर गए। भरतपुर में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई। कोटपुतली, बहरोड के नारायणपुर, विराटनगर और पावटा सहित विभिन्न स्थानों पर कल रात बारिश हुई। इससे कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आंधी और बरसात के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की आशंका जताई है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून केरलम पहुंच गया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 28 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस आज। प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले। और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर आप और हम जुड़ चुके हैं उस खास प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार, हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी खास मुलाकात जो है हमारी, वो आज के इस प्रोग्राम में होने वाली है। कौन है वो जो अपने कार्यों से इस पर्यावरण को दे रही हैं संरक्षण, उनका संस्थान भी जुटा हुआ है इस मरुस्थल को हरा भरा करने में, वो जानेंगे। क्योंकि आज हमारी खास जो मेहमान है हमसे खास बात करने के लिए पर्यावरण से जुड़ी हुई, वो हमारे बीच स्टूडियो में आ चुकी हैं। लेकिन उनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले ये खूबसूरत सा गीत जो इमोशंस जोड़ता है हमारे प्रकृति के कुछ खास तत्वों के साथ, यानी कि चांद सितारे फूलों के साथ।

आज है 5 जून और आज है पर्यावरण दिवस और बहुत सारी बातें जानेंगे कि आज क्यों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन उन सब बातों से पहले आज जो खास मेहमान हमारे साथ नमस्कार कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, आ चुकी हैं हमारे स्टूडियो में, वो हैं श्रीमती भावना शर्मा जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज डिविजन में हमारे अपने आफ्री यानी कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और खास तौर पर ये जो भी जंगल की मिट्टी है उसका रिहैबिलिटेशन और रेस्टोरेशन कैसे किया जाए ताकि अलग अलग जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया है वो अपग्रेड हो सके, उस सॉइल की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो सके। और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, गुजरात और दादरा नगर हवेली और दमन दीव में भी इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं। इन सारे प्रोजेक्ट्स को आफ्री कैसे मेंटेन करता है, कैसे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रहा है, उसके लिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आ चुकी हैं श्रीमती भावना शर्मा जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं, और इनसे बातचीत करेंगी सोफिया खान।

0: बिल्कुल भावना जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 जून है जैसा कि हम सभी जानते हैं और विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस जिस पे बातें तो खूब सारी होती है लेकिन काम जो है वो क्या क्या किए जाए इस पे आप हमें अपने श्रोताओं को रेडियो के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे?
1: धन्यवाद सोफिया जी। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि आज 5 जून पर्यावरण दिवस है और इस बार पर्यावरण दिवस की थीम है क्लाइमेट एक्शन और एक जो अभियान संदेश है वो #NowForClimate है। यानी हमें अपने पर्यावरण के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता तथा सामूहिक और त्वरित कार्यवाही का संदेश देता है कि अब वो समय है कि अब हमें सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अब हमें अपने कार्यों को शुरू करना है। तो इसमें हम पर्यावरण से जुड़े सभी जो कार्य हैं जैसे कि पौधारोपण, प्लास्टिक को यूज कम करना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पोल्यूशन में कम योगदान देना, ये सारे कार्य करके हम अपने पर्यावरण को और अपने क्लाइमेट को
0: बचा सकते,
1: स्वस्थ कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है इसको बंद करने के लिए फिलहाल क्या विकल्प मौजूद हैं?
1: जी देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक अभी पर्यावरण के लिए बहुत ही गंभीर चुनौती बना हुआ है क्योंकि एक तो हमारे विश्व की जनसंख्या इतनी है और इतने लोग अगर सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है ये पर्यावरण के लिए भी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन इसके विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं, बस आवश्यकता है हमें अपने कम्फर्ट जोन से निकलकर उन विकल्पों को अपनाने की और हम सबका थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट वास्तव में सिंगल यूज प्लास्टिक को के उपयोग को कम करके पृथ्वी को बचाने में सहयोग कर सकता है। जैसे सबसे पहली बात की लोग जो शॉपिंग के लिए या सामान के लिए हम अपने कपड़े या जूट के बैग को जो पहले यूज करते थे उसी तरह हम यूज करें। दूसरा, हम जो कागज और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग है उसका उपयोग करें, प्लास्टिक की जगह पैकेजिंग में उपयोग उस तरह करें, और स्टील, मिट्टी और कांच के बर्तन का यूज करें। हमारे यहाँ मिट्टी का भी विकल्प है यूज एंड थ्रो के लिए। तो अगर हम ध्यान से देखें, बांस है पैकेजिंग मटेरियल में, हम बांस का, प्लाई का, इस तरह का यूज कर सकते हैं जो कि प्रकृति में आराम से बायोडिग्रेड हो जाते हैं और उसका कचरा नहीं बनता है। तो हम रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल के सिद्धांत पर चले तो हम सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। हमारी संस्कृति अगर हम बात करें तो जैसे हमारी संस्कृति में यही है कि जो मिट्टी की जो चीजें हैं उसको हम यूज करते थे पहले, अभी भी जो है वो चलन में आ चुकी है,
1: वापस आ रही है।
0: तो ये चीज कितनी प्रेफर करनी चाहिए लोगों को फिलहाल की स्थिति में?
1: नहीं, ये बड़ा ही अच्छा विकल्प है क्योंकि मिट्टी के कुल्हड़ वगैरह में जब हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उसको यूज एंड थ्रो की तरह काम तो लेते हैं लेकिन वो वापस मिट्टी में मिल जाएगा पुनः है, तो उसकी रीसाइक्लिंग संभव है, उससे कोई भी अपशिष्ट पर्यावरण में बचता नहीं है।
0: बिल्कुल। तो ये बेहतर विकल्प हो सकता है,
1: ये बेहतर विकल्प है। और इवन आजकल लोग बहुत अच्छे अच्छे विकल्प लगा रहे हैं, जैसे पौधे लगाने में प्लास्टिक की थैली का यूज होता था, तो साउथ में, नॉर्थ में, वेस्टर्न में हर जगह कुछ कुछ नए तत्वों का यूज कर रहे हैं जिससे कि उस प्लास्टिक से भी छुटकारा पाया जाए वन टाइम यूज से। इवन आफरी में भी एक नवजीवन करके हमारे डायरेक्टर डॉक्टर तरुण कांत

0: थे 2 साल पहले, तो उन्होंने एक अच्छा सा गमला टाइप बनाया था जिसमें हम बीज बो दे रख दे पौधा, तो फिर आपको प्लास्टिक से निकाल के नहीं, सीधा उसी को जमीन में लगा दीजिए, खाद भी मिलेगा और कोई तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बात है ये तो। और जो जैव विविधता है
0: जी
1: भावना जी, उसको बचाने के लिए आफरी जो है वो किस तकनीक पर काम कर रहा है?
0: देखिए, क्योंकि आफरी फॉरेस्ट और जंगलों से ही जुड़ा हुआ है, तो हमारा एक बिल्कुल मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम जैव विविधता को बचाएं। जब भी हम कोई प्लांटेशन प्रोग्राम करते हैं तो हम हमेशा लोकल स्पीसीज को और मोनोकल्चर यानी एक ही प्रजाति का चयन नहीं करके उसको मल्टीपल लगाते हैं। जब हम फॉरेस्ट को भी रिहैबिलिटेशन रेस्टोरेशन करते हैं, कई जगह पे किया है हमने, तो हम ऐसा नहीं कि सिर्फ वृक्ष लगा दें, वृक्ष लगाना फॉरेस्ट या जंगल बचाना नहीं है, तो हम वृक्ष लगाते हैं, झाड़ियाँ लगाते हैं, घास और हर्ब्स लगाते हैं, क्योंकि अगर हम प्रकृति में जाएं तो जंगल ऐसे मिला जुला ही होता है। तो आफरी अपने जितने भी, एक तो कंजर्वेशन के कार्य करता है, रेस्टोरेशन के कार्य करता है, उसमें हम स्पीसीज का मिला जुला रूप रहते हैं, तो वो एस्टेब्लिश होने के बाद उसमें एडिशनल स्पीसीज भी और आती हैं, यानी इससे हम जैव, इसके अलावा हमारे यहाँ सीड स्टोरेज है, जर्म प्लास्ट कंजर्वेशन है, मेडिसिनल प्लांट है, नर्सरी है, तो बहुत सारे ये माध्यम हैं जिनके द्वारा हम जैव विविधता को सपोर्ट करते हैं।
1: बिल्कुल। और आज जैसा कि पर्यावरण दिवस है, आज बहुत सारे पौधारोपण अभियान जो है वो चलेंगे, लेकिन उन पौधारोपण अभियान के वक्त जो पौधे लगाए जाते हैं
0: जी,
1: आज तो उन पे ध्यान दे दिया जाएगा
0: जी, जी,
1: लेकिन जैसे जैसे वक्त आएगा अपनी टाइम की वजह से या जो भी कहें उसकी वजह से हम उस चीज को भूलते जाते हैं, तो उस पौधे की जो है वो क्या जीवित दर होती है जिसकी वजह से वो जिंदा रह सकता है?
0: देखिए, ये जो है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आजकल पर्यावरण दिवस या जो भी वन दिवस या कुछ होता है तो लोग बहुत सारे पौधे लगाते हैं, नर्सरी से खरीद के लाते हैं, उसके साथ सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेने के बाद
1: उसको भूल जाते हैं,
0: भूल जाते हैं। लेकिन देखिए, पौधा बड़ा करना एक बच्चे बड़े करने के समान ही होता है। तो जो लोग लाखों हजारों में या सौ में पौधे लगाते हैं, तो मेरा यही कहना है कि भले ही कम संख्या में लगाएं, क्योंकि पौधे को शुरुआती देखभाल चाहिए होती है, 3 चीज़ों का ध्यान आवश्यक है कि उसको पानी मिले टाइम टू टाइम, उसके लिए ट्री गार्ड बनाएं जिससे कि ग्रेजिंग से सुरक्षा मिले, और उसको खाद पानी उपलब्ध रहे। तो शुरुआत में पौधे को ध्यान देना चाहिए, पौधे भले ही कम लगाएं, इवन अगर एक व्यक्ति एक पौधा भी लगाए लेकिन वो उसको जीवित रखे, उसकी देखभाल करता रहे,
1: मतलब तो, ज्यादा की जरूरत नहीं है अगर आप एक चीज से शुरुआत करेंगे,
0: बिल्कुल, अदरवाइज नर्सरी से पौधा जो ला रहे हैं तो उसके पीछे जितने भी रिसोर्स लगे हैं, मिट्टी, पानी, खाद, बीज, वो सब वेस्ट हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: और जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह इस पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे, वो ऐसी क्या चीजें करें जिससे पर्यावरण संरक्षण में उनका योगदान बेहतर हो?
0: देखिए, युवा पीढ़ी जो है उससे मेरा यही आग्रह रहेगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो केवल एक ही दिन ये दिवस ना मना ले, बल्कि पर्यावरण को एक जीवन शैली के रूप में अपनाए। और सबसे कारगर जो उपाय है वो है कि कचरे का प्रबंधन सही हो,
1: बिल्कुल,
0: जो गीला सूखा कचरा है आजकल तो गाड़ियां आती हैं, उसको अलग छांट के रखें, अलग अलग करें। दूसरा, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करें, वृक्षारोपण जैसे कदम उठाएं। उसके अलावा जो और हर व्यक्ति कर सकता है, बिजली और पानी की बचत करें, तो उससे पर्यावरण में इतना बड़ा सहयोग होगा। और दूसरा, पेट्रोल डीजल की बचत करें, सार्वजनिक जो परिवहन के साधन है उनका अधिक उपयोग करें, तो ये हमारे पर्यावरण में सर्वाधिक योगदान है जो सभी का हो सकता
1: है। वाहनों पर निर्भरता कम करें,
0: जी जी,
1: चलेंगे तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा
0: जी,
1: और पर्यावरण के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। बिल्कुल भावना जी, पर्यावरण संरक्षण पर हम बात कर रहे हैं, और ऐसी कौन सी तकनीकों पर हमको काम करना चाहिए भावना जी, जिससे आने वाले कल का जो बेहतर पर्यावरण हो सके?
0: जी, अगर हम आज ही पर्यावरण की चिंता करें या स्वच्छ करेंगे, तभी आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा मिलेगी और अच्छा पर्यावरण मिलेगा। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मुख्य बिंदुओं का हमें जो ध्यान देना है, तो वर्षा जल का संचयन हो जाए। जो वर्षा जल बह जाता है, हम सभी को अपने नए घर बनाते समय जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है, इस तरह की चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। कचरा प्रबंधन है, जैविक खेती, हम केमिकल का इस्तेमाल, जैसे घर पे भी सब्जियां वगैरह पौधे गमले लगाते हैं तो उसमें जैविक जो है खाद उसका उपयोग करें। इसके अलावा यह आजकल जलवायु स्मार्ट कृषि जो है, मतलब हमारी एग्रीकल्चर भी आज के युवाओं को
1: स्मार्ट हो गया,
0: इस तरह होना चाहिए कि जो क्लाइमेट के प्रति प्रतिरोधी हो, यह ना हो कि क्लाइमेट चेंज

0: हो, बल्कि और कम संसाधन में अधिक से अधिक उत्पादन हो, तभी हमारे संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए बच पाएंगे।
1: बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जो है हमारी पीढ़ी को जो
0: जी
1: है याद रखनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर
0: बेहतर कल
1: एटमॉस्फेयर हो।
0: मिले।
1: तो कचरा प्रबंधन की बात हो गई,
0: जी
1: एक जल प्रबंधन की अगर हम बात करें,
0: जी
1: अब पानी का संकट तो बहुत सारा
0: जी
1: अभी है ही, जैसे कि हमारे जोधपुर में भी अगर हम बात करें, तो जल के लिए ऐसे क्या कार्य किए जाएं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर हो?
0: देखिए, जल के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहले तो कि हम एक तो व्यर्थ जल को ना गंवाएं। दूसरा, जल की भी हम कैटेगरीज कर सकते हैं, जैसे अगर हम फिल्टर सभी के घर आजकल जैसे आरओ लगा है, तो उससे जो पानी मिलता है, हम एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होगा उसका सिस्टम ऐसा व्यवस्थित कर लें कि वही पानी को हम साफ सफाई में, कार धोने में, झाड़ू पोछे में, पौधों को देने में, इस तरह, तो इस तरह क्या है, जो हमारा फ्रेश वाटर है उस पर एक डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। उसको हम सिर्फ पीने में और इस सब में उपयोग करें, भोजन बनाने में, लेकिन पानी का उचित मैनेजमेंट करें, जिससे कि हमारे क्वालिटी का मीठा पानी है उसको बनाने में सरकार के बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, उस पे प्रेशर कम रहे।
1: बिल्कुल, इसमें एक बात ये है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों से जो है
0: जी,
1: हमारे घर से ही
0: घर से ही
1: शुरुआत करनी
0: शुरुआत
1: पड़ेगी,
0: करनी
1: हमारी
0: होगी।
1: आदतों में बदलाव करना
0: जी
1: पड़ेगा। जैसे कि अगर हम सुबह ब्रश कर रहे हैं
0: जी
1: तो हम टैप
0: हाँ
1: खुला रखते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अगर हम नहा रहे हैं तो
0: वही
1: शावर का
0: कि
1: यूज़
0: हम
1: हम
0: अपनी
1: ज़्यादा
0: आदतों और
1: करते हैं।
0: कंफर्ट जोन से बाहर
1: बिल्कुल,
0: आकर हम बहुत योगदान दे
1: बिल्कुल
0: सकते हैं।
1: अगर शावर का यूज़ ना करके अगर
0: बिल्कुल
1: एक बाल्टी भर ली जाए
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और अगर हम ब्रश कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, तो टैप जो है एक हाथ, दो हाथ है हमारे पास
0: बिल्कुल
1: एक
0: बिल्कुल
1: हाथ जो है उससे बंद कर सकता
0: बंद
1: है।
0: कर सकते हैं।
1: बिल्कुल भावना जी, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है हमें प्रयास करने ही पड़ेंगे, सिर्फ
0: जी
1: बातों से बात नहीं बनेगी।
0: जी
1: तो एक बात ये भी है कि आज का जो टाइम है उसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा
0: जी
1: रहे हैं, लेकिन हमारा योगदान जो है हम कैसे प्रेरित करें दूसरों को?
0: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो युवा वर्ग और बच्चे हैं, उन्हें केवल ये पर्यावरण की बात सिर्फ किताबों में ना दी जाए। जब भी
1: बिल्कुल
0: कोई पौधारोपण का, जल सिंचन का, हम और इवन बचपन से ही उन्हें इन आदतों में इन्वॉल्व कर दें, तो ये उनकी आदतें स्वयं ही बढ़ जाएंगी। और जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर हर घर में एक एक दो दो बच्चा जो है वो पानी की बचत और इन सब में लगेगा, बिजली की बचत, पेट्रोल की बचत, ये शुरू से सीख ले, तो इससे बहुत योगदान होगा। और उसमें आजकल आपका जो सोशल मीडिया है उसका बहुत योगदान है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे और युवा हैं वो अपना सारा ज्ञान अखबार वगैरह की तुलना सोशल मीडिया से ही लेते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो इसके द्वारा भी उनको प्रेरित कर सकते
1: सोशल
0: हैं,
1: मीडिया प्रेरणा का जो
0: एक स्रोत
1: स्रोत
0: है।
1: हो गया है। बिल्कुल, और आज की जो पर्यावरण संरक्षण की जो थीम है वो
0: जी
1: है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर
0: जी
1: अवर फ्यूचर, यानी प्रकृति से प्रेरित
0: जी
1: जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए। तो
0: जी
1: क्या ये इंगित करती है?
0: ये इंगित ये करती है कि अब हमें जो है, अगर हमने अपने ये सारे एफर्ट्स हर व्यक्ति ने नहीं लगाए, तो फिर आने वाला कल बहुत मुश्किल में होगा। ये जो क्लाइमेट चेंज हम इफेक्ट दिखने ही लग गया है सभी को, कि बिना टाइम के बारिशें हो रही हैं,
1: बिल्कुल
0: गर्मी अत्यधिक पड़ रही है, तो ये सब नुकसान हमें ही भुगतने होंगे। तो इन सब हम पानी, ऊर्जा, बिजली बचा के, पौधे लगा के, ये हम पर्यावरण को अपने संरक्षित रख सकते हैं। और हमें संसाधनों का उपभोग कम करना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि ये जो धरती है ये सभी की आवश्यकता को तो पूरी कर सकती है, लेकिन लालच को वो पूरा नहीं कर सकती। तो हम ग्रीड को कम करें और नीड बेस्ड जो है प्रिंसिपल, उस पर काम करें।
1: बिल्कुल भावना जी, और चलते चलते आप रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: जी, आपके श्रोताओं को मेरा यही संदेश है कि पर्यावरण संरक्षण, जैसा मैंने पहले भी कहा था, उसको हम एक ही दिन से ना जोड़कर हम अपनी जीवन शैली में ये परिवर्तन अपना लें, तो हम हमारे लिए भी स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा, और आने वाली पीढ़ी को भी ये सभी चीज़ें प्राप्त होंगी।
1: बिल्कुल, तो श्रोताओं पर्यावरण संरक्षण के दिवस पर आज हमसे जुड़े डॉक्टर भावना शर्मा सीनियर साइंटिस्ट आफरी, उनसे हमने बातचीत की पर्यावरण संरक्षण पर। और श्रोताओं यही संदेश है कि बात से बात नहीं बनेगी, प्रयास बहुत सारे करने पड़ेंगे। और भावना जी आपका बहुत बहुत स्वागत किया, अपना अपना कीमती वक्त जो है हमें दिया।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
2: श्रोताओं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर भावना शर्मा, जो कि सीनियर साइंटिस्ट थी फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज डिवीजन एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान के, और इनसे बातचीत कर रही थी सोफिया खान। और बिल्कुल, जब प्रकृति की बात आई है और खूबसूरत गीतों के माध्यम से

प्रकृति के साथ अगर हम अपने इमोशंस का ना जोड़े तो फिर क्या बात है। तो बिल्कुल भावना जी की ही पसंद का ये खूबसूरत सा गीत जो हमें गंगा और यमुना की लहरों में डुबा ले जाता है, बहा ले जाता है, उनके संग संग घुमा ले जाता है।

0: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
1: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
2: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: श्रोताओं, बात ही बात पे बात निकल चली है और बात करते हैं अब इतिहास में आज का दिन क्यों है खास। तो श्रोताओं, 1723 में आज के दिन एडम स्मिथ, स्कॉटिश अर्थशास्त्री और दार्शनिक, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक,
1: इनका जन्म हुआ था। और खास तौर पर अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो इसको एक विशेष विज्ञान के रूप में, सामाजिक विज्ञान के रूप में जो स्थापित करने का श्रेय है वो एडम स्मिथ को ही जाता है, जब इन्होंने एक खास किताब लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो कोई भी राष्ट्र समृद्ध क्यों है, उसकी संपत्ति किस तरह से उसका आधार बनती है, इस बारे में बात की थी एडम स्मिथ ने। और तब से अर्थशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। इसके साथ ही सन 1967 में बात करते हैं, जब मध्य पूर्व में इसराइल और अरब देश जैसे कि मिस्र, सीरिया और जॉर्डन, इनके बीच प्रसिद्ध सिक्स डे वॉर की शुरुआत हुई थी। आज ही का वो दिन था, 5 जून का।
0: और 2005 में आज ही के दिन श्रोताओं, ताइवान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। और इसी के साथ 2017 की बात करें तो सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 D1 का भी आज ही के दिन सफल प्रक्षेपण हुआ था।
1: इसके साथ ही दोस्तों, जो आज का खास दिन है वो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सकारात्मक पर्यावरण के लिए दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। और सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में विश्व भर के देशों का अपना पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। और इसी सम्मेलन के बाद एक पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया गया था और तब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ था। और हर साल आज ही के दिन को, यानी कि 5 जून को, पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निर्णय लिया गया था। और बिल्कुल, ये पर्यावरण का कार्य है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सबके लिए ही नहीं, वर्तमान के लिए ही नहीं, हमारे भविष्य को भी बेहतर बनाने के लिए
0: हमारी ये जिम्मेदारी है श्रोताओं की, पर्यावरण को बचाने के प्रयास में हम भागीदार बने, पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, वरना सब खत्म है।
1: बिल्कुल, तो हम ऐसे खत्म नहीं होने देंगे। हम आज जो खूबसूरत गीत इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं वो भी सब जुड़े हुए हैं प्रकृति से। और बिल्कुल, ये जो प्रकृति की सुंदरता है और प्रकृति का संगीत है, अगर ये हमारे दिलो दिमाग तक और कानों तक पहुंचने लगता है तो वो सारी आवाजें हमें सुना

0: दोस्तों वहां पर हम बने हुए हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ, और नमस्कार में हर शुक्रवार को सप्ताह विशेष में हम आपसे शेयर करते हैं एक खास किताब की बात। और आज की खास किताब लिखी जेन ऑस्टिन ने सन 1813। किताब का नाम प्राइड एंड प्रेजुडिस। बिल्कुल, ये एक प्रसिद्ध रोमांटिक उपन्यास। कहानी है बेनेट परिवार की, और खास तौर पर उनकी जो 5 बेटियां हैं उनकी शादी की चिंताओं की, सामाजिक क्या स्थिति है उनकी, और साथ ही साथ इस उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं एलिजाबेथ बेनेट के मिस्टर डार्सी के साथ जो प्रेम संबंध है उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। क्या है कहानी? हर्टफोर्डशायर में बेनेट परिवार जो रहता है उसमें श्रीमती बेनेट की जो सबसे बड़ी इच्छा होती है वो होती है कि अपनी जो 5 बेटियां हैं उनकी अच्छी जगह पर शादी करनी है। और बेटियां कौन? जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किट्टी और लिलिया। अब इस इलाके में एक मिस्टर बिंगले नाम के एक अमीर युवक का आगमन होता है, और जो की किस्मत से कुमारे भी हैं। तो स्थानीय डांस पार्टी में मिस्टर बिंगले को सबसे बड़ी जो बेटी है जेन बेनेट उनसे प्यार हो जाता है। वहीं बिंगले के जो दोस्त हैं वो अमीर और अहंकारी मिस्टर डार्सी जो हैं वो एलिजाबेथ के साथ नाचने से इनकार कर देते हैं। तो एलिजाबेथ के मन में डार्सी के प्रति एक नफरत और पूर्वाग्रह आ जाता है। पूर्वाग्रह यानी कि प्रेजुडिस। और कुछ समय बाद डार्सी एलिजाबेथ की बुद्धि और सुंदरता के प्रति आकर्षित भी हो जाते हैं और शादी का प्रस्ताव भी दे देते हैं। लेकिन क्या होता है, क्या एलिजाबेथ इस प्रस्ताव को मानती है या नहीं?
1: बिल्कुल नहीं, एलिजाबेथ इसे गुस्से में ठुकरा देती है और उन पर अपनी ही बहन जैन की खुशियां बर्बाद करने का आरोप भी लगाती है। और अपनी अस्वीकृति के बाद डार्सी एलिजाबेथ को एक लेटर लिखकर अपनी सफाई देते हैं, और इसमें वो बताते हैं कि उन्होंने क्यों जैन और बिंगले को अलग किया था, और मिस्टर विकहम यानी जो एक धोखेबाज सैनिक जिसने डार्सी की बहन को बहलाया था उसका असली सच भी उसको बताते हैं। ये सच जानकर एलिजाबेथ की आंखें खुल जाती है और एलिजाबेथ की छोटी बहन लिडिया मिस्टर विकहम के साथ जो है वो भाग जाती है। और इस पारिवारिक बदनामी से बचने के लिए डार्सी गुप्त रूप से विघम के कर्ज चुकाकर दोनों की शादी करवाती है, और बाद में इस बात का पता चलता है एलिजाबेथ को। मिस्टर बिंगले वापस लौटते हैं और जैन से शादी भी कर लेते हैं। मिस्टर डार्सी दोबारा एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज भी करते हैं, और इस बार एलिजाबेथ अपना घमंड और पूर्वाग्रह भुलाकर उनका प्रस्ताव जो है वो स्वीकार कर लेती है। तो श्रोताओं, ये उपन्यास दर्शाता है कि कैसे लोगों के बीच गलत फहमियां और झूठा अहंकार यानी प्राइड दूर होने के बाद सच्चा प्यार पनपता है।
0: बिल्कुल, और ये जो सच्चा प्यार पनपता है सोफिया, ये चाहे कोई भी देश हो, चाहे ये बात लंदन की हो रही है, चाहे अगर हम भारत की बात करें या अमेरिका की बात करें, जर्मनी, फ्रांस यानी दुनिया के किसी भी देश की बात करें, जो सच्चा प्रेम है उसको तो सभी जगह एक ही जैसे मान्यता मिली है। और इसी तरह की मान्यता मिली है पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को, चाहे कोई भी देश हो, चाहे अगर हम कहें वो उस देश का पर्यावरण, चाहे हमारे देश का पर्यावरण, प्रकृति ने तो अपना सौंदर्य जो है वो सभी जगह समान रूप से बांटा है। हम उसका कितना दोहन कर पाते हैं, कितना उसके साथ अपनी जीवन शैली का सामंजस्य बिठा पाते हैं,

बस यही जानने और सोचने की बात है आज के खास दिन यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, और ये खास गीत जो देश की सरहदों के पार जाकर पर्यावरण को एक अलग एकत्व का एहसास देता है, एकता की मिसाल बनता है। खूबसूरत गीत फिल्म वीर ज़ारा से आपके लिए।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
3: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। पीएम स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान।

0: श्रोताओं, अब जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो सिर्फ प्लास्टिक के बारे में हम सोचते हैं और इससे पर्यावरण को नुकसान भी है, लेकिन दोस्तों नुकसान है एक चीज़ और, वो है ई वेस्ट के बारे में अगर हम बात कर लें थोड़ी। जैसे कि अगर आपके फ़ोन का पुराना चार्जर या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब हो गई है तो उसे यूं ही नॉर्मल कचरे के डिब्बे में ना फेंके, क्योंकि इनमें जो लेड और मर्करी जैसे ख़तरनाक केमिकल होते हैं जो ज़मीन और पानी को जहरीला कर देते हैं।
1: बिल्कुल सोफिया, तुमने मुझे एक बहुत बड़े, ये जो मैं पर्यावरण को नुकसान करने जा रही थी ना, उससे बचा लिया, क्योंकि मैं आज ही अपना चार्जर जो मेरा उसका वायर कट गया था तो मैं उसको फेंकने वाली थी, लेकिन बहुत अच्छा किया तुमने ये मुझे सावधान कर दिया कि मैं ये जो भी ई वेस्ट होता है उसे इस तरह से कचरे के डब्बे में सामान्य कचरे के साथ ना फेंकूं।
0: बिल्कुल, इससे अगर हम नॉर्मल कचरे के डब्बे में फेंकते हैं तो बहुत हानिकारक होता है इसके।
1: तो फिर मुझे क्या करना चाहिए ये भी बता दो।
0: बिल्कुल स्वाति, इसके लिए कई स्टोर्स होते हैं, वे उनमें ई वेस्ट बीन होता है जिसमें आप ये डाल सकते हैं, और अगर ई वेस्ट को उस बीन में डालेंगे, कई बार जो है कंपनी आपको कुछ कूपन्स भी देती है, कुछ ऑफर्स भी देती है इसमें, तो फ़ायदा क्या फ़ायदा, और प्रकृति को जो है वो नुकसान भी नहीं होगा।
1: बिल्कुल, और ये मैंने देखा है कि आजकल हमारे जो पुराने फोन की बैटरीज होती हैं या चार्जर होते हैं, इवन जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ये कचरा अगर सही ढंग से इसका निस्तारण ना हो तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आज तुमने मुझे सजग कर दिया है, तो बिल्कुल अगर हमारे श्रोता भी ये हमारी बात सुन रहे हैं और वो इस ई वेस्ट के निस्तारण के प्रति सजग हो जाते हैं तो हमारी आज की ये काम की बात बिल्कुल सार्थक हो जाएगी। तो और भी सार्थक हमारे प्रयास चलते रहेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनिए ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बात करते हैं जन्मदिन विशेष ही। तो आज जन्मदिन मना रहे हैं भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी रमेश कृष्णन। आज के दिन

0: जून 1961 को चेन्नई में इनका जन्म हुआ और श्रोताओं 1980 के दशक में इन्होंने तीन ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल तक ही पहुंचे थे और डेविस कप टीम में भी फाइनल तक ही पहुंचे थे। और अगर जयंती विशेष की बात करें तो आज मलयाली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शंकर कुरूप की भी जयंती है। आज के दिन 5 जून 1901 को केरल में जन्मे गोविंद शंकर जी को कोचीन की पंडित परीक्षा पास करके अध्यापन की योग्यता इन्होंने प्राप्त की थी। और उनके लिखे कविता संग्रह में अगर हम बात करें तो साहित्य कौतुकम, चारखंड और कुशट पाथेमय है और नाटक में है संध्या इरुटिनु मुंपू है। और 1963 में श्रोताओं इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है।
1: और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें नारायण मल्हार जोशी की तो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के ये जन्मदाता थे और समाज सेवा में भी अग्रणी रहे। महिलाओं और बच्चों के लिए कई चिकित्सालयों की स्थापना भी इन्होंने करवाई थी।
0: और इसी के साथ श्रोताओं पुण्यतिथि अवसर विशेष पर भी बढ़ते हैं आगे। और श्रोताओं भारत की आज़ादी से पहले के एक प्रतिभाशाली गजल और गायक मास्टर मदन की आज पुण्यतिथि है। एक ऐसे कलाकार थे ये जो 1930 के दशक में ख्याति प्राप्त कर मात्र 15 वर्ष की उम्र में 1942 में आज के दिन 5 जून को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके जीवन में केवल 8 गाने ही रिकॉर्ड हो पाए जिनमें सार्वजनिक रूप से 2 ही गानों की रिकॉर्डिंग सब जगह मिल पाती है।
1: और साथ ही साथ दोस्तों बात करें अगर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आधुनिक विधा जो ललित निबंध है उसके क्षेत्र में अपने विशिष्ट योगदान के लिए जाने जाने वाले कुबेरनाथ राय की। और इन्होंने 300 से ज्यादा निबंध लिखे जो साहित्य संस्कृति की दुनिया में बहुत ज्यादा सराहे गए। और खास तौर पर इन्होंने मराल, प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, मन पवन की नौका, रामायण महातीर्थम शीर्षक से विशेष संग्रह भी लिखे। और आज ही के दिन सन 1996 में इनका निधन हुआ था और इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो बिल्कुल ये तो वो एक खास लोग थे जिनका संबंध था आज के खास दिन से। आप बने हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर।

0: दोस्तों सो इसी खूबसूरत गीत के साथ हम आपको आज के इस नमस्कार के सफर में छोड़े जा रहे हैं। मैं थी आपके साथ स्वाति
1: और मैं सोफिया, और हमें दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: 102.1 FM Sunsetty प्रोग्राम इस वक्त ट्यून्ड है आप सभी के साथ हेलो डॉक्टर और आज इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशेषज्ञ भी खास बिल्कुल आज हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह टाक जो कि हैं स्पाइन सर्जन खास तौर पर हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि जो हमारे जीवन का आधार है शरीर का आधार है हमारी रीढ़ की हड्डी उसमें जो भी रोग होते हैं उसके ये खास तौर पर विशेषज्ञ हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल और डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ राजस्थान सरकार के स्पाइन इंजरी सेंटर प्रोजेक्ट के भी ये राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी हैं और आज हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हमारे साथ खास तौर पर ये बात करेंगे रीढ़ की हड्डी की टीबी के बारे में तो इनसे अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं खास नंबर है हमारा 9413329359 नंबर आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए 9413329359 बिल्कुल इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और जब तक आपके सवाल हम तक पहुंचे तब तक हम डॉक्टर साहब का स्वागत भी कर लेते हैं और उनसे अपने कुछ सवाल भी शेयर कर लेते हैं तो डॉक्टर महेंद्र सिंह टाक इस वक्त हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में
1: थैंक यू मैम मैं अक्सर यहाँ आता रहा हूँ आज फिर मुझे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर आने का यहाँ मौका मिला उसके लिए मैं पूरी आकाशवाणी टीम को बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और मैं मेरे उन बहुप्रतीक्षित मरीजों का और जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपकी दुआओं से बार बार हमें यहाँ आने का मौका मिलता है और हमारे पास जो जानकारी है हम आप तक साझा करने का पूरा प्रयास करते हैं
0: बिल्कुल और आकाशवाणी निश्चित तौर पर ये एक माध्यम बनता है और हमारे एफएम सनसिटी से जो हमारे तमाम श्रोता इस वक्त जुड़े हुए हैं वो बहुत सारे सवाल उनके मन में भी आ रहे हैं और जो इस तरह की समस्याओं से ग्रसित है वो भी अपने सवाल आपके साथ साझा करेंगे डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं जब पहले टीबी ये शब्द सुना करती थी ट्यूबरक्लोसिस तो ये लगता था ये खांसी की बीमारी है दमे जैसी कुछ बीमारी है फेफड़ों में होती है लेकिन आज जब आपसे ये बात साझा कर रही हूं कि रीढ़ की हड्डी में टीबी मतलब ये भी कोई अलग तरह की टीबी होती है कुछ सामान्य तरह की टीबी के जैसे ही इसके कुछ लक्षण हैं
1: जी मैम ज्यादातर लोग जैसा आप सोच रहे हैं ज्यादातर लोग इवन पढ़े लिखे लोग भी यही समझते हैं कि टीबी का मतलब फेफड़ों की बीमारी लेकिन टीबी फेफड़ों में क्यों होती है और बाकी शरीर में क्यों होती है उसके कुछ कारण है
0: जी
1: टीबी का होने की वजह एक बैक्टीरिया है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं
0: जी जी
1: उस बैक्टीरिया के लिए कोई बंदिश तो नहीं है वो तो कहीं भी जा सकता
0: है
1: शरीर में कहीं भी जा सकता है लेकिन वो बैक्टीरिया फेफड़ों में रहना ज्यादा पसंद करता है क्योंकि उससे संबंधित जो एनवायरनमेंट चाहिए जो पैरामीटर चाहिए जो उसका भोजन है उसकी सांस है बैक्टीरिया की वो उसको फेफड़ों में मिलती है उसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट वहां है तो वो ज्यादातर फेफड़ों में पाया जाता है लेकिन अब वो फेफड़ों से फैलते फैलते उसने अपना अतिक्रमण लगभग पूरे शरीर के हर अंग में कर लिया है
0: जी।
1: शरीर के एक या दो अंग है जहां खून की सप्लाई नहीं होती जैसे नाखून और बाल
0: हाँ।
1: इसके अलावा शरीर का हर अंग चाहे आंख हो चाहे नाक हो चाहे पेट हो चाहे आंत हो चाहे घुटने हो चाहे जननांग हो चाहे हड्डी हो चाहे जॉइंट हो सब जगह टीबी होती है इसको हम बोलते हैं ऑस्टियो आर्टिकुलर टीबी क्योंकि मैं हड्डी विशेषज्ञ हूं तो मैं उसकी चर्चा करूंगा

0: ऑस्टियो आर्टिकुलर का मतलब है, ऑस्टियो मतलब हड्डी,
1: हड्डी
0: आर्टिकुलर मतलब जॉइंट। तो बोन एवं जॉइंट में भी टीबी पाई जाती है, और सबसे मुश्किल टीबी का इलाज जो है वो हड्डी वाली टीबी का इलाज है, क्योंकि वहां से बैक्टीरिया का पता करना सबसे मुश्किल काम है।
1: जी
0: चैलेंज ये है कि फेफड़ों में टीबी हुई, मरीज को बोलो बलगम का सैंपल दे दो,
1: हाँ
0: आपने चेक कर लिया,
1: चेक कर लिया, पता चल
0: पता
1: गया,
0: चल गया। अब आप हड्डी और जॉइंट में क्या करेंगे, जब तक आप
1: मुश्किल
0: उसको
1: है।
0: खोलेंगे नहीं, वहां से
1: हाँ
0: सैंपल नहीं लेंगे, तब तक आपको इसका पता भी नहीं चलेगा।
1: और ये इतना आसान तो नहीं है कि
0: इतना आसान
1: कारपेंटर
0: नहीं,
1: जैसे दरवाजे का कब्जा खोला और चेक
0: नहीं
1: कर
0: नहीं
1: लिया, वो
0: नहीं
1: तो है नहीं।
0: तो चैलेंजिंग भी है,
1: जी
0: उसको डायग्नोसिस करना भी चैलेंजिंग है। और पिछले कुछ दशकों में बात करें तो ऑस्टियो आर्टिकुलर टीबी की जो संख्या है और उनके मरीजों की संख्या है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है।
1: जी
0: और ऑस्टियो आर्टिकुलर मतलब बोन एंड जॉइंट के टीबी में से सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, सबसे ज्यादा है वो है रीढ़ की हड्डी की टीबी। हड्डियों में भी उसका सबसे फेवरेट हड्डी है रीढ़ की हड्डी,
1: रीढ़ की हड्डी,
0: जो
1: और
0: उसको
1: वो आधार है पूरे शरीर
0: पूरे
1: का।
0: शरीर का वो आधार है। तो इस रीढ़ की हड्डी की टीबी बहुत 70वीं 18वीं शताब्दी के आसपास एक डॉक्टर पॉट्स हुआ करते थे,
1: जी
0: जिनको परसाइवल पॉट्स बोलते हैं, उन्होंने ही इस बीमारी का सबसे पहले डायग्नोसिस किया कि रीढ़ की हड्डी में भी टीबी पाई जाती है। तो उनके नाम के आधार पर, उनके
1: जी
0: रेस्पेक्ट के आधार पर इस बीमारी को नाम दिया गया है पॉट्स स्पाइन।
1: पॉट स्पाइन,
0: पॉट्स स्पाइन मतलब यदि किसी को पॉट्स स्पाइन है, मतलब उसका मतलब है रीढ़ की हड्डी की टीबी है,
1: मतलब वो आप अतरंगी नाम पढ़ने जाएं, वो बीमारी खतरनाक है।
0: खतरनाक है, खतरनाक है।
1: जी तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम नॉर्मल टीबी की बात आपने कहा कि वो एक है, तो सब उसका रीजन तो बैक्टीरिया ही है, लेकिन नॉर्मल टीबी का निदान भी आसान है, इलाज भी थोड़ा आसान है, लेकिन ये क्योंकि अगर हड्डी तक ये पहुंच गया है और हड्डी में उसको अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है बैक्टीरिया को, तो वो वहां ग्रो भी कर जाएगा। लेकिन क्या जो लक्षण हैं या जो इसके सारे जो इफेक्ट बॉडी में दिख रहे हैं, वो नॉर्मल टीबी से अलग रहेंगे?
0: आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी हम फेस कर रहे हैं, जो कि आपने
1: जी
0: पूछा, क्या हड्डियों की टीबी या रीढ़ की हड्डी की टीबी बाकी फेफड़ों की टीबी से अलग
1: अलग है,
0: अंदाज में प्रकट होती है? जी हाँ, बिल्कुल अंदाज
1: बिल्कुल।
0: आकार में प्रकट होती है। किसी भी टीबी के मरीज के लिए कुछ लक्षण होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, मतलब
1: जी
0: वो तो पाए ही जाएंगे।
1: जी जी
0: उनमें से सबसे पहला है एनोरेक्सिया, मरीज को भूख नहीं लगना। दूसरा है वेट लॉस, मरीज का वजन कम होना। तीसरा है इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, शाम के समय
1: जी
0: शरीर में थोड़ी झुर चलना या शाम के समय बुखार आना। ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है जो फेफड़ों के मरीजों में अक्सर 80 से 90%
1: पाए
0: मरीजों में
1: जाते
0: पाए
1: हैं।
0: जाते हैं। इसके ठीक उलट रीढ़ की हड्डी की टीबी के मरीजों में ये लक्षण
1: अच्छा,
0: 50% से भी कम में पाए जाते हैं।
1: तो
0: तो
1: फिर डायग्नोस
0: इसका
1: करना भी
0: डायग्नोसिस
1: मुश्किल है।
0: बहुत चैलेंजिंग है। क्लिनिकल
1: हाँ
0: प्रेजेंटेशन, अक्सर पेशेंट हमारे पास सबसे पहला सिम्टम लेके आता है, लक्षण लेके आता है, वो है बैक पेन। पेशेंट को कमर का दर्द होता है,
1: और सामान्य भी लग सकता है कि ठीक है, थोड़ा उठने बैठने
0: कमर दर्द
1: में।
0: बहुत सामान्य है,
1: हाँ
0: रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता रहता है, डे
1: जी
0: टू डे
1: जी
0: लाइफ में भी होता है, तो लगता है तो कमर दर्द है। तो इसकी वजह से एक तो इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं होता है, होता है तो बहुत डिले हो जाता है, उसको
1: हाँ
0: नजरअंदाज करते रहते हैं हम लोग।
1: और
0: तो
1: खास तौर पर महिलाएं।
0: महिलाएं भी और बुजुर्गों में, महिलाओं में,
1: हाँ
0: और ये रीढ़ की हड्डी की टीबी किसी स्पेक्ट्रम को नहीं छोड़ती है। एक छोटे बच्चे
1: अच्छा,
0: में, 1-1 साल के बच्चों से
1: उनमें भी
0: लेके,
1: हो जाती है?
0: जी हाँ जी हाँ, हमने सबसे छोटे से छोटे बच्चे का जिसका ऑपरेशन किया हुआ है, उसका महात्मा गांधी अस्पताल में, उसकी उम्र 1.5 साल रही है।
1: हो
0: तो एक 1.5 साल के बच्चे से लेके 90-95 साल तक के वृद्ध सज्जन में भी ये बीमारी पाई जाती है। अब सबसे मुश्किल है इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम जो है, वो तो 50% मरीजों में होते ही नहीं है।
1: जी
0: तो फिर इसका हम डायग्नोसिस कैसे करें? तो कुछ इसके हाई रिस्क ग्रुप है कि किन मरीजों में यदि बैक पेन होता है तो टीबी होने की चांसेस
1: संभावना
0: रहे,
1: है,
0: संभावना
1: ज्यादा है।
0: रहेगी, उनको बोलते हैं हाई रिस्क ग्रुप। तो पहले ऐसा कहा जाता था कि टीबी केवल कच्ची बस्तियों में होती है, अब वो कच्ची बस्तियों से निकलकर महलों की चार दीवारियों को भी भेद चुकी हैं।
1: और उसका एक कारण शायद प्रदूषण भी हो सकता है।
0: प्रदूषण भी हो सकता है, खान पान भी हो सकता है, जीवन शैली भी हो सकती
1: जी
0: है, और वातावरण, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो मैं
1: हाँ,
0: बोलूंगा कि
1: वातावरण
0: इट इज
1: हमारा,
0: ओवरऑल, इट इज एनवायरनमेंट
1: एनवायरनमेंट।
0: विच इज मेकिंग अ डिफरेंस, उसकी वजह से एक बड़ा बदलाव।

0: क्योंकि अस्पताल में तो हर कोने में टीबी का बैक्टीरिया घूम रहा है,
1: घूम रहा है।
0: आपकी जैसे ही इम्यूनिटी कम हुई वो आपके ऊपर आक्रमण
1: करेगा,
0: अटैक करेगा। तो अब इसका निदान जो है, सबसे पहले तो हम क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर करें। किसी भी व्यक्ति को बैक पेन है, खास करके छोटे बच्चे को यदि बैक पेन है तो सबसे पहला संदेह टीबी की ओर जाता है। मिडल इज एडोलसेंट, बच्चा जो है एडोलसेंट के आसपास है, और एक वापस वृद्ध सज्जन यदि किसी को बैक पेन है तो उस तरफ जाता है। तो इस तरह के मरीजों में जब भी आपको संदेह हो, दो छोटी सी जांचें आप उस मरीज का जिस एरिया में दर्द है उसका एक्सरे कर लें और दो खून की जांचें कर लें, ESR CRP करके जो जांचें होती है, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि इस मरीज में वाकई कोई इस तरह की बीमारी चल रही है क्या। टीबी की बीमारी की खास बात होती है वो हड्डी को गलाने लगती है,
1: तो जब आप पता भी नहीं चलता,
0: पता भी नहीं चलता। पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि कई बार बच्चों में ऐसा होता है कि दो दो हड्डी तक गल जाती है और बच्चा चलता रहता है, नॉर्मली चलता ही रहता, पता ही नहीं चलता। और बच्चे में जब तक हड्डी गल के कुबड़ नहीं बनेगा, अपन कहते हैं मारवाड़ी में, जब तक डूब नहीं निकलेगी, डूब नहीं निकलेगी तब तक हमको पता नहीं चलेगा। तो सबसे मुश्किल जो कॉमन डायग्नोसिस मिस होता है वो बच्चों में मिस होता है। एडल्ट तो फिर भी आएगा, एक्सरे करा लेगा।
1: और आजकल जैसे बच्चों में जैसे बस्तों का बोझ भी बढ़ चुका है, तो कई बार लगता है कि अच्छा बैक पेन होने का वो भी एक रीजन है।
0: उसके जो क्लिनिकल सिम्टम है बहुत लेट प्रस्तुत होते हैं, इसी वजह बच्चों में टीबी का डायग्नोसिस, स्पाइन रीड की हड्डी की टीबी का डायग्नोसिस काफी लेट होता है। हम बात कर रहे थे हाई रिस्क ग्रुप में, सबसे बड़ा है यदि किसी फैमिली मेंबर को टीबी है
1: तो प्रोननेस बढ़ जाती है,
0: आपके अंदर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी, आपको यदि पुराना कोई टीबी हुआ हो। तीसरा, आपको अभी फेफड़ों का टीबी
1: चल रहा हो।
0: चौथा, आपकी इम्यूनिटी लो हो, जैसे गुर्दे के पेशेंट हुए, किडनी के पेशेंट्स हुए, HIV/AIDS के पेशेंट हुए,
1: या जैसे जो अस्थमा के पेशेंट है उनमें भी
0: अस्थमा के पेशेंट, वो एक अलग कॉम्बिनेशन है। हाँ। सिलिको ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम बोलते हैं, जो पत्थर का
1: काम, लेकिन प्रोननेस उनमें ज्यादा हो सकता है।
0: जो भी मरीज का इम्यूनिटी कम होएगा उस पेशेंट को टीबी होने की संभावना रहेगी। कैंसर पेशेंट्स हैं, लंबी कोई बीमारी आपकी चल रही है, जैसे ही आप टीबी का बैक्टीरिया आपके मेरे हर जगह घूम रहा है, वो सिर्फ आपकी इम्यूनिटी कम होने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कम होगी या फिर उसकी मात्रा बढ़ेगी, जैसे आपके परिवार में किसी को टीबी है तो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके फैमिली एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया की मात्रा, सांद्रता ज्यादा है, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो आपके ऊपर अटैक करने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो ये हाई रिस्क ग्रुप हो गए। तो जब भी हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आपको बैक पेन होता है तो एक एक्सरे और खून की जांचें करके देखें। इनसे यदि लक्षण क्लियर होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: बिल्कुल।
0: कई बार इन दोनों जांचों में भी बीमारी मिस होती है तो फिर हमको आगे बढ़ के MRI का जांच करना पड़ता है, वो टीबी को बहुत ही शुरुआती स्टेज में पकड़ लेती है।
1: लेकिन मुश्किल ये है कि पहले जो प्रोबेबल मरीज है वो इन दो जांचों तक तो पहुंचे,
0: उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस, और वो काम आप और मैं बखूबी अभी करने का प्रयास कर रहे हैं।
1: तो बिल्कुल श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आए हुए हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह टाक, जो की रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ, और खासतौर पर इनसे आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी की टीबी के बारे में। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा मरीज है या कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और, तो आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप करने के लिए फोन नंबर है 9413329359, यानी कि 9413329359। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं डॉक्टर साहब की ही पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
2: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर। डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत

0: भावार्थ में आज ही प्राप्त करें। सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाएं।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पता है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खुले पैसों की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है।
2: हाँ, रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे प्रमुख यूपीआई मोड से डिजिटल माध्यम द्वारा कर सकते हैं।
1: इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर, पार्सल ऑफिस, गुड्स एवं अन्य सभी स्थानों पर क्यूआर कोड स्थापित किए गए हैं।
2: डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है, बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ किए जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ, उत्तर पश्चिम रेलवे।
3: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
4: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
5: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
6: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
5: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
7: हेलो डॉक्टर, ये प्रोग्राम इस वक्त ट्यून्ड है आपके साथ 102.1 एफएम सान सिटी पर, और आज इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह टाक, जो कि रीढ़ की हड्डी के रोग विशेषज्ञ हैं, और खास तौर पर इनसे आज हम बात कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी की टीबी के बारे में। डॉक्टर साहब महात्मा गांधी हॉस्पिटल और डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर से भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ राजस्थान सरकार के स्पाइन इंजरी सेंटर प्रोजेक्ट के साथ भी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। और आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति राजेश लामरोड की, और अगर आप ये व्हाट्सएप के माध्यम से अपना सवाल डॉक्टर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप 9413329359 पे अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस खूबसूरत से गीत के बाद पहले हम बात कर रहे थे कि हम डायग्नोस कैसे करें। एक आम इंसान जो कि अपनी लाइफ में भागदौड़ में बिजी है और कमर दर्द को एक सामान्य दिनचर्या मान लेता है, तो रीढ़ की हड्डी में अगर विशेष तौर पर टीबी है, और आप जैसे बता रहे हैं कि किसी भी एज में हो सकती है, बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में, महिलाओं में, मतलब कोई डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन ये टीबी नहीं करती है, तो कैसे हर तरह के अलग अलग ग्रुप में इसको डायग्नोस किया जाए।
8: सबसे पहले तो चूंकि मैंने अभी हाई रिस्क ग्रुप आप आइडेंटिफाई करें कि कहीं आप उस ग्रुप में तो नहीं हैं।
7: जी जी।
8: उसके बाद यदि आपको संदेह लगता है तो बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो कहीं पे भी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति, छोटे से छोटे कस्बे में आजकल एक्सरे की और इन दो खून की जांचों की व्यवस्था है। यदि एक्सरे में कुछ संदेह लगता है और खून की जांचों में इन्फेक्शन के पैरामीटर लगता है तो फिर आप स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। कई बार एक्सरे और खून की जांचों से भी टीबी का पता नहीं चलता है, उस स्थिति में फिर हमको एमआरआई करके देखना पड़ता है। रीढ़ की हड्डी का एमआरआई करते हैं, उसमें हड्डी में सूजन दिखती है और हड्डी में रस्सी दिखती है, पस बना हुआ दिखता है, ये सब चीजें दिखती है तो हम उसको टीबी का डायग्नोसिस मानते हैं। ये डायग्नोसिस हो गया आपका क्लिनिकल एवं रेडियोलॉजिकल। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज टीबी के अंदर है इज ए टिश्यू डायग्नोसिस। टिश्यू डायग्नोसिस मतलब सरकार की गाइडलाइन क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस को पूरी तरह से मान्यता नहीं देती हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये कहती हैं और जो भी क्लिनिशियन के एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि आपको जहां पर भी टीबी लग रहा है वहां का टिश्यू का सैंपल लीजिए और उसकी बायोप्सी करिए, उसका कल्चर करिए, और उसका जीन एक्सपर्ट का एक टेस्ट होता है जो बताता है कि ये टीबी है या नहीं है, जो टीबी के डीएनए को चेक करता है। सपोज मेरे हड्डी में कहीं टीबी है, वहां से हमने सैंपल ले लिया और सैंपल को जांच के लिए भेजा, जैसे कोरोना में आरटीपीसीआर टेस्ट होता था, इसी तरह डीएनए का टीबीपीसीआर टेस्ट होता है। अच्छा। जो डीएनए को, अब टीबी के बैक्टीरिया का क्या डीएनए है वो तो हमको पता है।
7: हाँ।
8: हम उस सैंपल से वो डीएनए
7: टेस्ट करते हैं,
8: उसको मैच करते हैं कि क्या वाकई ये टीबी का बैक्टीरिया वहां मौजूद है या नहीं है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी बीमारियां टीबी से मिलती जुलती दिखती है। टीबी को बोलते हैं अ बिगेस्ट मस्केराडर ऑफ क्लिनिकल साइंस। क्लिनिकल साइंस का या चिकित्सकीय विज्ञान का सबसे बड़ा कलाबाज है, अलग अलग तरह से प्रकट करता है।
7: हाँ।
8: और जब इंडिया में कई बार कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार टीबी का डायग्नोसिस जरूर सोच लेना चाहिए।
7: सही है, क्योंकि हम लोग बहुत वल्नरेबल हैं।
8: आपको 50-60% टाइम यू आर करेक्ट।
7: करेक्ट।
8: तो इज द बिगेस्ट मैस्केरेडर ऑफ क्लिनिकल साइंस। तो अब बात हुई टिश्यू डायग्नोसिस की, तो टिश्यू डायग्नोसिस एक बड़ा चैलेंज है। रीढ़ की हड्डी में से सैंपल लेना, उसको जांच के लिए भेजना, उसका जांच में कंफर्मेशन करना,

0: जांच में हम दो चीज देखते हैं, एक तो हम देखते हैं टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं,
1: नहीं
0: और दूसरा यदि टीबी का बैक्टीरिया है तो वो किस तरह का बैक्टीरिया है। टीबी में दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं,
1: जी जी
0: एक होता है सिंपल ट्यूबरक्लोसिस, एक होता है ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस,
1: अच्छा उस पे दवाइयां भी असर नहीं
0: जिस पर
1: करती।
0: दवाइयां ही असर नहीं करती, उसकी दवाइयां बिल्कुल अलग है। रूटीन टीबी का ट्रीटमेंट चलता है रीढ़ की हड्डी में, यूजुअली हम 6 से 9 महीना ट्रीटमेंट
1: जी
0: देते हैं, लेकिन यदि एमडीआर टीबी है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, तो उसकी दवाइयों का पूरा कोर्स ही अलग होता है। वो 18 से 24 महीने तक के लिए चलता है और थोड़ा चैलेंजिंग भी है, दवाइयाँ कॉस्टली है, चूंकि सरकार की योजनाएं पूरी तरह से निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराती हैं। टीबी के अंदर आपको टीबी की
1: जी
0: दवाइयाँ खरीदने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देती हैं। साथ में निक्षय पोषण योजना के तहत हर व्यक्ति को शायद 500 रुपए की एक मानदेय राशि भोजन के लिए मिलती
1: जी
0: है, जो आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है अकाउंट में,
1: जी
0: जब
1: जी
0: तक आपका टीबी का ट्रीटमेंट चलता है।
1: चलता है।
0: दवाई भी फ्री है, सरकार पोषण योजना भी चलाती है, लेकिन जो एमडीआर टीबी की दवाइयां हैं महंगी भी होती है, और दूसरे उसके साइड इफेक्ट भी रूटीन टीबी की दवाइयों से काफी ज्यादा होते हैं, तो वो बिल्कुल एकदम क्लिनिकल क्या बोलते हैं जानकारी के तहत ही वो दवाइयां ली जा सकती हैं।
1: हाँ बिल्कुल, पूरे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में
0: हाँ,
1: वो
0: और
1: दवाइयाँ
0: ब्लड
1: लेंगे।
0: का कोई भी टेस्ट टीबी के डायग्नोसिस को कंफर्म नहीं करता है। वो
1: अच्छा
0: आपको जो मैं ब्लड के दो टेस्ट बता रहा हूं, ESR और CRP, वो केवल एक संदेह जताते हैं,
1: वो इंगित कर देते हैं, एक
0: इंगित
1: डायरेक्शन
0: करते
1: दे
0: हैं, दिस अ
1: देते हैं।
0: प्रोबेबल
1: हाँ
0: डायग्नोसिस, अ कंफर्मेटरी डायग्नोसिस जो भी है, फाइनल डायग्नोसिस है, वो उस टिश्यू से ही बनता है।
1: मतलब मुझे लगता है कि वो जैसे हम स्पाय की बात करते हैं ना, कि
0: हाँ,
1: वो टीबी ऐसा है वो हर तरह के स्पाइक एम से भी बच जाता है।
0: तो रीढ़ की हड्डी की टीबी के लिए एक शब्द उपयोग किया जाता
1: जी
0: है, रीढ़ की हड्डी की टीबी एक खामोश खतरा,
1: हाँ, खामोश खतरा, क्या
0: खामोश
1: बात है सर।
0: खतरा है।
1: ये खामोश खतरा हमारे कुछ श्रोता भी महसूस कर रहे हैं, और ऐसे ही हमारे एक श्रोता हैं कैलाश सोलंकी जी, घंटाघर जोधपुर से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। ये बेसिकली टेलरिंग का कार्य करते हैं, तो कई बार एक ही जगह इन्हें 8-8 घंटे तक भी कुर्सी पे बैठे ही रहना होता है, कमर में भयंकर दर्द होता है, तो क्या ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं?
0: सबसे पहले तो आप देखें कि क्या आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। हाई रिस्क ग्रुप का मतलब परिवार में किसी को टीबी तो नहीं है, आपको
1: जी
0: पुराना टीबी तो नहीं हुआ, आपको अभी कोई टीबी तो इलाज तो नहीं चल रहा, कोई दूसरी बीमारियां तो आपको नहीं है।
1: जी
0: यदि आपको इस तरह का संदेह लगता है, आप अस्पताल में पहुंचे, विशेषज्ञ के पास पहुंचे, एक एक्सरे और खून की जांचें करके देखें, उसमें कोई संदेह होगा तो आगे की जांचें करके आपको इसके बारे में निश्चित तौर पर बता दिया जाएगा।
1: बिल्कुल। तो कैलाश जी सोलंकी, आशा है आपको अपनी बात का समाधान मिला होगा। एक और हमारे श्रोता हैं भवनलाल भाटी जी, ये लिखते हैं कि इन्होंने 2011 में L4 और L5 का ऑपरेशन करवाया था, और ऑपरेशन के बाद वैसे इनमें काफ़ी दिक्कतें आई थी, 2-3 साल परेशानी भी रही। इन्होंने कुछ आयुर्वेदिक इलाज भी लिया, उसके बाद में ठीक रहा, लेकिन अभी पिछले 2 वर्षों से जो L4, 3, 3.5 शेष बची है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करवाना चाहिए। वैसे अगर ये खुले में रहते हैं तो दर्द ज़्यादा रहता है और पाँव के नीचे तक दर्द नहीं जाता है, तो हालांकि ये अपनी दिनचर्या में 1-2 किलोमीटर पैदल भी चल लेते हैं, दौड़ भाग भी करते हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे में भी टीबी के लक्षण कुछ आ सकते हैं?
0: जी, वैसे ये इनका सवाल जो है आज के विषय से थोड़ा
1: जी
0: कम ताल्लुक रखता है। ये रीढ़ की हड्डी में स्लिप डिस्क की बीमारी या नस दबने की बीमारी से संबंधित है, तो हम उसकी अलग से चर्चा करें तो
1: जी
0: ज़्यादा
1: जी
0: बेहतर होगा। फिर भी मैं इनको एक बार इनका सवाल का जवाब दे देता हूँ
1: जी
0: कि यदि कोई भी व्यक्ति 1-2 किलोमीटर चल पाता है, रोज़मर्रा का जीवन उसका चल रहा
1: जी
0: है, जीवन यापन चल रहा है, तो शायद रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन को टाला जा सकता है।
1: जी
0: सबसे जरूरी है स्पाइन का ऑपरेशन या रीढ़ की हड्डी का स्लिप डिस्क का ऑपरेशन कभी भी करने से पहले हम सबसे पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि मरीज की एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कितनी
1: क्या
0: प्रभावित हो
1: है?
0: रही
1: जी
0: है।
1: जी
0: यदि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है, उसको रोज दर्द की गोलियां खानी पड़ रही है, उसके लिए कुछ कदम चलना भी दूभर हो रहा है, या फिर चलता है तो उसको और भी समस्याएं उत्पन्न होती है, तो इस तरह के मरीज में ऑपरेशन से बेहतर परिणाम मिलने का चांस रहता है।
1: तो एक और सर हमारे जो श्रोता हैं वो बाबूराम जी हैं, गांव डांगरी जिला जैसलमेर से, बाबूराम जयपाल, ये पूछ रहे हैं कि काफी सालों पहले वैसे एक बार ये जब विद्यालय भवन से घर आ रहे थे तो गिर गए थे, तो रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। अभी ये हाल फिलहाल चारपाई पर ही हैं, हाथ पैर ज्यादा काम नहीं करते हैं, और कहते हैं कई बार, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा की थी, कि कई बार शरीर में गर्मी अचानक बहुत महसूस होती है, बुखार,

0: इन्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है, क्या इन्हें भी टीबी हो सकती है, ये जानना चाह रहे हैं।
1: चूंकि मरीज लंबे टाइम से हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, वो बिस्तर पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी इम्यूनिटी या उनके शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा क्षमता है उसके अंदर काफ़ी कमी आई होगी, और जब प्रतिरक्षा क्षमता में कमी आती है तो टीबी के बैक्टीरिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे संबंधित कुछ जांचें हैं, एक्सरे और खून की जांचें करा के आप निकसिक जैसे जैसलमेर के हैं तो जैसलमेर जिला चिकित्सालय में एक बार अपने चिकित्सकों से आप संपर्क कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो हमारे और भी श्रोता अपने सवाल जो हैं वो हमें भेज रहे हैं डॉक्टर साहब, उन सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। और रीढ़ की हड्डी की टीबी को अब अगर पता भी चल जाता है तो कैसे हम इसके इलाज की तरफ अवेयरनेस के थ्रू जा सकते हैं, परिवार वालों का कितना सहयोग इसमें चाहिए और किस तरह से, और हम इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। लेकिन इन सब तमाम बातों से पहले सर आपकी ही पसंद का एक खूबसूरत सा गीत और सुन लेते हैं।

बिल्कुल परेशान हूँ मैं, नाराज नहीं हूँ जिंदगी, हैरान हूँ। और ये हैरानी तब होती है जब अचानक से हमारी रीढ़ की हड्डी में कहीं से टीबी की जो दस्तक है वो हमें महसूस भी होने लगती है। लेकिन ये महसूस होना क्या वाकई में हम महसूस कर पाते हैं, इसी विषय पे बात करने के लिए, यानी कि रीढ़ की हड्डी पे बात की टीबी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में डॉक्टर महेंद्र सिंह टाक

0: जो कि रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर साहब खास तौर पर आज हमसे इस टीबी को कैसे पहचाना जाए और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए हम इस विषय पे अब बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब पहले तो हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने सवाल भेजा है, शंकरलाल जी गोयल हैं जोधपुर से, ये कह रहे हैं इनके अंकल हैं जिन्हें 50 वर्ष की उम्र के बाद एक पांव में कुछ तकलीफ होने लग गई, पांव टेढ़ा पड़ने लग गया, तो जब डॉक्टर से चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि हड्डी में टीबी है। काफी इलाज करवाया लेकिन उस समय वो शायद ठीक नहीं हो पाए, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये हुआ कि धीरे धीरे उनका पांव टेढ़ा होना शुरू हो गया और बहुत ज्यादा टेढ़ा हो गया। तो ये जानना चाह रहे हैं कि और भी लोग बच सकें तो लक्षण जितना जल्दी हो सके कैसे पहचाने, और खासतौर पर जब बात रीढ़ की हड्डी की हो, इनके तो पांव की हड्डी में थी प्रॉब्लम, लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी में हो तो कितना जल्दी पहचाने ताकि उतना ही जल्दी इलाज भी शुरू किया जा सके।
1: इसके लिए अंग्रेजी का एक प्रोवर्ब काम में लिया जाता है, रीढ़ की हड्डी की टीबी में डिले इज डिजास्ट्रस।
0: जी जी,
1: यदि आपने लेट किया तो आप ऐसी डिजास्टर में, ऐसी जोखिम में फंस जाते हैं कि जहां से निकलना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि यहां काम हड्डी की टीबी होके खत्म नहीं होता। रीढ़ की हड्डी में सबसे इंपॉर्टेंट चलती है स्पाइनल कॉर्ड, मेरु
0: जी,
1: रज्जू।
0: जी।
1: जब भी रीढ़ की हड्डी की टीबी होगी उसमें से जो रस्सी बनेगी, उसमें से जो मवाद बनेगी या जो हड्डी के टुकड़े गलेंगे वो उस मेरु रज्जू को दबाने लगेंगे।
0: और ये तो हमारे जीवन का आधार है,
1: जीवन का आधार है। उसके साथ साथ यदि आपकी स्पाइनल कॉर्ड दबने लगती है तो आपको लकवा होने लगेगा।
0: बिल्कुल,
1: आपको गर्दन की हड्डी में यदि टीबी हो गया तो आपके चारों हाथों पांव का लकवा हो जाएगा।
0: हाँ।
1: यदि आपका पीठ की हड्डी में लकवा टीबी हो गया तो आपको कमर के नीचे का पूरा एरिया में लकवा हो जाएगा।
0: जी।
1: तो इसलिए इस हड्डी की टीबी बाकी बोन एंड जॉइंट की टीबी की तुलना में ये चीजें या दोधारी तलवार है ये।
0: हाँ।
1: हड्डी को तो डैमेज करती है और साथ में उस नस का भी नुकसान
0: कर देती है।
1: इसलिए इसका बहुत जल्दी इमीडिएट तुरंत डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। यदि डिले होता है, मान लो कोई मरीज हमारे पास, बहुत सारे मरीज
0: जी
1: मरणासन स्थिति में हमारे पास पहुंचते हैं, दोनों पांव काम नहीं कर रहे। क्या काम करता था पहले? पत्थर की खान में काम करता था, सिलिकोसिस हुआ, सिलिकोसिस के मरीज को फेफड़ों का टीबी होता है, फेफड़ों के टीबी से रीढ़ की हड्डी का टीबी हो जाता है,
0: हो जाता है,
1: और रीढ़ की हड्डी का टीबी होकर उनको लकवा हो जाता है, फिर वो हमारे पास पहुंचता है। तो जोधपुर शहर के आसपास कुछ गांव ऐसे हैं जो मैं अभी यहाँ जाहिर नहीं करना चाहूंगा उन गांवों के नाम, एक एक गांव में कम से कम 10-10, 15-15 मरीजों को रीढ़ की हड्डी के टीबियों को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, क्योंकि वो पूरा का पूरा कस्बा, पूरा का पूरा गांव, वहां का पूरा एक कम्युनिटी पर्टिकुलर खान का काम करता है।
0: हाँ,
1: पत्थर का काम करता है। तो उन मरीजों में ये बीमारी बहुत बहुतायत में पाई जाती है। यदि वो मरीज समय रहते हमारे पास पहुंच जाए तो उसको जो भी 6-8-9 महीने का ट्रीटमेंट टीबी का चलता है, उसके बाद एकदम नॉर्मल जिंदगी में लौट जाता है। लेकिन कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो लेट करते हैं, समय पे इलाज लेते नहीं है, बीच में जादू टोना में फंस जाते हैं या अल्टरनेटिव थेरेपी में फंस जाते हैं। रीढ़ की हड्डी की टीबी या कोई भी टीबी में अल्टरनेटिव थेरेपी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, ये कुछ काम नहीं करती है। इसमें आपको डायग्नोसिस बनने के बाद टीबी की दवाई ही लेनी है। और टीबी की दवाई के लिए कहा जाता है कि टीबी की बीमारी के लिए कहा जाता है या रीढ़ की हड्डी की टीबी की बीमारी के लिए कहा जाता है, ये एक मेडिकल डिजीज है।
0: जी जी,
1: ये सर्जिकल डिजीज नहीं है। मैं चूंकि सर्जन हूँ, स्पाइन सर्जन हूँ, रीढ़ की हड्डी का सर्जन हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये क्या बात कह रहा हूँ कि ये एक मेडिकल डिजीज है। सिर्फ दवाइयों से ही इसका खात्मा होगा। हम आपका नस दब जाएगी उसको फ्री कर देंगे, आपको जांच करके देंगे, लेकिन अंततोगत्वा अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो टीबी की दवाइयां ही कारगर है। तो समय रहते यदि आप पहुंचे तो वी विल मेक अ बिग डिफरेंस। तो उससे बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आएगा।
0: लेकिन डॉक्टर साहब, एक जैसे मैं भी ये चीज जानना चाह रही हूँ और हमारे एक श्रोता है, इनका नाम नहीं इन्होंने भेजा है, SKJ जो इनका एब्रिवेशन दिख रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए इनकी वर्टेब्रा जो है स्पाइन की हड्डी की, उसमें अगर कोई बल्ज इन्हें दिखाई देता है या समझ में आता है, तो क्या सिर्फ सर्जरी से, या जैसे और भी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि चलिए रीजन तो ना हो लेकिन दवाइयों के साथ साथ अगर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट किया जाए, एक्सरसाइजेस की जाए या स्ट्रेचेस को अपनी लाइफ में एक हिस्सा बनाया जाए, तो क्या ये सब उस मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं?
1: जी, पहले तो इनका थोड़ा परसेप्शन या समझ उस हिसाब से है, जो बल्ज होता है वो वर्टिब्रा में नहीं होता, बल्ज डिस्क में होता है। ऊपर नीचे दो वर्टिब्राएं होती है, जो हड्डियां होती है उसके बीच में एक शॉक और वाशर होता है
0: जी।
1: जिसको हम गादी कहते हैं, वाशर कहते हैं।

0: हैं, डिस्क कहते हैं,
1: जी जी
0: उसमें बल्ज होता है, क्योंकि हड्डी बल्ज नहीं होती है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, जो मांस होगा वो बल्ज होगा।
1: बल्ज होगा
0: बल्ज एक ठीक उसी तरह है जैसे आपके सिर में दो सफेद बाल हैं।
1: जी
0: इट इज जस्ट एजिंग, इट्स जस्ट लाइफ स्टाइल।
1: ओके,
0: वो आपकी एक उम्र है,
1: वो आएगा,
0: जीवन शैली है, वो सबको आएगा
1: आएगा।
0: और 90 से 95% लोग डिस्क बल्ज के

0: तब चीजें ऑपरेशन की ओर बढ़ती हैं।
1: जी,
0: ठीक है,
1: एक डॉक्टर साहब, मैं अपने अगले लिसनर का एक सवाल लूं, उससे पहले एक सवाल मेरे मन में भी आया है। चलिए, जेंडर का, एज का कोई डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ नहीं दिखाई देता, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकती है। जैसा आपने कहा कि पर्टिकुलर कोई आपका जो वर्क स्टाइल है वो आपको प्रोन कर देता है, जैसे खान में काम करने वाले हैं वहाँ टीबी की प्रोननेस बढ़ जाती है, क्या खाना पीना कोई एक विशेष प्रकार का हो, या कोई जैसे अगर मैं कहूँ ओबेसिटी या कुछ दूसरी बीमारी, डायबिटीज का होना या हार्ट प्रॉब्लम का होना, क्या इससे भी प्रोननेस बढ़ जाती है?
0: टीबी का सीधा सा जो संदर्भ है वो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र से है,
1: जी
0: आपकी इम्यूनिटी से है। आपके शरीर का कोई भी ऐसा बीमारी, आपके शरीर का कोई भी ऐसा बनावट, जैसे मोटापा हुआ और
1: जी
0: कोई दूसरी बीमारियां हुई, या आपका आहार, आपका
1: जी
0: भोजन,
1: जी
0: उसमें आप यदि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाला भोजन, कि कुछ लोगों को बासी भोजन खाने की आदत होती है,
1: हाँ, आजकल
0: या
1: जंक
0: फिर
1: फूड जो चल रहा है
0: जंक फूड
1: यंगस्टर्स में,
0: है, पुराना स्टोर किया हुआ भोजन है, पैक्ड फूड है
1: हाँ,
0: और फास्ट
1: प्रोसेस्ड,
0: फूड
1: हाई
0: है, प्रोसेस्ड
1: प्रोसेस्ड,
0: फूड है, ये
1: ये
0: सब
1: सब
0: चीजें
1: प्रोननेस
0: आपके
1: बढ़ाते हैं।
0: प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है और वो तो टीबी का बैक्टीरिया तो बाढ़ जोरा बैठा
1: बिल्कुल, मैं कई
0: जैसे।
1: बार ये डॉक्टर साहब देखती हूँ, शायद मेरे मन में भी आपके मन में भी आता होगा, जैसे हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे सो कॉल्ड फूड ब्लॉगर्स को, ठेलों की, और जो मतलब हाइजीन का तो कोई कंसर्न ही नहीं है, हम सामने देख रहे हैं किस तरह के एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बन रहा है, या कोई सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा, हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जा रहा, और उनकी तारीफें करते, तो इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। और आप देखिए, अगर आसपास हम अपने शहर में भी कहीं पे भी जहां पर भी ठेले और सब हैं, और इस मौसम में जब आंधी धूल कचरा हर तरफ खुले में फैल रहा है, और अगर हम उस तरह के खाने का सेवन करते हैं, तो भी टीबी तो शायद आप जैसे कह रहे हैं कि बाहर ही जो रहा है
0: बिल्कुल
1: हमारी।
0: मैडम, ये एक नई बीमारी अभी हमारे देश में या
1: हाँ
0: पूरे विश्व भर में प्रचलित है। उसकी गुणवत्ता पे कोई नहीं जाना चाहता, केवल
1: हाँ
0: स्वाद और उसकी उसकी दिखावट पे लोग
1: हाँ
0: भरोसा करते हैं। बहुत सारे लोगों को देखते हैं, आप भोजन है, भोजन को सबसे पहले आपको ढक के रखना चाहिए।
1: जी
0: दूसरा, उसका जो बनने की प्रक्रिया है उसमें एकदम नीट एंड क्लीनिनेस होनी चाहिए, वो हाइजीन होनी चाहिए।
1: होनी चाहिए।
0: यदि वो नहीं है तो वो स्वाद किसी काम का नहीं जो आपको बीमारी दे जाए।
1: जी, बिल्कुल
0: तो बिल्कुल, जो जनरेशन्स हैं, युवा लोग हैं, उनको इन सब चीजों पे ध्यान दें कि दिखावे में नहीं आवे।
1: हाँ
0: महीने में एक आध बार कभी भोजन कर लिया तो कर लिया, बट कई बार ये भी देखा जाता है, आप बाहर खाना खाने आए और पूरा का पूरा परिवार दूसरे दिन सुबह फूड पॉइजनिंग का शिकार
1: हाँ
0: हुआ।
1: और हमारे शहर में तो फिर भी थोड़ा कम है, क्योंकि अभी तक थोड़ा कल्चर बना हुआ है। अगर हम मेट्रो सिटीज की और बड़ी सिटीज की बात करें, तो वहां तो जंक फूड और ये सब, मतलब मुझे लगता है जो आप स्पेसिफिकली रीढ़ की हड्डी की टीबी तक पहुंचने की जो बात है, वो
0: पहले
1: बहुत
0: आप
1: ज्यादा प्रोननेस बढ़ जाती
0: जंक
1: है।
0: फूड खाने के लिए जाना पड़ता था, अब आपको
1: हाँ,
0: जंक फूड घर ही आ जाता
1: घर
0: है।
1: ही आ जाता है।
0: आप जस्ट एक, आप दिमाग में थॉट आता है, उसी मिनट आप उसको ऑर्डर करो और वो
1: जी
0: थॉट खत्म होता है, उससे पहले वो भोजन आपके सामने होता है।
1: अच्छा,
0: तो उसने
1: बिल्कुल
0: चांसेस और
1: सर,
0: बढ़ा दिए हैं।
1: बिल्कुल, चांसेस तो बढ़ा दिए। अभी जैसे सर आपने कुछ देर पहले बात की थी कि दो तरह की टीबी है, जो एक सामान्य टीबी होती है और एक जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है, और उसके लिए जो दवाइयां ली जाती हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो एक हमारे लिसनर हैं कांडा फलसा मियाँ चौक से, अब्दुल हमीद छिपा, ये जानना चाह रहे हैं कि जो ये टीबी की दवाइयां जिनके साइड इफेक्ट्स की आप बात करें, तो ये साइड इफेक्ट्स कितने हो सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि इनसे दूसरी बीमारियां हो जाए या दूसरे अंगों तक ये पहुंच जाए, तो ये कितनी सेफ है और किस तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं?
0: जहाँ तक सिंपल टीबी की बात है,
1: जी
0: उसके अंदर जाने वाली चार दवाइयाँ होती है, आइसोनियाज़िड, रिफैम्सिन, एथेम्बिटॉल एंड पाइरेज़िनामाइड,
1: जी
0: जिसको हम HRZE बोलते हैं। इनके भी साइड इफेक्ट्स है, हेपेटाइटिस हुआ, यूरिन का कलर रेड होना, कुछ लोगों को उससे एलर्जी हो जाना, आँखों
1: जी
0: का विजन जो है। तो सिंपल टीबी की दवाइयों के जो साइड इफेक्ट हैं वो लगभग जैसे ही दवाई बंद करते हैं चीज़ें अपने हिसाब से सेटल होने लगती है। कई
1: जी
0: बार हमारे को बीच में भी दवाई बंद करनी पड़ती है, लेकिन MDR TB की जो दवाइयां हैं वो बिल्कुल डॉक्टर के सुपरविजन में ही आपको लेनी है। कई बार आपको दूसरी बीमारियों का इलाज भी उसके लिए करवाना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और सर हम इतनी सारी बीमारियों के इलाज की बात भी कर रहे हैं और खास तौर पर टीबी की बात कर रहे हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट और मनोरंजन अपनी जगह है, तो आप ही की पसंद का ये खूबसूरत सा राजस्थानी गीत हमारे श्रोताओं को भी सुनवा देते हैं। प्रोग्राम इस वक्त ट्यून है आपके साथ, हेलो डॉक्टर।
2: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

दोस्तों आप और हम इस वक्त जुड़े हुए हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम के साथ 102.1 एफएम सन सिटी पर और आज के इस प्रोग्राम में हमारे खास गेस्ट हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह टाक जो कि रीढ़ की हड्डी के रोग विशेषज्ञ हैं और खास तौर पर राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में भी राजस्थान सरकार के स्पाइन इंजरी सेंटर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और

0: बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल लोगों के आज जो रीढ़ की हड्डी की टीबी से जुड़े हुए थे वो डॉक्टर साहब ने आज उनका समाधान भी पेश किया है। और खासतौर पर डॉक्टर साहब मतलब मैं भी और हमारे कुछ श्रोता भी ये जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमें पता चल गया कि भाई रीढ़ की हड्डी में टीबी है, अब इसका इलाज शायद सामान्य रूप से दवाइयों से भी कुछ हद तक, और अगर सर्जरी की जरूरत है तो पहले तो पेशेंट सर्जरी का नाम सुन के ही डर जाता है, और वो भी रीढ़ की हड्डी की अगर सर्जरी है तो उसे लगता है जो मेरे पूरे एक लाइफ का आधार है, तो ये क्या वाकई में उतना ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डरने वाला प्रोसेस है, या हो जाता है मतलब डरने की जरूरत नहीं है?
1: सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में सबसे पहला महत्वपूर्ण है आपका डायग्नोसिस।
0: जी,
1: एक बार यदि हमारा उसका निदान हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि ये बीमारी है,
0: जी जी,
1: उस निदान के बाद फिर आता है ट्रीटमेंट। पहले भी मैंने कहा टीबी स्पाइन एक मेडिकल डिजीज है, तो हम जहां तक हो सके उसका दवाइयों से इलाज करने की कोशिश करें। उससे पहले हमें डायग्नोसिस चाहिए, तो डायग्नोसिस करने के लिए बहुत सारे तरीके। आपको लग रहा है कि रीढ़ की हड्डी के आसपास कहीं रस्सी जमा हो गई है या मवाद पड़ी है, तो आपको उसका सैंपल लेने की प्रयास करना चाहिए, जहां तक संभव हो हर संभव प्रयास करना चाहिए। आप सोनोग्राफी की मशीन में देख के वहां से सुई डाल के रस्सी का सैंपल ले लें। आप यदि सोनोग्राफी की मशीन से संभव नहीं होता है तो आप सीटी स्कैन की मशीन में देख के खून की नसों के आसपास भी है तो जाके सैंपल ले लें। इससे भी संभव नहीं होता है तो पेशेंट का ऑपरेशन थिएटर में लेके छोटा सा चीरा लगा के ओपन बायोप्सी कर लें।
0: जी,
1: सबसे पहले है बायोप्सी करके उसका डायग्नोसिस बनावे,
0: वही सबसे एक्यूरेट,
1: सबसे एक्यूरेट होना चाहिए।
0: जी,
1: एक बार यदि आपका डायग्नोसिस वाला पार्ट एक्यूरेट है तो आप ऑलरेडी लड़ाई जीत चुके।
0: जी,
1: पहले तो आपको ये पता चल गया टीबी है कि नहीं, फिर है तो कौन सी वाली है, सिंपल वाली है,
0: 100% क्यूरेबल है।
1: टीबी इज 100% क्यूरेबल, वंस यू मेक अ डायग्नोसिस इज
0: क्यूरेबल।
1: सो दो बड़े सवाल आपको मिल गए, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई भी सर्जरी होती है उसके अपने इंडिकेशन होते हैं कि किन मरीजों में ऑपरेशन किया जाना चाहिए। तो उनको मोटे मोटे तौर पे मैं दो या तीन टुकड़ों में बांटता हूं। सबसे पहला इंडिकेशन है कब ऑपरेशन किया जाना चाहिए। तो पहला है इंडिकेशन द डाउटफुल डायग्नोसिस। यदि आपको एक दो महीने का ट्रीटमेंट ले लिया, तीन चार महीना ट्रीटमेंट हो गया, अभी भी आप चीजों को लेकर क्लियर नहीं है कि यार क्या है क्या नहीं है, तो डोंट हेजिटेट टू ओपन इट, खोल के उसका सैंपल ले ले। या उसको आपको लग रहा है कि हड्डी बहुत ज्यादा गल गई है जो बाद में नस को दबा देगी, तो उसमें ऊपर नीचे स्क्रू लगा के उसको सपोर्ट दे दें। तो जब तक 6-8 महीने का दवाई चलेगा तो वो हड्डी आपस में चिपक जाएगी, तब तक स्क्रू सपोर्ट देते रहेंगे। जैसे RCC जमती है तब तक हम नीचे सपोर्ट लगाते हैं, जिस दिन RCC पक जाती है तो सपोर्ट को हटा देते हैं, और नहीं भी हटाएं तो वो स्क्रू जो है वो हड्डी के साथ में रम जाते हैं या चिपक जाते हैं, तो उसका जीवन चलता रहता है। पहला इंडिकेशन हो गया डाउटफुल डायग्नोसिस। सेकेंड इंडिकेशन हो गया पेशेंट का पैरालिसिस। कोई पेशेंट आया जो उससे इतनी मवाद बन गई या इतनी हड्डी के टुकड़े बन गए छोटे छोटे, उन्होंने नस को दबा दिया, अब पैरालिसिस हो गया। अब दवाइयों से पैरालिसिस ठीक तब होगा जब वो दवाइयों से रस्सी सूखेगी। अब रस्सी सूखने में दवाइयां ले लेगी 2-3 महीने, तब तक पेशेंट पैरालिसिस में पड़ा रहेगा तो उसकी नस भर जाएगी। तो जब पेशेंट पैरालिसिस में आता है तब, या डाउटफुल डायग्नोसिस हो। तीसरा, अब डायग्नोसिस भी हो गया, पेशेंट को पैरालिसिस भी नहीं है, लेकिन पेशेंट आपके पास आ रहा है साहब एक आधी हड्डी गल गई है और उसको बहुत भयंकर दर्द है, तो एक्सट्रीम पेन जब पेशेंट को होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो क्योंकि हड्डी गल रही है तो हड्डी सपोर्ट मांगती है, तो हड्डी सपोर्ट मांगती है, तो ऐसी स्थिति में उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, उसको हम सपोर्ट दे दे रहे। तो मोटे मोटे तौर पे ये तीन ऑपरेशन के कारण बनते हैं रीढ़ की हड्डी की टीबी के मरीजों के अंदर।
0: तो बिल्कुल इससे डरने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और आपकी विशेषज्ञ सेवाएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी। तो श्रोताओं, आज हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर महेंद्र सिंह टाक, जो कि रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं महात्मा गांधी अस्पताल और डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में, और साथ ही साथ राजस्थान सरकार के स्पाइन इंजरी सेंटर प्रोजेक्ट के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी हैं। डॉक्टर साहब, आज आपसे हमने रीढ़ की हड्डी की टीबी के विषय में बात की, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजे लामरोड। तो अब इस प्रोग्राम हेलो डॉक्टर से आपकी दोस्त स्वाति बंसाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हेलो डॉक्टर। हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं विशेष भेंट वार्ता, जिसका विषय है पर्यावरण, संकट के संकेत और हमारी जिम्मेदारी। हमारे मेहमान है श्री अनूप के आर। आप क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर हैं और आपसे बातचीत की है संजय व्यास ने। प्रस्तुति व संयोजन है राजेश लामरोड का।
2: आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है क्लाइमेट एक्शन। तो इस क्लाइमेट एक्शन थीम पर हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारा अपना योगदान हो सकता है। हमने देखा है कि हमारे छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो भी पर्यावरण के प्रश्नों पर बहुत चिंतित रहते हैं। हम सभी पर्यावरण के प्रश्नों पर चिंतित है क्योंकि धरती हमारी जो है, पृथ्वी जिसे हम माँ भी कहते हैं, वो बार बार डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजती रहती है। वो बार बार कहती रहती है कि मेरी स्थिति या स्वास्थ्य ठीक नहीं है। धरती का स्वास्थ्य ठीक न होने का मतलब धरती के पर्यावरण में कहीं न कहीं कोई दिक्कत होना है। और ये दिक्कतें बहुत सारे इंडिकेटर्स के जरिए हमारे सामने आती हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि किस तरह से हमारी धरती बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, महासागरों के जल का जो स्तर है वो बहुत बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स हमारे पिघलते जा रहे हैं उससे भी पानी का स्तर बढ़ रहा है, हमारी वायु प्रदूषित होती जा रही है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, हमारे वन खत्म हो रहे हैं जो धरती के फेफड़े हैं, और एक तरह से हमारी धरती का जो जीवन है वो पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। हम चाहते हैं कि हमारी धरती हमेशा सांस लेती रहे, जिंदा रहे, तो उसका पर्यावरण भी उतना ही स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इस मौके पर बातचीत करने के लए हमारे साथ श्री अनूप के आर हैं, संभागीय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर संभाग, और इनसे हम जानेंगे क्योंकि आप पर्यावरण के क्षेत्र में, खास करके वनों के क्षेत्र में, नीति निर्माण के क्षेत्र में इस संदर्भ में जो भी नीतियां बनाई जा रही है और भारत क्या योगदान कर रहा है, कर सकता है, इस पर सक्रिय रूप से आप मौजूद रहे हैं और आपका रोल रहा है, तो हम बातचीत करेंगे इस पर। अनूप सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद।
2: और हम जानना चाहेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस हम हर साल 5 जून को मनाते हैं। 5 जून का जो दिन है, यानी जून का दिन है, वो हमारे यहाँ जोधपुर में बहुत ज्यादा गर्म रहता है, हॉट रहता है। आप जानते ही होंगे, आप चूंकि गॉड्स ओन कंट्री केरला से आते हैं, और हमारा जो जोधपुर है ये सन गॉड्स ओन कंट्री है, यहाँ सिर्फ सूर्य देवता है, उन्हीं की मेहरबानी रहती है
3: जी।
2: तो बहुत तापमान रहता है, और 5 जून के दिन हम विश्व पर्यावरण दिवस पर आमतौर पर करते क्या है, स्कूलों में या जगहों पर जाकर के पौधे लगाते हैं। पौधे लगाने से हम ये सोचते हैं कि हमने विश्व पर्यावरण दिवस अपने तरीके से बढ़िया मना लिया, ये सारे पौधे बड़े पेड़ बनेंगे और इस तरह से एक दिन हम एक जंगल बना लेंगे। लेकिन होता ये है कि यहाँ की जलवायु में 5 जून का दिन जो है वो पौधों के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। वो उन पौधों को सस्टेन रखना, खास करके जो नन्हे नन्हे छोटे पौधे होते हैं वो सस्टेन नहीं रह पाते, उनको इस गर्मी में जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम कुछ और कर सकते हैं जिससे हम ये चिंता व्यक्त कर सकें कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें हमारी धरती की बहुत चिंता है।
3: मैं ये मानता हूँ कि हमको हर दिन पर्यावरण दिवस के जैसे मनाना चाहिए।
2: यस, एग्जैक्टली।
3: वो एक दिन हम इसको मनाने के लिए चुन लिया है, वो एक सिंबल के रूप में है, एक दिन जिसमें हम अगर सोने वाले हैं हमको जगाने के लिए।
2: बिल्कुल।
3: और पर्यावरण के जो प्रति हमको जागरूक करने के लिए एक दिन, अभी मेरा ये विचार है कि राजस्थान में समर जब पीक पे रहते हैं, वायु प्रदूषण भी उसी टाइम में पीक पे ही होगा, क्योंकि बारिश होने पर बहुत सारे चीज वॉश आउट होके जमीन पे आ जाते हैं। और पौधे वितरण करने का टाइम वन विभाग द्वारा भी, हमारे अभी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रोग्राम चलाए
2: हैं, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाए हैं,
3: हाँ, और वंदे गंगा अभियान भी अभी चलाया है। तो ये सब बारिश के सीजन के पहले हमको करने वाले कुछ कार्यों को एक बढ़ावा देने के लिए है, जैसे जल संरक्षण कार्य। राजस्थान के जलस्तर बहुत नीचे है, बारिश से जितने भी पानी जमीन पे गिरते हैं उसको जमीन के अंदर घुसने का सबसे ज्यादा मौका देना चाहिए। ये काम सारे हमको करने का टाइम है ये गर्मी के महीने।
2: अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें सर, इन टोटल, तो हमारी

0: के पर्यावरण को जो सबसे बड़ा खतरा है वो किस तरह का है, क्योंकि इस बार की थीम क्लाइमेट चेंज रखी है, क्लाइमेट एक्शन। तो हमारा जो जलवायु परिवर्तित हो रहा है, यानी जो ऐसी चीज जो हमारा एक स्थायी मौसम है उसमें चेंज आ रहा है धीरे धीरे, तो क्या ऐसा बड़ा खतरा है जो जिसको हमें तुरंत एड्रेस करने की जरूरत है?
1: तुरंत एक दिन में एड्रेस करने वाला समाधान के लिए नहीं है, क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं है। अब इसका साइंस यह है कि हम 20 साल 25 साल पुराने जितने वाहन थे उसके 10 गुना हो गए, उसका मतलब उतना ज्यादा।
0: इसके एक्शन प्लान कई सालों के होते हैं जी।
1: और जितने कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में के रिलीज होता है उतने को हमको पेड़ों में लकड़ी के रूप में ट्रैप करना है। तो इसका मतलब 10 गुना, अगर गाड़ियां धरती पे बढ़ गई तो 10 गुना पेड़ भी बढ़ना चाहिए, एक सिंपल लॉजिक से।
0: बिल्कुल
1: लेकिन ये उल्टा हो रहा है, गाड़ियां बढ़ रहे हैं और पेड़ों की बड़े पेड़ होना चाहिए जिसमें वुड जो फर्नीचर के रूप में
0: जी
1: कई सालों के लिए स्टोर होना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: लेकिन ये दोनों में जो इम्बैलेंस है ये क्लाइमेट चेंज को बहुत बढ़ावा दिया है। अब समाधान के लिए हम जानते हैं कि मोटर व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए अभी एक पिलर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स मीट आउट करने वाले गाड़ियों को ही रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। अभी वे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोशन दिया जा रहा है। इस प्रकार हम अंतरिक्ष में जो एमिट होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को मिनिमाइज करने का बहुत सारे
0: जी
1: चीज कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे ये अभियान जैसे रूप में और हर व्यक्ति को जागरूक करके ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं, ये दोनों साथ साथ चलने से कुछ सालों में इसमें हमको चेंजेस
0: परिवर्तन
1: मिलेंगे।
0: आएगा और स्मॉल जो बेबी स्टेप्स हैं वो मेक ए बिग लीप हम कह सकते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी
0: और इसका तरीका ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, बल्कि आप जो कोशिशें शुरू करते हैं उनके परिणाम कई सालों में आते हैं। और सर, पर्यावरण को लेकर के हमारी चिंताएं तो कई सालों पुरानी है, और इन चिंताओं में अब हमने देखा है कि एक्टिविस्ट के साथ में जो छोटे बच्चे हैं, क्रेटा थनबर्ग का हम उदाहरण जानते हैं, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में कितने फोर्सफुली तरीके से इन सारी चिंताओं को व्यक्त किया है। तो छोटे बच्चे तक आजकल ये मानते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। जो आपने जिक्र किया कि किस तरह से जो इमिशंस है उनको हम कर सकते हैं। दूसरा एक जो बड़ा खतरा है वो ये है कि जो हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या पॉसिबल है या नहीं है, और डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, ये दोनों हैंड इन हैंड नहीं जा पाते। कई बार ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के सामने आकर के काम कर रहे हैं। तो किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो इस तरह का हो जिसमें हम इस तरह की एनर्जी सोर्सेज का प्रयोग करें जो रिन्यूएबल हो और जो सस्टेनेबल हो, जो लंबे समय तक हमारे विकास को भी सस्टेन करे, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाए।
1: जी, ये आप अगर देखो प्राय देखा जा रहा है कि बड़े स्केल का एक पोल्यूटिंग इंडस्ट्री एक पूरा नदी को शायद उसका पानी को खराब करेगा। और ये मेजर पोल्यूशन से हम हमारे नदियों के किनारे ज्यादातर इंडस्ट्रीज उसमें लगे हुए, क्योंकि पानी की जरूरत पड़ेगा उनको इसको मीट आउट करने के लिए। तो इंडस्ट्रीज के लिए नॉर्म्स बने हुए हैं लेकिन उसका पालना नहीं हो रहा है। उसका सीवेज ट्रीटमेंट का नॉर्म्स है, जीरो एमिशन तक पहुंचाना है, क्योंकि सारे जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस आते हैं उसको ट्रीट करके वापस उसी इंडस्ट्री में यूज करने का नॉर्म्स है, लेकिन वहां तक हम पहुंचे नहीं है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन की बहुत जरूरत है। और बाकी जो आप नए पीढ़ियों की बात कर रहे हैं, 20-30 साल पहले अगर कर देते आज के जो युवा
0: तो
1: आज
0: आज
1: के
0: जो बच्चे गुस्से में बोल रहे हैं वो
1: हाँ
0: नहीं सुनना पड़ता हमें
1: हाँ
0: जी।
1: क्योंकि हमारे पुराने पीढ़ी के लोग आज भी सड़क पे कचरा फेंकने में या प्लास्टिक का बिना कोई सोच के इस्तेमाल करने में, और जो जहां पर कंट्रोल कर सकते हैं वहां पर कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि उनको उसका जरूरत नहीं महसूस हो रहा है। ये स्कूल में बच्चों को अगर रोज टीचर के मुंह से यह सुनना पड़ा है कि आप पानी व्यर्थ ना करें और प्लास्टिक बोतल डेली बदल के मत आया करो, एक स्टील का बोतल ले आया करो, इस तरह के बात सुन के 2-3 साल में बच्चे अपने आप ही पर्यावरण के एक अनुरूप का जीवन शैली में आ जाते। वो मेरे हिसाब से ये हम थोड़ा देरी कर दिए, हमारे प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने के बाद ही हमने ये इस तरह
0: आजकल
1: का
0: सर ऐसा
1: शुरू कर
0: होता है कि
1: दिया।
0: जब आप सब्जी लेने जाते हैं और थैली लेके, कपड़े की थैली नहीं

0: ले जाते हैं तो बच्चे आपको टोकते हैं कि वो प्लास्टिक में आपको सब्जियां देगा, इसलिए आप हमेशा कपड़े की थैली ले जाइए। ये सुनना हमें इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमने अपने बचपन में वही गलती की कि हम अपने बच्चों की बात सुनने के लिए हमने हमेशा गलती की कि हम उस प्लास्टिक की थैली को यूज करते रहे।
1: जी, मैं कई बार सब्जी लेने जाते समय मैं मेरे से बिना पूछे प्लास्टिक के थैली में देता हूँ। मैं बोलता हूँ उनको कि मेरे पास कपड़े का थैली है, लेकिन वो और
0: तब भी देते हैं।
1: वो दुकान वाले तब बताते हैं कि यहाँ जो आने वाले लोग, अगर मैं उनको प्लास्टिक के थैली में अलग अलग सब्जी अलग अलग थैली में नहीं दिए तो कल से मेरे पास नहीं आएगा, वो अगले बगल वाले के पास जाएगा। तो ये सोसाइटी में हम एनफोर्समेंट से ये नहीं कर सकते, तो एजुकेशन से ही कर सकता है।
0: बिल्कुल, एजुकेशन से ही किया जा सकता है। और सर एक चीज ये भी कि स्वच्छता जो है, हमारी हाइजीन और क्लीनलीनेस है, ये प्रदूषण, वन और वन्य जीव, ये सब आपस में इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं है कि स्वच्छता एक अलग मसला है और प्रदूषण जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही मसला है और वन और वन्य जीव जो है वो आपके हिस्से में आता है। ये सारे के सारे, क्या हम पृथ्वी के एनवायरनमेंट को, हम ये महसूस करते हैं कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और किसी न किसी रूप में पृथ्वी के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं ये?
1: जी जरूर। हम इसका एक एग्जांपल आप राजस्थान में देख पाएंगे कि पर्यावरण विभाग, वन विभाग और पोल्यूशन कंट्रोल विभाग, ये तीनों में फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, तो उनका जो भी एक्शन वो लेता है उसमें ये तीनों का इंटीग्रेशन का एक कंपोनेंट अपने आप आ जाता है। ये होना भी चाहिए। वैसे ये दोनों विभाग एक ही मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, इसके कारण भी इसमें इंटीग्रेशन पॉसिबल है। इसको अलग अलग से कभी नहीं देखना चाहिए। ये ऑफिसर्स, फील्ड ऑफिसर्स सारे को इसमें रोटेशन के रूप में अगर लगाया जाए तो ये एक दूसरे विभाग के बातों को दूसरे को जानने का भी मौका मिलेगा और उसमें इंटीग्रेट भी हो जाएगा अपने आप।
0: जिस तरह से हम अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए चिंता करते हैं, उस तरह से इंडिविजुअल लेवल पर हम धरती के स्वास्थ्य की चिंता, उसके पर्यावरण की चिंता किस प्रकार कर सकते हैं और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सिर्फ चिंता करना तो एक अलग चीज है, किस तरह से हम अपना अंशदान, सहयोग दे सकते हैं?
1: इसके लिए आपको एक तो प्रकृति से अपने आपको जो आनंद मिलता है,
0: प्यार करना आना चाहिए।
1: आपको वो किसी और माध्यम में, चाहे टेलीविजन हो, आप सिटी में मॉल में जाते हो, ये किसी भी जगह पे नहीं मिलने वाला एक आनंद आपको प्रकृति से मिलता है। इसके लिए आपको एक सुंदर वाला जगह पे आपको जाना जरूरी है। अभी आप देख सकते हैं दिल्ली में, नोएडा में जो आईटी पार्क्स में काम करने वाले लोग, सभी लोग वीकेंड्स पे बाहर किसी हिल्स पे, कोई बर्ड सैंक्चुरीज पे, कोई वेटलैंड्स पे जाते हैं, क्योंकि इसके बिना वो मंडे को वो ऑफिस जा नहीं पाएगा, क्योंकि आपको रिजुविनेशन चाहिए, रिवाइटलाइजेशन चाहिए। अब ये इसका दूसरा पहलू है नहीं, ये आपको महसूस करने के बाद में पर्यावरण को जो भी नुकसान आपके नजर में आते हैं ना, इवन एक व्यक्ति कोई प्लास्टिक का बोतल फेंकते हैं, थैली फेंकते हैं, वो भी आपको चुभने लगेगा, आपको दर्द होने लगेगा उससे। ये करना चाहिए, हर व्यक्ति इस लेवल पे पहुंचना है। और इसके लिए आप स्कूल में, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक एनवायरमेंटल एजुकेशन का भी एक विंग है, हम ये सोच रखते हैं कि आपको एक इमोशनल एक एक्सपीरियंस नेचर के साथ, वाइल्ड लाइफ के साथ एक बार होना है, वो एज में होना है आप टीनेज से पहले, उसके बाद वो व्यक्ति अपना पूरा जीवन के लिए पर्यावरण प्रेमी रहेगा।
0: यानी ये है कि हर वीकेंड पर अगर आप किसी नेशनल पार्क में या फॉरेस्ट में जाते हैं तो आप प्रकृति की खूबसूरती को महसूस करेंगे और जिस तरह की जो फ्रेश एयर आप लेते हैं वो आपको एक्सपीरियंस अपने घर में या अपने शहर में नहीं मिलेगा। जोधपुर के लोग अगर नेचर वॉक करना चाहते हैं या आसपास वीकेंड पे कहीं जाना चाहते हैं तो वन विभाग क्या कुछ फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है? हमारे आसपास कुछ ऑप्शंस हैं सर?
1: जी, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा एक प्रोग्राम चालू किया था नगर वन। नगर वन का मतलब यह है कि आज तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग के जो फॉरेस्ट का जो एंटरटेनमेंट वैल्यू से लोगों को उसमें जो आनंद देने वाला वो कंपोनेंट को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया था। फॉरेस्ट का मतलब है लकड़ी प्रोडक्शन करने के एरिया, वन्य जीवों का रहने का एरिया, और जहां पर लोगों को घुसने से मना,
0: जी
1: इस तरह का सोच,
0: प्रोहिबिटेड एरिया।
1: अभी वो सोच बदल रहे हैं। नगर वन का मतलब है कि एक म्यूनिसिपल लिमिट के 5 किलोमीटर के अंदर ही एक छोटा सा वन जहां पर पेड़ पौधे भी होंगे, योगा जैसे वॉकिंग इस तरह का आपका हेल्थ रिलेटेड आपको एक्सरसाइजेस आपको करना हो, इसका मौका

0: हम सिटी के शहरों के पास ही दे रहे हैं क्योंकि शहर के जनता को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
1: जी
0: बाकी जो प्राकृतिक सुंदर हमारे जितने भी जगह हैं उसको हम डेवलप करके वहां पर टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि लोग वहां पर पहुंचने पर उनको एक मिनिमम फैसिलिटीज तो चाहिए। आप उनका गाड़ी लेके या उनको कुछ नेचर गाइड होना चाहिए जो उनके वहां के वनस्पति और वन्यजीवों के बारे में बता सके। तो पिछले 5 वर्ष में हमारे राजस्थान में कई 60 के ऊपर कंजर्वेशन रिसर्व्स इस प्रकार घोषित हुए। और राजस्थान के आप जानते ही है, बाकी सरिस्का, रणथंभौर, भरतपुर, डेसर्ट नेशनल पार्क जैसे पुराने जमाने से ही हमारे अभयारण्य आजकल बहुत ही टूरिज्म को प्रमोट भी कर रहे हैं।
1: बहुत सुंदर प्रयास हो रहे हैं वन विभाग द्वारा और सरकार द्वारा, और नेचर के और नजदीक जाने की हमें आवश्यकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सबसे अच्छा हमारा योगदान यही हो सकता है कि हम प्रकृति की सुंदरता और उसकी जो जेनरोसिटी है, किस तरह से वो दयालु है, हमें बहुत सारे तोहफे वो देती है, उपहार देती है, इसको महसूस करके थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड उसकी तरफ, अपनी तरफ से हम शो कर सकें। अनूप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ बने हुए थे श्री अनूप के आर, संभागीय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर संभाग। विश्व पर्यावरण दिवस पर आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विशेष भेंट वार्ता। हमारे मेहमान थे श्री अनूप के आर, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर, और आपसे बातचीत की संजय व्यास ने। प्रस्तुति व संयोजन था राजेश लामरोड़ का। हम आकाशवाणी जोधपुर के FM सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके पसंद का कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया और हाजिर हूं मैं आपके साथ आपका रेडियो राही कल्याण विश्नोई। जैसा कि आप सबको पता है कि जोधपुर और आसपास के कुछ इलाकों में अल सुबह बहुत अच्छी बारिश हुई है और ऐसे में कई लोग जो इस गर्मी से परेशान होकर के कई दिनों से अपने घरों में बैठे थे वो प्लान कर रहे हैं आसपास कहीं घूम कर आने का। और अगर आप उन लॉन्ग ड्राइव प्लान करने वाले लोगों में शामिल हैं तो आज का इन्फोटेनिया आपके लिए होने वाला है बहुत ही खास। क्योंकि आज की इन्फोटेनिया में हम लेकर के आए हैं जोधपुर से निकलने वाले तमाम हाईवेज की जानकारी और साथ ही साथ ये बताएंगे कि किस हाईवे पर कितना दूर जाने पर आपको कुछ विशेष, कुछ अच्छा, कुछ फेमस खाने को मिलेगा। खाने पीने की तमाम चीजों की चटपटी जानकारी लेकर के हाजिर है हम और शुरू करने जा रहे हैं आज का इन्फोटेनिया इस प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल।

श्रोताओं, इस सुहाने मौसम को देखते हुए दूर जाने की प्लानिंग तो आपने कर ही ली होगी। और आपने जहां भी जिस किसी भी रास्ते का चुनाव किया है तो ये जानकारी लेकर के निकलना चाहिए कि कहां पर क्या अच्छा खाने को मिलेगा। तो श्रोताओं, अगर आप ओसिया के रास्ते फलोदी की तरफ जा रहे हैं तो सबको पता है कि ओसिया अपने पकौड़ों के स्वाद के लिए बहुत फेमस है। जोधपुर शहर से महज 60-65 किलोमीटर की दूरी पर आने वाला ये कस्बा अपने सुंदर मंदिरों के साथ साथ यहाँ के अच्छे खान पान के लिए भी जाना जाता है। घूमने के लिए जहाँ यहाँ पर सच्चाई माता का मंदिर है, सूर्य मंदिर है और कई जैन मंदिर है, तो साथ ही साथ पास में रेत के टीले भी बहुत सुहाने लगते हैं। अगर आपका प्लान 3-4 घंटे का है तो इससे बढ़िया डेस्टिनेशन हो ही नहीं सकती। तो पकौड़ों का स्वाद उठाइए और निकल पड़िए ओसिया की तरफ। और साथ ही आनंद लीजिए आकाशवाणी जोधपुर के FM सन सिटी से बजने वाले इन प्यारे प्यारे गानों का।

0: तुम्हारा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ,
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
2: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। पीएम स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान।
3: श्रोताओं, अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल और कार्यक्रम का नाम है जोधपुर इन्फोटेनिया। एक और रूट है जो काफी फेमस है लॉन्ग ड्राइव के लिए, जोधपुर से बाड़मेर का रास्ता। यहाँ धवा एक जगह है जिसका नाम आपने सुना होगा। धवा अपने पकौड़ों के लिए फेमस है और वहीं थोड़ा और आगे जाने पर एक और जगह आती है जिसका नाम है कूड़ी। कूड़ी गांव अपने शुद्ध मावे के लिए बहुत फेमस है जिसका स्वाद भी अनूठा माना जाता है। यहाँ पर आपको फीका और मीठा दोनों तरह का मावा खाने को मिल जाएगा। और साथ ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप हमारी रिफाइनरी भी देख सकते हैं।

और पचपदरा भी अपने खाने के अनूठे आइटम्स के लिए काफी फेमस है। चार पांच घंटे में अगर घूम के वापस आना है तो ये रूट भी कुछ कम नहीं है। खूबसूरत गाने सुनते सुनते बस निकल पड़िए।

श्रोताओं, वैसे तो जैसलमेर जाने के दो रास्ते हैं। आप फलौदी होकर के भी जा सकते हैं और आप बालेसर के रास्ते भी जा सकते हैं। अगर आप बालेसर के रास्ते जाने का प्लान करते हैं तो बालेसर खुद पकौड़ों के लिए बहुत फेमस है। वैसे बालेसर की पहचान यहां से निकलने वाले पत्थर के लिए ज्यादा है। पर हम बात खाने पीने की कर रहे हैं तो मैं जिक्र पकौड़ों का जरूर करूंगा। लेकिन अगर आपने कुछ मीठा खाने का प्लान किया है तब आपको जाना चाहिए अजमेर वाले रास्ते पर। क्योंकि जोधपुर से निकलते ही आता है कस्बा डांगियावास और डांगियावास का मावा तो पूरे राजस्थान में अपनी अलग पहचान रखता है। अपनी शुद्धता, गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ इसकी अनोखी महक इसको खास बनाती है। बस फिर निकल पड़िए।

श्रोताओं, हाईवे पर खाने पीने की बात हो और पाली हाईवे पर रोहित की मिलने वाली कचोरी अगर हम भूल जाएं तो बड़ी चूक होगी। जी हाँ, ये मोगर की कचोरी अपने आप में अनूठी और इसका स्वाद भी बेजोड़ है। और बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ वहीं मिल सकती है। इसके अलावा पाली का मिलने वाला गुलाब हलवा भी बहुत फेमस है। चार से पांच घंटे की रोड ट्रिप के लिए इससे बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सन सिटी से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। नजर करते हैं आपको ये अगला सॉन्ग।

श्रोताओं, ये था आज का इन्फोटेनिया। आपने सुना मेरे साथ और मैं आपका रेडियो राही कल्याण विश्नोई आपसे चाहता हूँ अनुमति। जाते जाते नजर करता हूँ आपको कार्यक्रम का आखिरी गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। दिन के ठीक 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
2: After a detailed assessment,
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: At 5.25%.
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी की आवाज से, साहिल उद्यानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म मन की आंखें।

ममता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। ये दूसरा आदमी फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ?
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा,
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो

0: सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई।

कामजोर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदीवर के बोल थे। डाक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: डाक फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। इस कार्यक्रम का स्वरूप तो आपको पता ही चल चुका है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम संक्षेप में बता देते हैं। वैसे ये जो इबारत लिखी जाती है, आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। तो फिर ध्यान से पढ़ लीजिए कविता। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है और लिखा भी है कि आज की इबारत में तो कविता है। भाई, कविता थोड़ी कठिन है, मुश्किल हो रहा है अंदाजा लगाना, तो यही तो बात है। पहेली अगर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए तो वो पहेली ही क्या। तो चलिए हम वो इबारत पढ़ते थे कविता की शक्ल में। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, चीड़ और देवदार की छांव में पली, बुरांश के फूलों से दहकती, किसी खूबसूरत झरने सी चंचल। पेड़ पौधों और जंगलों के बीच वो हिरनी सी भरती कुलाचे, पगडंडियों पर उसके पांव पड़ते तो धरती के आंचल में एक मधुर कंपन जाग उठता। खुली वादियों में चलते हुए वो देखती एक ख्वाब, नीले अंबर के पार वो देखती तो बारिश की बूंदें जैसे प्रेम की माला पिरोती। प्यार के राग पर वो गुनगुनाती, जहां बादलों के पंखों पर बैठकर मन उड़ने लगता। वो आसमान की ओर निहारती, कहीं दूर बादलों की आंख छलक पड़ती। बारिश उतरती पहाड़ों की देह पर तो झरने नदी का हाथ थामे गुनगुनाने लगते कोई खूबसूरत गीत। हवा उसकी जुल्फों को सहलाकर गाती कोई सुरीला नगमा, और जब उसकी जुल्फें पवन के संग थिरक उठती तो घाटियों में गूंजता प्रेम का दर्द भरा राग। उसकी आंखों में उतरकर रच देती सिंदूरी कविताएं, वो फूलों से नहीं उनकी खुशबू से प्रेम करती थी। नदियों से नहीं उनकी सफर से, और आकाश से नहीं उसकी असीम उम्मीदों से। उसके दिल में अजब सा संसार था, एक पूरा जंगल सांस लेता था उसके दिल में। नदियों का संगीत, पहाड़ों की चुप्पी, वो थी पहाड़ों वाली लड़की, जिसकी हंसी में झरनों की कलकल थी, जिसकी आंखों में बादलों की नमी थी। अब भाई, बहुत सारे शब्द मिल गए आपको, तो आज तो ऐसे लगता है कि शब्दों की माला पिरोई जाएगी और ढेर सारे शब्द होंगे, उसमें मुझे ही मुश्किल पड़ जाएगी कि कौन सा वाला गाना सुनवाए कौन सा वाला नहीं। चलिए फिलहाल ये गाना सुनिए और देखिए कि इसमें कौन सा शब्द आया है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। फिर वही दिल लाया हूँ, फिल्म मोहम्मद रफी की आवाज।

तो भी ये गाना आपने सुना, फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी आई है और ज्यादातर श्रोता ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ममता जी इस कार्यक्रम में आई है, पहली बार आई है और कहाँ गायब थी। भाई गायब तो कहाँ थे, हम तो ऑन एयर होते थे और आपसे गुफ्तगू होती थी, अभी हाल में सजीव प्रसारण आपने देखा माने जी के साथ, गायब कहीं नहीं थे, बस थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है तो कुछ प्रोग्राम छोड़कर कुछ नए प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। बहरहाल चलिए ये टिप्पणी हम पढ़कर सुनाते हैं। हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत एक खूबसूरत कविता है, तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता रच देती हूँ, साझा कर देती हूँ। इन्होंने आगे लिखा है कि बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं इसके रचयिता कौन है। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां। जहां दिन भर महुआ पर झूले, रात को चुपड़ते हैं फूल। जहां दिन भर महुआ पर झूल, रात को चुपड़ते हैं फूल। बांस के झुरमुट में चुपचाप जहां सोए नदियों के कूल। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां। विहग मृग का हो जहां निवास, जहां अपने धरती आकाश। कविता आगे भी इन्होंने लिखी है, काफी लंबी है और बहुत सारे श्रोताओं की चूंकि टिप्पणियां आ रही, तो हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में लिखें ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबारत रूपी कविता बहुत पसंद आई, पर्यावरण दिवस की झलक दिख रही है, आपको नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि हर पंक्ति गुनगुनाते हुए बता रही है आज के सुंदर सुहाने सफर में एक खूबसूरत लड़की, पहाड़ देवदार के बगीचे में बहार के झरना नदी चलता नीले नंबर अंबर, चांद जवाए हमको तरसाए, बारिश देह पर पड़ते टिप टिप बरसा पानी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। मतलब इतने सारे गानों के बोल लिख डाले हैं कि अब हमें मुश्किल पड़ रही है कि पूरा कैसे पढ़ें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की काव्य रूपी इबारत विश्व पर्यावरण दिवस के लिए है। इबारत में काल्पनिक पहाड़न युति का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये अंदाजा लगा लिया है कि इसमें कहीं प्रकृति की छटा भी है, लेकिन कहीं उन जो वो लड़की है ख्वाबों वाली पहाड़ों वाली लड़की, उसके साथ जो शब्द हैं उन शब्दों पर गाने लिए गए हैं। और उस इबारत से आपके मन में जो कविता आ रही है वो भी आप लिखिए, और आपके जहन में जो गाने आ रहे हैं वो भी सुझाइए, हो सकता है आपका गाना हम शामिल कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुमराह फिल्म का गाना सुनवाते हैं, तो बताइए कि इस कविता से कौन सा वाला शब्द इसमें शामिल है। हाँ, पिछले गाने में शाम शब्द आया था जो हमने चुना था, वो हम आपको बता रहे हैं। तो गुमराह फिल्म के गाने में इस कविता से कौन सा शब्द आ रहा है, और साथ में आपको बूझना है कि कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना।

गुमराह फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ें। हमने आपसे पूछा था कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना, सुनील दत्त और माला सिन्हा। तकरीबन सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में पहाड़ों नदियों के गीतों की महफिल है, मुझे एक गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली का पसंद आ रहा है, वो अगर आप सुनवा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी ये कविता बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी है, आपने पहाड़ों हवा बारिश और फूलों की भाषा में एक निर्जर सी आत्मा को उभारा है, नाजुक मुक्त और अनंत उम्मीदों से भरी। हमारी वसुंधरा का प्रतिबिंब पहाड़ों वाली लड़की के माध्यम से प्रकृति के हर एक रूप, उसके गीतों, हवा के सरसराहट, नदियों के चंचलता को जीवंत कर दिया है। जरा ये तो बताइए कि आप बात पर्यावरण की कर रहे हैं अगर, तो पर्यावरण की बात जब आती है तो आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं? इस आज के इस प्रोग्राम के टिप्पणी में विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर ये भी आप लिख सकते हैं कि आप निजी स्तर पर क्या करते हैं। जैसे हाल ही में अभी जब सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ थी 2 जून को, तो जब हिमानी शिवपुरी जी, जानी मानी अदाकारा हिमानी जी आई थी, तो उनके हाथों विविध भारती के परिसर में पौधारोपण किया गया था। तो इस तरह से हम निजी स्तर पर चाहे तो रोज एक पौधा रोप सकते हैं। तो अगर एक एक पौधा हम सबने रोपा तो कितने सारे पौधे हो जाएंगे, जरा गणना कीजिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं की टिप्पणियों पर आते हैं।

यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर सूर्य नगरी चैनल एवं एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम सन सिटी चैनल। दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम गणगौर।

0: गणगौर स्वर्ण वाली सगली सखिया ने शीतल राठौड़ रा घणे मान राम राम और आराधना जी आपने भी राम राम।
1: बिल्कुल शीतल आपने भी घणे मान सो राम राम और सुनने वाली सलोनी सखिया ने भी घणे मान राम राम। शीतल धरती पर सबसे सुंदर अगर संगीत हो कोई है तो है प्रकृति रो और ये धरती रो जो श्रृंगार है वो है वन्य जीव पारो और आज अपना विश्व पर्यावरण दिवस है जिसको मना रही हाँ।
0: बिल्कुल प्रकृति रो जो खास उत्सव कह सका हाँ वो आप मनाई रहा हाँ और सभा ने विश्व पर्यावरण दिवस री जो है घनी घनी शुभकामना वा। रूख लगाओ जल बचाओ धरती ने हरियाली देओ प्रकृति मारो मान बढ़ाओ जीवन ने खुशहाली देओ। तो वही संदेश है जो को आज इन कार्यक्रम में भी रह वेला क्योंकि
1: बिल्कुल
0: आज रोगण को रह वेला पर्यावरण दिवस रह माते ही खास खास रूप सु तो बाता कराला घनकरी पर पहली शुरुआत करा इन गीत रे साथे।

0: शीतल, आपने भले समुद्र है जिको देखने नहीं मिले, छोड़े रो को वन मिले, लेकिन अपने हर सांस और हर घूंट में पानी रो जिको निवाड़ो है वो अपन जा रही है, और वो जिको स्पर्श है वो एक समुद्र तरह ही है, और वो स्पर्श जिको आप कह रहे हैं समुद्र तरह, तो समुद्र ने साफ रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: और पर्यावरण दिवस है आज आप मना रहे हैं, पर जरूरी को नहीं कि आप विश्व पर्यावरण दिवस पर ही आप साफ सफाई, पेड़ पौधा, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण की बात करा, क्योंकि वो अपन एक दिन की बात करनी है, अपने जीवन रे हर एक पल हर एक सांस रे सागे वो पर्यावरण जिको चलिया करे है।
1: बिल्कुल सही, क्योंकि वो एक दिन रो अभियान नहीं है, तो अपने रोज रे अपने जीवन में अपने उतारनो है कि किन तरीके से आप प्रकृति री है जिकी रक्षा कर सका हाँ, इरो संरक्षण कर सका हाँ। और प्रकृति में जितना भी घटक है इरा, चाहे वो नदी वे, चाहे पहाड़ है, पेड़ पौधा है, पंछी है, जीव जिनावर है, और आपा खुद भी हाँ या प्रकृति रो आपा एक अंग हाँ, तो आपा सगला जगह जद मिल ई पारिस्थितिकी तंत्र ने संतुलित रखा हाँ, तो और हर एक घटक रो ये प्रकृति रे मायने कोई ना कोई जो है एक मुख्य भूमिका रहे है, और बहुत ही जरूरी है कि ये प्रकृति री हर एक चीज और हर एक घटक आपा जो है वीरो संरक्षण करा, चाहे वे जीव जिनावर हो, वारी भी अपने जो है संरक्षण करनो है, साथ ही साथ अपने जल रो संरक्षण भी करनो है, और ये प्रकृति ने भी स्वच्छ साफ सुथरो रखनो है।
0: बिल्कुल सही बात है जी, आप बोले नहीं कि यदि कोई भी आप लिखो ने पर्यावरण री जिकी आप भूमिका बना रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, तो भी मैं अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण को नहीं रख रही, भी मैं अपने ही महत्वपूर्ण है कि आप खुद भी मैं कितना योगदान दे रही हूँ। अगर आप केवल अर्थव्यवस्था पर ही विचार कर रहे हो, तो उन समय जो आप विचार करो, उन समय आप एक बार सांस रोक कर देखो, आपने पता चल जाए कि महत्वपूर्ण कहीं अर्थव्यवस्था जरूरी है या पर्यावरण जरूरी है। तो कहने का अर्थ हो ये कि पर्यावरण सबसे ऊपर है, पर्यावरण वास्ते देखो एक किसी चीज है कि हर आदमी आप अपने हिस्से रो सब चीजें, मतलब आप रोटी खाना है, पानी पीना करा, लेकिन जब समस्या आवे फिर सब लोगों ने जूझना पड़े, तो आ समस्या आपने खुदरी ही दियोड़ी है। अगर आप कह रहे हैं कि वातावरण शुद्ध हो गया, पानी आजकल साफ को नहीं आ रही है, खान पान है जो कुछ को नहीं आ रही, ये पीछे सब कुछ अपने ही हाथ है कि आपा जिगर खेती कर रहे हैं तो भी मैं मिलावट कर रहे हैं, पानी है तो भी मैं आपा साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, आपा भोजन कर रहे हैं तो भी मैं भी आपा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वातावरण में अगर रह रहे हैं तो बड़ा आपा पेड़ नहीं लगा रहे हैं, या अगर लागोड़ा है तो मैंने आपा देखभाल नहीं कर रहा, तो कुल मिला रही है कि आपा खुद ही सब चीज का जिम्मेदार है।
1: तो बिल्कुल प्रकृति कहने रो मतलब वही है कि पहली तो आपा सुख सुविधा रे लारे जो है प्रकृति ने भूल जावा, और
0: बिल्कुल
1: जद प्रकृति आपरो प्रकोप दिखावे, जद आपा ने जो है प्रकृति री याद आया करे है,
0: बिल्कुल
1: तो एड़ो समय नहीं आवे, इन वास्ते आज ही आपा ने संकल्प लेनो है कि ई प्रकृति रो आपा ने संरक्षण करनो है, इन्हें स्वच्छ रखनी है और पेड़ पौधा लगाना है।
0: बिल्कुल शीतल जी, हमारा देखो थोड़ा दिन पहले जगह तूफान आया, इतना भयंकर तूफान है, तो भी मैं भी तूफान में कठे न कठे अपने खुदरी ही भूल है कि आप पेड़ सगला काट दिया, जगह जगह मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं बड़े तो इस्तेमाल होने लग गए कि हवा जी की है बा अपने आपने किया रोकेला, अगर ये पेड़ लगड़ होता तो शायद इतो जो को धरती पर नुकसान हो यो, वो नहीं होता।
1: बिल्कुल, तो ये वास्ते आप भी कहें कि भाई लगाए दो हरियो बाग, क्योंकि अगर बाग बगीचा रह वेला, हरियाली रह वेली, तो ए जकी छोटी मोटी समस्या है नहीं, आप ही खत्म हो जावेला।
0: बिल्कुल।

0: तो प्रकृति संरक्षण री आपा बात कर रहे हैं और कई अड़ा लोग है जो इन काम में आपरो पूरो जीवन जो है लगाए रिया है और बहुत ही अनूठो काम कर रिया है। तो पर्यावरण संरक्षण में आपरे उत्कृष्ट और अनूठे योगदान रे कारण रेगिस्तान रा ग्रीन मैन कया जावन वाला नरपत सिंह राजपुरोहित सू अब सुनावा आराधना जोशी री फोन माथे बातचीत।
1: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जयपुर से घनघोर। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप बातचीत कर रहे हैं। प्रकृति आपने जीवन देवे और जल है जिसकी आपने ऊर्जा। पर्यावरण आपनो अस्तित्व रो एक आधार है और इन रक्षा करने वास्ते जीवन में समर्पित होना बहुत जरूरी है। पर हर कोई जिको है ये पर्यावरण रक्षा वास्ते आप पूरा पूरा जीवन जिको के अगर की समर्पित नहीं कर पावे। पर कुछ लोग जिका है ये पर्यावरण बचाने के लिए तन मन धन तीनों सो आपने जीवन है जिकने वो उद्देश्य बना ले के मन है प्रकृति की ही रक्षा करनी है। तो आज आपारे फोन लाइन द्वारा आपारे सागे पर्यावरण प्रहरी एक सच्चा ग्रीन मैन जिकने उपाधि मिल चुकी है आपने सागे जुड़ चुके हैं नरपत सिंह जी पुरोहित। तो सर आकाशवाणी जोधपुर गणगौर माए आप रोहित हरक स्वागत है।
2: धन्यवाद और मेरी तरफ से भी स्वागत है आकाशवाणी परिवार जोधपुर का भी।
1: बिल्कुल सर अगर आप बात करा पर्यावरण संरक्षण री और जल संरक्षण री तो वो संदेश ले आप दुनिया भर रहे माई केवनी एक साइकिल री यात्रा जिकी है आप करी तो आपरे मन में वो विचार की आयो इन प्रेरणा जिकी आपने कठो मिली।
2: हूँ जदि स्कूल पढ़ते तो जदि शनिवार तो जो बाल सभा हुआ करती थी तो वो टाइम एक टीचर का एक स्कूल में जो भी घना पौधा लगाई स्कूल में बीज उगया करेगा पौधे नीचा और बीज निकालने स्कूल में ज्यादा पौधा लगाई उन्होंने ज्यादा चॉकलेट मिली उन चॉकलेट लालच में घूम लगाई कितनी वो लंबो सफर कर दियो थी यात्रा कर ली मतलब 15 साल निकाल लिया लगभग कोई महसूस नहीं होने मंडियो मैं पर्यावरण महीने तो रुमतो रुमतो 15 साल तक मैं निकाल लिया हूँ।
1: अच्छा मतलब आप रही शुरुआत स्कूल से हो चुकी।
2: स्कूल से हुई थी लेकिन पर्यावरण जो काम जो कर रही हो बारह मास 15 सालों में रेगुलर कर रही हो छोड़ियो नहीं। अच्छा। वो नहीं है बरसात सीजन आई पौधा लगा दिया पर छोड़ दियो वो नहीं है बारह मास एक जिंदगी बना दी पर्यावरण नु।
1: तो आपने इतना समय किया मिले
2: समय तो निकलना पड़ता है मिलता नहीं है समय हर काम के लिए निकलना पड़ता है। घर वालों ने मिठाई दुकान खोल दी पढ़ाई के बाद में कही तो पर्यावरण का काम कर रहा है पौधे लगा रहा है पता नहीं कही क्या गलत लाइन होनी जाओ आज रे संगत रहे शाम तो दुकान खोल दी मिठाई री निवाई टोंक में थोड़ा साल चला एक 1.5 साल तो मनो सेट नहीं बैठो मामलो तो दुकान बेच मैं जीजा जी नो साइकिल यात्रा ने निकल गयो तो।
1: अच्छा
2: साइकिल यात्रा शुरू साइकिल यात्रा शुरू की उन दिन घर वालों पता चले को नरपत दुकान बेच दी साइकिल ने जम्मू कश्मीर निकल गए साइकिल यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच गई उसके बाद में घर वाले कोई गए कहीं नहीं बोलियो चलो ठीक है जो करे उन करवा दो तो उन साइकिल यात्रा में 3 साल 2 महीना 24 दिन टाइम लागू।
1: अच्छा अच्छा
2: मणिपुर मेघालय मिजोरम राज्य में छोड़ दिया।

0: उन क्षेत्रों में ना खान पीने की प्रॉब्लम आती, सो शाकाहारी खाना नहीं होने कारण मैं छोड़ दियो। बाकी मैं टाइम लगो 2-3 साल 2 महीना चोइस।
1: तो जब आप यात्रा करी तो बहुत सारी मुश्किलें भी आई वाला।
0: कोई भी काम अगर काम कर रहे अगर उसमें सुविधा मिल रही है फिर उस काम करने मजा है। किस बात का, जिस काम मारोड़ी कह रहे जितना ठोकर लागो नहीं ये तो संभलना आनंद आई।
1: सच्ची बात है
0: जी, तो सुविधा असुविधा ये यात्रा की सुखद पल है। अगर जिस यात्रा में सुख और दुख दो होना तो मजा ना आए।
1: तो आपने यहाँ कहीं जैसे कि मन साइकिल ले रही यात्रा करने, कोई पीछे कोई खास वजह?
0: उस टाइम में लगभग मेरे को 9 साल हो गए थे राजस्थान में काम करते हुए। मैं राजस्थान में खूब घणो काम कर लियो। मैं क्यों ना एक साइकिल माते पूरे भारत में साइकिल चलाने पौधे लगाने और संदेश दियो जाए पर्यावरण नो के एक राजस्थानी साइकिल यात्रा ले निकले पूरे भारत में पौधा लगाने संदेश दे रहे हो कि नरपत सिंह नाम का लड़का कोई।
1: तो आप कितना पौधा लगा दिया?
0: अभी तक लगभग 2.5 लाख रहे आस पास लगा दिया हूँ और साइकिल यात्रा में 80,000 पौधा लगाया।
1: अच्छा, तो फिर आप जगह पौधा वगैरह इकट्ठा खरीदता?
0: मैं जहाँ भी रुकता था मेरे मिलने वाले उसको आग्रह करता था मेरे युवती से रोज को मेरे को ज्यादा नहीं 4-5 पौधे चाहिए। तो जेत रुकते होती है कोशिश करता प्राइमरी स्कूल में लगाऊं। एक अपना कहवत है कि कच्चो लो है ना, कच्चो लो तो जी चाहे जो डाले होगा अभी लो पकड़े बाद टूटे अब लेकिन डाले को नहीं।
1: सही बात है।
0: तो पूरी कोशिश की मैं प्राइमरी स्कूल में पौधा लगाऊं ताकि छोटा बच्चा हमारे इस संदेश का ग्रहण करे और आगे बढ़ा संदेश ना।
1: तो जिकडे आप सगलो ये सब काम कर रिया तो आपने कभी या थकान या नहीं लगे कि नहीं जीवन में और भी बहुत कुछ करने वास्ते है या जीवन यापन किया करा अगर ये सब काम में व्यस्त रहे हुआ तो?
0: नहीं, यात्रा एक नहीं कारण यात्रा का कारण नहीं है। नो शुरुआत रोज रो रेगुलर 15 साल में जो अगर पर्यावरण जिस दिन कोई गतिविधि नहीं हुए नहीं उस दिन थोड़ा अजीब लगे मतलब चेहर उतरोड़ो हेंगो लगे आते में की बैठो मायूस मायूस जगह अगर कौन करो उगर बाल ऑटोमेटिक अंदर ही आ जाए बॉडी में ताकत महसूस हो जाए का अच्छा काम किया तो खुशी मिली मुझे।
1: तो आप इतनी जगह घूमने गया तो बहुत सारा लोग भी आपने आपने मिला वाला
0: खूब मिला देखो
1: तो वाले कहीं प्रतिक्रिया रही फिर
0: लोगों रही प्रतिक्रिया बढ़िया भी रही और बढ़िया नहीं भी रही। जिके लोगों ने ये चीज इंटरेस्ट नहीं है रुचि नहीं है क्या रुचि अगर पैसे कमाने वाले में है अगर पैसे कमाने वाले को अगर पैसे गवाने वाला चाह रहा है तो उसको अच्छा लगेगा नहीं। जिके हम पर्यावरण में कल्चर में संस्कृति में प्रकृति प्रति अगर प्रेम है वो बढ़िया लगे बड़े अच्छे काम कर रहे हुए हौसला अफजाई करता रुकने व्यवस्था करता पौधा उपलब्ध करवाता वेलकम अच्छा करता।
1: तो आप इतनी लंबी साइकिल यात्रा करी तो इनके कारण आपने कोई पुरस्कार वगैरह भी मिला?
0: पुरस्कार कुछ नहीं देखो दीदी मैंने यात्रा ही नहीं की है सिर्फ मैंने 2.5 लाख प्लांटेशन किया उसमें 70% सक्सेसफुल आज के टाइम अच्छे पेड़ बन गए हैं। लगभग राजस्थान का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके अंदर मेरा पौधा रोपण नहीं किया हुआ है। घूम घूम के पौधे लगाता था मैं और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पिंपल वाटिका है ना वो मेरे पास एक जगह पे 1400 पिंपल। लोग कहते हैं कि 25 में राजस्थान में पेड़ पौधे नहीं लगते मैंने पहाड़ी क्षेत्र में 1400 पिंपल लगाए एक जगह।

0: पौधे भी नहीं लगे हैं, पौधों को केयर किया है, समय समय पानी पिलाया है।
1: में जो वन्य जीव है
0: जी
1: बिहार वास्ते आप भी जल कुंड है जो बना रही हो, तो इन्हें जगह कुंड बनाओ, बनाते समय आपने किन किन समस्याओं का सामना करना पड़े और अभी तक आप कितना कुंड जगह है बना चुके हैं?
0: सबसे बड़ा सामना है पैसों का। एक जलकुंड बनाने में कम से कम 40,000 से 50,000 खर्चा नॉर्मल कुंड का आता है। इस पर व्यवस्थित खर्चा का बनाता हूँ तो 60 से 70 हजार। अगर बेस्ट बनाऊँ, बेस्ट कुछ वो होता है एक अच्छा जलकुंड, उसके बाद छोटी एक वाटिका जिसके अंदर 25वें राजस्थान में वातानुकूल अनुसार जो प्रकृति जो वहाँ की जो क्लाइमेट के अनुसार प्लांटेशन करता हूँ। तो मैंने 14 कुल जलकुंड बनाए हैं। मेरे जलकुंड के लिए देखो कई लोगों को शर्म आती है, मैं शर्म नहीं करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ। आप हमें 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए दे, ज्यादा ज्यादा 51 रुपए का डिमांड करता हूँ मैं। 51 रुपए की जगह आपको 51,000 का काम करके दूंगा। तो रियल में धरातल पे काम कर रहा हूँ। एक सीजन में 800 से ज्यादा पानी का टैंकर डलाता हूँ। कई गाँवों के खाली जलकुंड है, वो जलकुंड में गोद लेता हूँ, कई सालों से भर रहा हूँ। लोगों को सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ, दिखाता हूँ, लाइव करके दिखाता हूँ मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उनको लगता है कि रियल बंदा ये काम कर रहा, तो मैं लोग आगे आगे से ज्यादा जलकुंड बने। 25वें राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, कहीं भी बेजुबान जीव पानी की तलाश में, अपने खाने की तलाश में, न जाने कितने छोटे जीव प्यास की वजह से जान गंवा देते हैं। इंसान तो अपनी पीड़ा सुना सकता है, लेकिन
1: बिल्कुल
0: बेजुबान जो जीव किसको अपनी पीड़ा सुनाए। तो ये दर्द दिल में रखते हुए एक मिशन चलाया है, खाली जलकुंड को भरा जाए और जहाँ जरूरत है वहां पर जलकुंड बना जाए। हमारी एक संस्था, हमने ग्रुप दोस्तों ने मिलकर बनाई है, ग्रीन डेजर्ट संस्थान, उसके माध्यम से हम पैसे कलेक्शन करते हैं। कि आज का जमाना ऐसा है कि खुद के इसके अंदर अपलोड करके पैसे लेते हैं तो लोगों का डाउटफुल होता है, पता नहीं खुद के इसके अंदर क्या लेता है। फिर हमने ग्रुप बनाया ग्रीन डेजर्ट संस्थान, उसके माध्यम से पैसे कलेक्शन करते हैं, उसके माध्यम से हम जलकुंड बनाते हैं।
1: तो जिकटे वहां पे सब काम करो तो अपने आपने कई लोग जगह सहयोग दे रहे हैं, आप बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज और बताओ आपकी, आप बरसा सो घायल वन्य जीव जिका है बारो रेस्क्यू और उपचार भी कर रही हो, तो इन उपचार रहे समय कोई आपने सो अनुभव है जो को आज भी आपने याद है, आप बिना याद कर भावुक को जाओ?
0: खूब है, मैंने 400+ हिरण रेस्क्यू की है, और एक हिरण को मैंने रेस्क्यू किया था, वो पता नहीं उसका क्या दर्द था, लेकिन जब मैं उसको पकड़े मेरे गोद लिया था, जैसे कोई इंसान रो रहा है वैसे रोई वो हिरणी। लेकिन वो हिरणी गर्भवती थी, रोड की वजह एक्सीडेंट थी, फिर वो जाल के पेट के अंदर जाके बैठ गई थी। मुझे आज भी याद है, वो सोशल मीडिया पे अच्छा वायरल हुआ था। मैंने अभी 400+ हिरण रेस्क्यू की है, 30 मोर, 30 खरगोश, 2 नीलगाय, 2 बाघ, 4 ईगल, 4 ब्राउन उल्लू,
1: तो आप
0: ये
1: दिन रात यहाँ जिकी

0: मेहनत करो तो मतलब आप में थकान महसूस नहीं हुआ बिल्कुल
1: काम नहीं, जिस दिन अगर काम को पर्यावरण के प्रति काम नहीं किया उस दिन थकान महसूस होगी, उदास फील होगा। आज कुछ नहीं किया प्रकृति के लिए, आज दिन खाली जा रहा है।
0: अच्छा, मतलब आप जीवन का उद्देश्य एक ही
1: हर
0: है कि
1: सांस,
0: प्रकृति संरक्षण
1: हर
0: करना।
1: सांस प्रकृति को समर्पित है, और लास्ट चल सकूंगा तो पर्यावरण के लिए जीऊंगा।
0: बिल्कुल
1: और
0: नरपत जी, देखो एक चीज और आपके बारे में सुना कि शादी रमाई जी का जब बाराती अगर आया तो आप माने पौधा बांटे तो एक बड़ी अनोखी पहली, तो इस बारे में कुछ बताओ।
1: आपको पता है आज के टाइम में राजस्थान में दहेज प्रथा के प्रति बहन बेटियों को कितना प्रताड़ित किया जाता है, कितनी घटिया होती है, न जाने कितना उनको सताया जाता है। लेकिन मेरी बहन मीना को दहेज में मैंने पौधे दिए, मेरे भतीजी हंसा कौर को दहेज में पौधे दिए। अभी 20 अप्रैल को हाल में मेरी भतीजी अंजू की शादी हुई थी, अंजू को मैंने 501 परिंदे दिए। सामने
0: अच्छा।
1: वाले ने स्वीकार किया, आप अच्छी पहल कर रहे हो, हम खुद को भी स्वीकार नहीं आया, हमें दहेज दहेज नहीं चाहिए। एक इस दहेज को बंद करके ना देते सभी बारातियों को, मेहमानों को दहेज के रूप में ये पौधा देना बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे राजपूत समाज के अंदर। हमारे पति से राजस्थान में, हमारे पति से राजस्थान जैसे बहुत कुछ जातियां होती है, उनको लिए ऐसी चीजें बहुत चैलेंज होता है कि आपको दहेज को देना होता है। जैसे मैंने इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अलग मुहिम को किया, जैसे अंजू को दिया तो उन्होंने सामने वाले उन्होंने स्वीकार किया और हमारा स्वीकार किया। कोई भी काम करने के लिए शुरुआत में बाधाएं आती है, बहुत कुछ समाज का सुनना पड़ता है, ताने भी देते लोग, लेकिन अगर अगर अपना लक्ष्य परफेक्ट है ना तो
0: बिल्कुल।
1: लास्ट में वही लोग अपने साथ खड़े जाएंगे, बंदे ने अच्छा काम किया है, ये हमारा भाई है, हमारे मेरे काका का लड़का है, ये हमारे गांव का बंदा है, वही लोग कहेंगे। लेकिन एक कोई भी काम के लिए पहल करनी पड़ती है अपने को, शुरुआत में उस पहल के लिए खूब सारी बाधा आएगी, खूब सारे ताने आएंगे, लेकिन अगर अपना केंद्र परफेक्ट है लक्ष्य तो सब कुछ सही होगा।
0: बिल्कुल नरपत जी, आप जो यहाँ जंगला में इतना घुमाओ, आप पशु पक्षियों भी मतलब सहायता करो, और तो कभी आपरे आगे भी कोई इसी चोट या घायल या कुछ इसे नुकसान है आपने भी।
1: कुछ नहीं है, भगवान की मेहरबानी से 5 सालों से मैं निःशुल्क बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में स्नेक रेस्क्यू कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं हुआ अपने साथ। तो बाकी लोग बिजनेस चलाते हैं, पैसे लेते हैं, मैं फ्री ऑफ चार्ज रेस्क्यू करता हूँ, रेस्क्यू करता हूँ, उसका चार्ज लेता हूँ। आप मेरे जलकुंड में पानी की टंकी चलवा दो, हमें पैसे नहीं चाहिए, बस जीव बच रहा है और आपके हाथों से धर्म भी हो रहा है।
0: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विचार है। देखो आप रानरपा जी, तो आभार आपने रेडियो रे द्वारा बहुत सारा लोग जी का है सुन रिया है, तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप कहीं कहना चाहोगे श्रोताओं ने।
1: मेरा एक ही सलाह है, लोग नारियल का पानी पी के फेंक देते हैं, जिस तरह लोग कचरा उठाते हैं उससे मैं कटे कटा लेके घूमता हूँ, उनको इकट्ठा करता हूँ। कई लोग कहते हैं ये कचरा बीनने वाला, कई लोग कहते हैं ये रील बना रहा, कई लोग कहते हैं ये दिखावटी कर रहा है, लेकिन मुझे उस कचरे में सिर्फ पक्षियों का बसेरा दिखता है, छोटे पक्षियों की जिंदगी दिखती है मुझे उसमें। तो मैं 5 सालों से रेगुलर कर रहा हूँ
0: बिल्कुल
1: गोरैया पक्षी संरक्षण के लिए। तो गोरैया पक्षी सिर्फ 20 दिनों के लिए उसको घोंसला बनाने अंडा देने के लिए टाइमिंग लगता है, तो वो गोरैया पक्षी के लिए मुझे अच्छा लगता है और अच्छा परिणाम आता है। मैं हर साल मिट्टी के 500 परिंदे और 2500 परिंदे लगाता हूँ, 2500 मिट्टी के घोंसले लगाता हूँ जी। और साथ ही ध्यान रखते हैं, संदेश दे रहा हूँ, जो नारियल लगा आप अगर कोई घोंसला लगा रहे हो नहीं, थोड़ा मुंह तो कटिंग करके दे देते हो, जैसे नारियल बेचने वाला थोड़ा मुंह उसका और थोड़ा बड़ा कर ले ताकि पक्षी आने जाने में आसानी हो। अगर 20 दिन में कितना सिकुड़ेगा, अगर थोड़ा सिकुड़ जाएगा तो इशू कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई जी।
0: बिल्कुल नरपत जी, आप बातचीत कर कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ समझ में भी आयो, बहुत कुछ जाना कि जब संकल्प इंसान बड़ो हुए तो रास्ते कठिनाई जी की है वह एक दिन प्रेरणा बन जाए, और ये बात रो आप सबसे बड़ा उदाहरण हो कि जीवन में अगर व्यक्ति कुछ सोच लेवे कि मैंने वो काम करना है तो वो जीवन में पीछे नहीं मुड़े कर दी भी, और वो आपके जीवन की यात्रा है जिकी है वो आगे बढ़ते ही जाए अपनी यात्रा में।
1: सर दीदी क्या होगा, मैं 20% विकलांग हूँ, एक टांग 38 टांके आए हुए, घुटना पूरा टूटा हुआ, नीचे पैर पंजे के पास टूटा हुआ है, कमर के पास टांके आए हुए है, डिस्क प्रॉब्लम है, फिर भी मैं रुक नहीं रहा हूँ।
0: बिल्कुल, आपके जज्बे ने बहुत बड़ो कहने सलाम है कि आपरे इतनी सारी समस्या होने रे बावजूद भी आज भी आप सतत आपरी यात्रा है जी की जारी रख रखे हो और आप पीछे नहीं हटे हो, और बहुत बड़ी बात है आप कहने की एक समाज में बहुत बड़ा उदाहरण हो, शायद इन्हीं वास्ते आपने ग्रीन मैन जी की उपाधि है वहां मिल चुकी है। तो आज आकाशवाणी जोधपुर लिए आप समय निकाले हो, इतनी अच्छी बेहतरीन जानकारी आदि, इन्हें लिए आकाशवाणी जोधपुर की तरफ से आपरो नरपत सिंह जी बहुत बहुत आभार है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, और आकाशवाणी जोधपुर पूरी टीम का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी फोन के माध्यम से इस संदेश को आम जन तक पहुँचाने का आपने कोशिश की है, उसके लिए बहुत बहुत पुनः मैं पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल, आपरो भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया।
2: अवार आप सुनी पर्यावरण संरक्षण में आपरे अनूठे योगदान रे कारण

0: तो प्रकृति री आपा बात करा तो प्रकृति में आपा बताई दिया कि जिन तरीके से हर एक घटक जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी हुए और राजस्थान री धरती तो सदियां सु ही प्रकृति रो सम्मान और संरक्षण री मिसाल रही है। तो अठे वन संरक्षण कोई नई बात को नहीं, अपने लोक जीवन में रुख ने हमेशा सु ही देवता समान पूजो जावे है। ज्या खेजड़ी है, पीपल है, बरगद है, नीम है, ए छावा ही कौन देवे बल्कि अपनी संस्कृति रो एक अहम हिस्सो भी रहो है। ज्या खेजड़ी तले गोगा जी रा थान, हर गांव में बरगद रो एक गोल गट्टो हो तो हो, और पीपल री पूजा और नीम रा दातुन गांव में लोगारे जीवन रो हमेशा सु एक हिस्सो सो रहो है।
1: बिल्कुल शीतल की आपने जी की रीति रिवाज जी का है वह पर्यावरण संरक्षण से जुड़ोड़ा है। जी हाँ, बार पुरुषोत्तम माह चल रही थी, इन माह में भी आप देखो अपने जी की सखियां हैं, जलदान है, पक्षियां वास्ते मतलब पक्षियां भी सेवा करी है, परिंडा लगा रही है, दाना पानी वास्ते व्यवस्था करी, पेड़ पूजा री आप पूजा कर ही रही है, पिंपल री पूजा पुरुषोत्तम मास में करा और बैसाख में करी जाए, तुलसी री आप रोजे
0: रोजे ने
1: दीपक
0: पूजा
1: करना,
0: कराया।
1: केले री आप पूजा करा, प्याऊ लगवाणो है, कुंवारी पूजा करनी, मतलब नदी तालाब री पूजा करनी, मतलब सके सके आप देखो एक ज्या जेठवा अजूनो कहवा जेठ अजूनो, तो इनमें भी कही है कि 33 बर्तन में पानी भरना वे भाई, 33 बर्तन मिट्टी रहा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 5 मिट्टी रख लो बाकी आप बर्तन भाई स्टील रहा या बाल्टी है वह आपने श्रद्धा अनुसार आप छोटा मटका भी ले सको, तो इरो भी देखो अध्यापन में इनमें 33 बर्तन ले पर आप पानी भर और सागे पंखिया जिकी है वे दे जाए, जैसे सासू है, नणंद है, जेठ है, जेठानी और जेठू तीन बिर बाद अगर जिका बच जावे बे जिका जरूरतमंद लोग वह बाने बांटे जाए, तो अपन ये जगह रीति रिवाज है इस अपन देखो जल संरक्षण भी हो गयो और लोगों की प्यास बुझाना भी हो गयो और एक आ भी हो गया कि मानव सेवा जी धर्म जो आप कहवा वो भी हो गयो।
0: बिल्कुल।
1: और
0: और आपने ऐठे देखो समाज में वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण री परंपरा आप बताइए ज्यां चलती आ रही है, तो राजस्थान का कई गांव में आज भी ओरण और देव वन री भी परंपरा है, जटे पेड़ काटनो और जीव जिनावरा ने नुकसान पहुंचानो बिल्कुल ही मना कराया करे है। पक्षी वास्ते परिंडा तो आपा जो है बनावा ही यहाँ गर्मिया ने मायने, और अपना जगह बड़ा बडेरा होता नहीं वह भी शुरुआत हुई जो है भाई पक्षियों ने चुग्गो डालनो है।

0: अपन ऐठे राजस्थान में आराधना जी कहबत है कि जल थोड़ो ने घणो, कहने रो मतलब है अपनी मरुभूमि में रहने वाला ने पानी री कीमत खूब समझ आवे, क्योंकि पानी अठे भले ही कम होवे पर प्रेम ने और सत्कार में कोई कमी कोनी।
1: बिल्कुल सही बात है। और इन वास्ते देखो, वंदे गंगा जल संरक्षण जो जन अभियान जो है 25 मई से लेर आज अपन 5 दिन तक है जो चल रही है। और इनमें भी वही है कि जल संकट जो है मुक्त मुक्ति हो जावे और मतलब पानी की समस्या वह खत्म हो जाए। इन वास्ते बहुत बड़ो आंदोलन है जो शुरू किया गया। और सागे सागे तालाब कुआ बावड़िया और पारंपरिक जगह जल स्रोत है यारी सफाई करना भी ये रमाए शामिल हो।
0: बिल्कुल। और राजस्थान में जो है जल री कमी रे कारण बरसात री एक एक बूंद सहेजन खातर

0: हमेशा सुई अठे जो है प्रयास करता ही रहा है लोग, जोड़ है, बावड़ी है, कुंड है, टांका है, नाड़ी, झालरार, तालाब, खाली जल स्रोत ही को नहीं, अठेरी लोक संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी है। गांव में तालाब भरे तो लोग गीत गाया जावे, जल स्रोतारी सफाई भी जो है लोग मिलकर करिया करे है, और बरसात से पहले कई जगह बावड़ी और तालाबारी पूजा और सफाई करनो आज भी परंपरा मानी जावे है। और जल पूजन अठेरे त्योहार और उत्सवारो तो हिस्सो रहो ही है, और खेती करता किसान पानी री बूंद बूंद री कीमत जो है जाने है। ई वास्ते ही बरसात रे जद टाइम बरसात टाइम माते हो जावे, इसु बड़ी बात वारे वास्ते और की हो भी नहीं सके है।
1: और अपन ने जो जल संरक्षण में सखिया और जो कहवे नहीं हिस्सो है वो बहुत गहरो रियोड है, जहाँ गायत्री देवी यादव है, अमला रुइया है जिकन वाटर मदर के वहाँ, गायत्री शर्मा है जिका बावड़ी रे संरक्षण करता है, लीला खातून है जिका फलोदी रे खने कनासर गांव है, बठे जल सहेलियाँ मतलब खूब सारी सहेलियाँ बन इकट्ठी कर परा बे बठेरो जिको पानी रो जिको कमी है बिना दूर करी बठेरी जहाँ नाड़ी है तालाब है पूरा वापस पुनरुद्धार करो, तो वीर नाम ही दे दियो जल सहेलियाँ। तो कितनी सुंदर बात है। और जी अभी आप बोला कि गीत गाँव की सखियाँ जिकी है वे कई कितनी सा शीतल जी का मैं मतलब गीत में या कहे कि भाई जी को हे इंद्र राजा तू बरस जा, थोड़ो मारे पीरे बरसे, थोड़ो मारे सासरे में बरसे, थोड़ो मारे भाई वास्ते बरसे, कि मारा भाई जब खेत में काम करे तो बड़े चौकी फसल हुए, मैं आवा बठे तो माने भाई थोड़ो सो कहवे नहीं कि बीज ले रहा हूँ तो बे बोवा, मतलब अपने गीतार में भी पर्यावरण संरक्षण इतनी अच्छी अच्छी बातें की ओढ़ी है, और कहावत तो खैर कितनी सारी है।
0: बिल्कुल। और अपने अठे पर्या जल रे वास्ते तो कहबत है ही है, साथे साथे देखो पर्यावरण संरक्षण रे वास्ते भी अपने अठे कहबत है कि सिर्फ अठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। कहने रो मतलब है कि अगर आपने एक पेड़ बचाने खातर आप शीश भी है जो कटाणो पड़े तो भी वो सस्तो आप जो है सस्तो जानो। और ई वास्ते ही तो अपने अठे जो है अमृता देवी जो है वो खेजड़ी ने बचान खातर जो है वह और 363 जगह लोग है वह अपना प्राण निछावर कर दिया, और आ बात आज ताई भी जो है याद करी जावे है।
1: बिल्कुल अपन जगह गोरा देवी है बाने भी अपन नहीं बोल सका। और जी हाँ अपन ने सखिया मारना मांडे शीतल, तो भी मारना में आप देखो कि मोर बिल्ली शेर कोयल पेड़ पौधा अन सब डिजाइन है, तो यूं पता चले कि अपन सखिया रे मन में पर्यावरण के प्रति कितना प्रेम है।

0: तो शीतल जी, हाँ अभी आप बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की, तो देखो ये में ध्वनि प्रदूषण भी शामिल है, वायु प्रदूषण भी है, और आपा जटे कटे घूमन ना जावा तो वो भी इमें आपा रो कटे कटे योगदान रहे कि ध्वनि प्रदूषण रहे, कारण आपा भी ना खराब कर रहे हैं, वायु ने खराब कर रहे हैं कि गाड़िया वाड़िया लेर जावा घूमन ना खूब, आपा पैदल तो चलना ही कोने, एकदम पैदल चलना तो छूट ही गयो। और खासकर अगर बात करें कि एक घर में आप देखो तीन तीन चार चार अपना वाहन मिले, तो अपन आप कोशिश करनी है कि वाहन रो इस्तेमाल है जो को कम करा, और साइकिल रो इस्तेमाल है जो को थोड़ा ज्यादा करा।
1: बिल्कुल, और बिल्कुल अब आप बताए जो हर घर में तो अब आजकल हो ही गयो है, कोई ना कोई वाहन तो आपने मिल जाया करे, तो इस साधन आजकल जरूरी भी हो गया भाई आपानी सुविधा रे वास्ते है, पर साथ ही साथ वायु और ध्वनि ने भी प्रदूषित करे है, तो इन वास्ते आपने कई चीजों रो ध्यान भी रखना है। जहाँ कई बार है कि यातायात नियम आप पालन भाई हेलमेट तो लगा ले, लेकिन अरातरतरा नियम ए भी तो है कि मतलब अगर आपने सिग्नल जो है बंद है तो जोर जोर सो आपने बिना मतलब क्यों आपने जोर जोर सो है जो है प्रेशर हॉर्न बजाना है, या जोर जोर सो आप जो है बिना मतलब ही कोई आगे है ही नहीं, तो ही कई कई देखा करो मैं देखो जबरदस्ती
0: बिना
1: जो
0: वहां,
1: टी
0: और
1: टी
0: बहुत
1: बजाते ही
0: तेज
1: रहे।
0: जी का साउंड में गीत जिका
1: हाँ
0: चल है
1: वह बजावे
0: एकदम, मतलब डीजे टाइप का गीत है, मैं अपन समझ में भी को नहीं आया, और बहुत धूमधाम धूम, तो इनसे कहीं में कि कोई व्यक्ति अगर पीछे हॉर्न बजा रही हो कि भाई तू साइड दे दे, तो भी सामने वाले टैक्सी वाले पता ही कौन चल रहे हो
1: बिल्कुल,
0: कि मैंने कोई साइड होने रो भी कह रही है।
1: और कोई बाइक चलावे वे के साइलेंसर हटा दे तो आप
0: हाँ
1: देखा करो बहुत ही जोर जोर भट भट रही आवाज जो है वह बाइक सु भी आवे है, तो ए जकी चीजें हैं इतनी तेज ध्वनि पैदा करे जिसू जो है पक्षियों ने तो बहुत ही ज्यादा जो है डर भी ला गया करे, और कई बार तो हमारी मृत्यु भी हो जाया करे इतनी खतरनाक आवाज हुए, तो ए आवाज इतनी ज्यादा तेज भी नहीं होनी है कि अपने जो है नुकसान पहुंचे, इरो आपने ध्यान रखना है। साथ ही साथ है जो है आपकी गाड़िया री मरम्मत जो है आप सही टाइम माते करोला तो वायु प्रदूषण भी कम हुआ है,
0: बिल्कुल।
1: और गाड़ी री जांच भी जो है समय समय पर करानी जरूरी होया करे है, इसु भी आप वायु प्रदूषण ने कम कर सको।
0: और एक देखो अपने घर में अपने सखियां जी की है, कचरो इकट्ठो करें तो गीलो कचरो और सूखो कचरो अलग अलग रखे तो फायदो। सूखो कचरे से आप घर में खाद बना सका, अब जी आप बार घर में आप आम है मतीर है वगैरह सब खा रही, तो आना जगह बीज वगैरह है तो आरा भी आप उपयोग कर सका, आना छिलका जगह है बारा उपयोग कर सका, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिकर आप खुद ही उपयोग करा तो ज्यादा सही रहा। आप बारह फेंक देवा तो कोई मतलब को नहीं, या फिर अपना जगह जिनावर है व्यारे वास्ते कुंडी राख कर बा में आप डाल दो तो जिनावर खा लेवे, तो बिसु देखो जिनावर पेट भी भर जावे और आपा के वनी वातावरण है वो भी शुद्ध रहे। और अगर आप घूमने जा रहे हो तो एक काम और भी कर सका कि जिका अपना घर में शीतल फल वगैरह आप ले रहा हूँ, जहाँ जामुन री गुटलियाँ होगी आम री गुटलियाँ होगी कुछ तरह का बीज जिका है बारी, आप छोटे छोटे से बोल बना लो, मैं तो कुछ भी गुण करना, आप गोबर और क्या नाम है थोड़ी सी मिट्टी लेपरा और बना पानी सू मतलब छोटा घोड़ा बना लो भी मैं बीज डाल दो, और मतलब कुछ दिन जैसे 42 घंटा लगभग बना सुखा लेना चाहिए, और आप घूमने जा रहे हो भाई घोड़ा आप सागे ले जाओ, आप कठे भी कोई भी जगह जो कि खुला स्थान देख रहे हो या सड़क के किनारे आप डाल दो, जब बारिश आवेला तो बड़े अपने आप ही है जिका बटे धीरे धीरे पेड़ उग जावेला,
1: ये तो
0: तो वो
1: बहुत ही अच्छी
0: मतलब
1: बात
0: बहुत
1: बताया।
0: सरल है। और इनने से आगे देखो आप पत्तल रो उपयोग भी करा शीतल तो भी आपने फायदा है कि आप किटी पार्टी कर रही हैं घूमने जा रही हैं या घर में मेहमान आ रही है, आप पत्तल रो उपयोग करो तो इसको एक तो व्यवसाय भी बढ़ेला, पेड़ पौधा लगाने भी चाह है जिकी ज्यादा रहेला, और जिका पत्ता जिका बच जावेला पाना आप जमीन में खोट गाड़ सको हो।
1: तो बिल्कुल ये छोटी छोटी बात का ध्यान रख आप है आपा है जगह प्रकृति रे वास्ते किन की काम जरूर कर सका हम।

0: 450 साल सो भी ज्यादा जो को है वो समय लगे।
1: बिल्कुल, अगर घर सु आप एक कपड़े रो थैलो लिए एर चाला तो ए जी की प्लास्टिक बैगरी समस्या है वह भी खत्म हो जावेला। और इतो तो आप पहली तो घर हमेशा पहली लुगाई री आदत होती वह घर सु ही
0: घर से ही
1: थैलो
0: थेलो ले
1: लेर
0: जाते
1: जा
0: हैं।
1: होती। आजकल है जगह आप चीजा भूल जाया करा, लेकिन इरो भी एक विकल्प है भी कागज रा बैग भी आज

0: तो शीतल, आज रो जो को विश्व पर्यावरण दिवस पर आप जो को कार्यक्रम प्रस्तुत करो, ये उद्देश्य वही हो कि आप सब मिल पर प्रकृति रो संरक्षण है जो को करा, केवल एक व्यक्ति रही है जिसकी आज जिम्मेवारी नहीं है। तो आज इन कार्यक्रम में आप सके ये दो सखिया शीतल राठौड़, आराधना जोशी कंसोल पर आपने गीत सुना रहा हाँ, मेघा गोट ट्रांसमिशन सु सहयोग रियो, एचपीटी पर हाँ कैलाश चंद्र सोलंकी, दिलीप सिंह परमार, एफएम पर प्रेम किशोर सेन, प्रकाश पवार, और कंट्रोल रूम सु पर सके सुनील जयपाल,
1: और इन कार्यक्रम की प्रस्तुति ही राजेश लाम रोडरी और संयोजन हो मनीष सोलंकी रो। तो इन साथ ही आप दोनों सखिया ने दिराओ सीख, चाला राम राम, राम।

0: अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन की 2:15 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2

0: 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: After a detailed assessment. हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में

0: विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
5: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां

रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में

0: हाँ जी, वो दिन भी क्या दिन थे, वाकई वो दिन बहुत ही खूबसूरत होता है। जी हाँ, बारिशों का जो दौर है वो आ चुका है। और दोस्तों, बरसात का मौसम हो या आसमान में बिजली चमके, ये नज़ारा कुछ अलग होता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया इस बात पे कि बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है और बादलों की जो गरज है वो कुछ सेकंड बाद।
1: बिल्कुल, और इसका कारण यही है कि जब लाइटनिंग होती है उसी समय लाइट और साउंड दोनों पैदा होते हैं, लेकिन लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसलिए वो तुरंत हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, और साउंड की स्पीड कम होती है इसलिए जो बिजली है उसकी आवाज़ कुछ सेकंड्स बाद हमें सुनाई देती है।
0: बिल्कुल डॉली, अगर 3 सेकंड का अगर डिफरेंस होता है तो वो बिजली किलोमीटर दूर तक गिरती है, और 5 सेकंड का अगर जो डिस्टेंस होता है तो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास हो सकती है।
1: बिल्कुल, और यही वो टेक्निक है जिसका यूज़ साइंटिस्ट और वेदर एक्सपर्ट्स भी करते हैं ये सारी चीज़ें पता लगाने में। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। अभी सुनते हैं म्यूजिकल ट्रैक।

0: कुछ सफर गीतों के साथ आसान हो जाते हैं और कुछ रिश्ते यादों में भी खास हो जाते हैं और कुछ शामें यूं ही मुस्कुराते हुए आती है दिल के बहुत पास। तो दोस्तों हमें दीजिए इजाजत, मैं हूं आप लोगों के साथ आपका रेडियो दोस्त नितेश और मेरे साथ
1: आपकी रेडियो हम सफर डॉली। आज का हमारा ये प्रोग्राम और हमारी प्यारी प्यारी सी बातें और गानों का सफर बस यहीं तक।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया करें थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद

0: 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए, अब वक्त हो चला है प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर का।

हेलो हाय गुड इवनिंग जोधपुर वासियों, प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आपकी रेडियो सखी, आपकी दोस्त पूजा जोशी। जी हां दोस्तों, शाम का समय है और ये शाम ही तो है जो हमारे दिन भर की थकान को अपने अंदर समेटे हुए है। और ऐसे में अगर खूबसूरत गानों का अगर तड़का लगा दिया जाए तो सच में शामें कितनी खूबसूरत लगने लगती है, हमारे दिन भर की थकान इस म्यूजिक के द्वारा मिट जाती है। तो आइए ना, राज 2 फिल्म से आपको सुनवाते हैं ये गीत और आगाज करते हैं अपने इस प्रोग्राम का म्यूजिक ट्रैक के साथ।

0: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
1: दोस्तों, शाम की थकान दूर करने के लिए सिर्फ म्यूजिक ही काफी नहीं है, चाय और कॉफी का कप भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, बढ़िया म्यूजिक के साथ अगर चाय या कॉफी का कप हाथ में हो तो दिन भर की थकान दूर होने में समय ही कहाँ लगता है। शरीर में एक अलग ही स्फूर्ति सी आ जाती है और साथ में कोई पसंद की कंपनी मिल जाए तो बात ही क्या है, स्वाद दुगना हो जाता है।

0: भी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वज्रन जीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
3: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। पीएम स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान।
4: दोस्तों, एक ही तो लाइफ मिली है, क्यों ना हंसी खुशी प्यार से इसे जी लिया जाए। परेशानियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन उसका मुकाबला करने का जज्बा एक खुशहाल जिंदगी से ही मिलता है। हर पल दोस्तों एक नई जंग है, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रेम से और मेहनत से कोई भी जंग जीती जा सकती है।

हम सभी जीवन में कुछ ना कुछ तो बनना ही चाहते हैं। हम सभी के अपने अपने कोई ना कोई सपने होते हैं। कहीं ना कहीं किसी आयाम पे, किसी ऊंचाई पे हम सभी पहुंचना चाहते हैं। तुम जो बनोगे वो अद्वितीय होगा, मगर तुम जो हो वो भी उतना भी बहुत मायने रखते हैं। वो कहते हैं ना, यू मैटर जस्ट बाय एग्जिस्टिंग।

कभी कभी मन करता है ना शांति से चुपचाप कहीं किसी एकांत में अकेले जाकर बैठ जाएं, जहां ना कोई आपसे बात करे, ना कोई कुछ पूछे और ना आपको किसी भी सवाल का जवाब देना पड़े, बस मौन। पर ऐसे में अगर कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा इंसान हो जो आपके मौन को समझ सके, बस कुछ ना बोले और आपको ये एहसास करवा जाए, यू आर नॉट अलोन, आई एम हियर विथ यू, मैं साथ हूं, तुम घबराना नहीं। देखिए ना दोस्तों, मौन की भी अपनी ही भाषा होती है ना?

0: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
3: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। गली गली

0: जी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों इस समय आपने ट्यून इन कर रखा है 102.1 FM सनसिटी चैनल और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर अपनी रेडियो सखी पूजा जोशी के साथ। दोस्तों नक्शे की दुनिया तो सभी ने देखी है पर असल दुनिया तो उसी ने देखी है जो पैदल घर से निकला है, जो पैदल निकला ही नहीं, जो घर से निकला ही नहीं उसे तो क्या ही कहा जाए। वो कहते हैं ना कि वो एक ही सर्कल में एक ही स्पेस में बंद के रह गया है, इसलिए बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जिंदगी वही है जिसमें उठना गिरना और घूमना फिरना लगा रहता है। घूमना शौक नहीं है दोस्तों, जरूरत है, क्योंकि जो सफर सिखाता है वो किताबों में नहीं मिलता।

कितनी तनहा हूँ मैं, कितना अकेलापन, ऐसे में कौन मेरे साथ रहे। मेरा मोबाइल और मेरे मोबाइल में मेरा फेवरेट रेडियो सन सिटी। कोई मिल गया हमेशा मेरे साथ, मेरा अपना चैनल रेडियो सन सिटी। सुनते रहिए 102.1 FM रेडियो सन सिटी, इट्स माय चैनल।

चलें फिर नए रास्तों पर, नए मुकाम की तलाश में, बाहों में समेटे हुए खुद को, आंखों में नए ख्वाब लिए, चलें फिर तलाशी सुकून में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, सब ये तो बता देते हैं कि जीतते नहीं तो क्या हो जाता या क्या हो जाएगा। कोई ये नहीं सिखा रहा है कि जीतने के बाद जीना कैसे है। सफलता, रिश्तों की असली शुरुआत तो मेरिट लिस्ट, ऑफर लेटर या शादी के फेरों के बाद की है। जिसे शिखर समझ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पहली सीढ़ी ही है।

दोस्तों, क्यों ना जिंदगी को इंस्टॉलमेंट में जीना सीख जाएं? बहुत आगे या पीछे का सोचने मतलब उसका सोचने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। आपको पता नहीं है कि आगे चलकर क्या होने वाला है या क्या होगा, बस आप एक सोच रख सकते हैं कि हाँ, शायद ये हो सकता है, या आप उस दिशा में जाने की कोशिश कर सकते हैं। पर अंततः सच तो यही है कि जो है वो आज है, यही पल है, ना वर्तमान है, ना भूत का कुछ पता है, ना भविष्य का। जो है वो आज का पल है, तो इसे जी भरकर पूरे मन से इसको जी लिया जाए। कुछ नहीं होने से बेहतर है कुछ करना, हार के भय से बेहतर है जीत की कल्पना, और जो नहीं है उसकी चाहत से बेहतर है जो है उसको स्वीकार्य करना, उसकी स्वीकृति। क्योंकि जब आप स्वीकार्य करना सीख जाएंगे ना दोस्तों, तो आप ही के मन को सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा, और आज के वक्त में सुकून से ज्यादा हमें और क्या ही चाहिए।

0: सौम्यता है इसकी पहचान।
1: ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली।
0: FM सन सिटी, सन सिटी, सन

दोस्तों, वक्त वक्त पर मन को साफ करना बहुत जरूरी है, जैसे कि हम अपने मकान को भी साफ रखते हैं, क्योंकि बेमतलब सामान और मन में जो बेमतलब गलत फहमियां भर जाती हैं उन्हें साफ करना तो बेहद जरूरी है ना। तो आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और 102.1 FM के इस प्रोग्राम को, इस चैनल को सुनते रहिए और अपनी रेडियो दोस्त को इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। जल्दी ही फिर से किसी नए सफर में किसी मोड़ पर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा प्रसारण की ओर, जहां से आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा स्नेहिल अभिवादन। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है शहीद। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी खान मस्तान और साथी राजा मेहदी अली खान की रचना है और गुलाम हैदर का संगीत।

यह आवाज थी किशोर कुमार की और फिल्म का नाम था अनोखी अदा। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

स्वर लता मंगेशकर का फिल्म का नाम है दो चोर। रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मुकेश की आवाज में हम आपको फिल्म मंचली का गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार आनंद बख्शी हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है रूप तेरा मस्ताना। गीत को लिखा है असद भोपाली ने और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। ये फिल्म है ये गुलिस्ता हमारा।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। ये स्वर लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है अभिमान। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हर

0: है शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: किशोर कुमार और लता मंगेशकर, फिल्म का नाम है दाग, गीतकार साहिर लुधियानवी है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: जयमाला कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत भारतीय सेना, गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। इंद्रधनुष में आप सुनेंगे गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद गजलें। तो पहले समाअत फरमाइए बेगम अख्तर की आवाज में हामिद लखनवी का ये कलाम।

बेगम अख्तर की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी। और आइए अब सुनते हैं डॉक्टर राही माजी अशोक खोसला।

गुलदस्ता के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे चंद गजलें और अब इंद्रधनुष कार्यक्रम खत्म होता है। ये था आज का इंद्रधनुष कार्यक्रम।

श्रोताओं, हवा महल में आइए आज आपको सुनवाते हैं झलकी। जरा सी आंख लग गई। लेखक और निर्देशक गिरीन्द्र प्रसाद।

0: दुनिया में समस्याओं का क्या कहना, एक से बढ़कर एक होती हैं। फिर समस्याएं देश विदेश की अलग होती हैं, गांव और शहर की अलग होती हैं, परिवार की अलग होती हैं, व्यक्ति व्यक्ति की अलग होती हैं, यहां तक कि पति पत्नी की समस्याएं भी कुछ अलग ही होती हैं। तो इन्हीं समस्याओं की कुछ वानगी आपको पेश करता हूं। जी हाँ, इनसे मिलिए। आप एक ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी से परेशान हैं और बेचारे किस्मत को कोस रहे हैं।
1: हे भगवान, लगता है आज फिर सब्जी जल रही है। अभी अभी तो रसोई में थी, कहाँ चली गई? अब मैंने कहा अरे भाग्यवान कहाँ चली गई, देखो सब्जी जलकर खाक हो गई है ही नहीं, पता नहीं कहाँ सोई है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, इस महंगाई में रोज कुछ न कुछ जलाकर बर्बाद कर देती है। कभी सब्जी जल रही है तो कभी दाल, बा जाए ऐसी पत्नी से।
2: क्या हो गया? क्यों जी, घर को मछली बाजार बना दिया है क्या?
1: लो और सुनो, मैं ही घर को मछली बाजार बना रहा हूँ। अरे देवी जी, तुम्हारी सब्जी जलकर खाक हो गई, कहाँ चली गई थी?
2: मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं कहीं चली जाऊँ, दिन रात घर में कोल्हू की बैल की तरह चलती रहती।
1: हाँ हाँ, तुम ही तो एक अजूबा की पत्नी हो जो घर का काम करती हो, मैं ही बैठे बैठे मस्ती मारा करता हूँ।
2: पर जनाब, अभी आप तो घर में ही थे, फिर सब्जी जल कैसे गई?
1: चूल्हे पर चढ़ी थी इसलिए जल गई, और कैसे जलेगी?
2: अगर आप चीखने और चिल्लाने के बजाय जरा सब्जी ही उतार लेते तो आपकी शान नहीं बिगड़ जाती।
1: लो और सुनो, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है, अपने तो पलंग पर लेटी थी और मैं बाथरूम से निकलकर रसोई में आकर सब्जी उतार लेता, क्यों?
2: आप तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं पलंग पर सोई रहती हूँ और घर का सारा काम आप ही तो कर देते हैं। ठीक है, मेरी तो किस्मत ही फूटी।
1: अरे किस्मत तो मेरी फूटी है श्रीमती जी, कि आज फिर मुझे जली सब्जी ही खानी पड़ेगी। हे भगवान,
2: क्या करूं जी, अब और सब्जी तो घर में है नहीं जो फिर से बना दूं। आपने खुद ही सब्जी जलाई है तो मैं क्या करूं?
1: हाँ, हाँ, और सुनो, मैंने ही सब्जी जला दी, पर ये क्यों नहीं कहती कि मैं सो गई थी?
2: हाँ हाँ, मैं तो सोई ही रहती हूँ, हमेशा आप यही कहते हैं। अरे वो तो निगोरी जरा सी आंख लग गई थी।
0: देख लिया आपने, पत्नी बेचारी नींद से ही परेशान है, जब तब इनकी आंखें लग जाती हैं। आखिर बेचारी करे भी तो क्या, अपनी आदत से लाचार जो हैं, बेचारे पति को तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। खैर छोड़िए साहब, ये तो इनकी अपनी समस्या थी, पर ये तो सज्जन ट्रेन में बैठे हैं, ये भी किसी से कम नहीं है। जरा सा मौका मिला कि खर्राटे देने लग जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि कहाँ जाना है इन्हें। भाई साहब, जब आप सफर में निकलते हैं तो इतना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा कि कौन सी जगह उतरनी है, अगर नहीं तो आप भी इन्हीं की तरह ही परेशान होंगे।
3: ये कौन सा स्टेशन है भाई साहब?
4: अभी दिल्ली दूर है भाई साहब, इतनी नाम से सोइए।
3: अरे नहीं भाई साहब, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे तो कानपुर ही उतरना है।
4: कानपुर? कानपुर तो चार स्टेशन पीछे ही छूट चुका है, अब आप अगले स्टेशन पर उतर जाइए।
3: पर कानपुर छूट कैसे सकता है, ट्रेन तो इतनी फास्ट नहीं है।
4: ट्रेन तो फास्ट नहीं है, पर आपकी नींद तो बहुत फास्ट है जनाब।
3: वाह साहब, आप मजाक करते हैं, यह तो आपसे हुआ नहीं कि मुझे कानपुर में ही जगह दें और अभी हंस रहे हैं।
4: हंसू नहीं तो क्या करूं, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ा ही था कि साहब को कानपुर में उतरना है तो कानपुर पर उतार दूं।
3: छोड़िए साहब,

0: आप जैसों के मैं मुंह नहीं लगता।
1: खबरदार,
0: तमीजी नहीं है।
1: खबरदार, जो तमीज की बात कही, यदि खुद तमीजी नहीं है तो दूसरे को क्या तमीज सिखाएगा?
0: देखो, मैं तुमसे मुंह नहीं लगता, चुप हो जाओ वरना मैं सबक सिखा दूंगा।
1: तुम्हारी क्या मजाक, तुम मुझे सबक सिखाओगे? तू आया था झापड़
0: तुम झापड़ मारोगे?
2: आप लोग आपस में झगड़ते ही रहेंगे या आप भी उतरेंगे? और आगे जाने का इरादा है क्या?
0: हाँ साहब, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो दूसरों की परेशानी में मजाक उड़ाते हैं।
1: फिर तुम जवान संभाल कर बातें करो, नहीं तो ट्रेन से फेंक दूंगा।
2: छोड़िए साहब, आप ही चुप हो जाइए। इन्हें दूसरों से उलझने के पहले अपनी गलती खुद ही मान लेनी
0: चाहिए। वाह साहब, आप भी खूब बोलते हैं। मेरी क्या गलती है, जरा सी आंख ही तो लग गई।
3: जी हाँ, देख लिया आपने कैसे कैसे लोग होते हैं, गलती खुद करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। ऐसे लोग खुद तो परेशान होते ही हैं, दूसरों को भी परेशानी में डाल देते हैं। बेचारे की हालत तो देख ही लिया आपने, सोने के चक्कर में कानपुर से चार स्टेशन आगे निकल गई है बेचारे। साथ के यात्रियों से तो झगड़ा हुआ ही, अब स्टेशन पर भी टिकट के अधिक पैसे लगेंगे इन्हें, और वापस तो टिकट कटाकर आएंगे ही। सोने वालों की कहानी भी बड़ी निराली होती है भाई साहब। ट्रेन में सोना या सभा या सिनेमा भवनों में झपकी ले लेना तो अक्सर होता रहता है, पर दफ्तर में सोने की बात आपने कभी भी सुनी नहीं होगी। तो लीजिए जनाब, दफ्तर के ये बड़े बाबू हैं, जरा आप इनसे मिलिए।
4: बड़ाऊ, बड़ाऊ नमस्कार। मैंने कहा बड़ा बाबू नमस्कार, तबीयत तो आपकी ठीक है ना?
2: क्या
4: तबीयत तो आपकी ठीक है ना बड़ा बाबू?
2: आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप सेल ले लीजिए।
4: बड़ा बाबू, मैं कॉन्ट्रैक्टर चंद्र प्रकाश हूँ, मेरे बिल का क्या हुआ?
2: आपका बिल मैंने बड़ा साहब को भेज दिया।
4: पर मेरा बिल बड़ा साहब के पास क्यों भेज दिया? वहाँ से तो पास होकर परसों ही आ गया था, आज तो चेक देने की बात है ना?
2: बड़ा साहब ही देंगे, मेरे पास चेक कहाँ है भाई?
4: कमाल का दफ्तर है, दिन में भी लोग खर्राटे मारते हैं। ठीक है, चलता हूँ मैं बड़ा साहब से ही शिकायत करता हूँ। बाहर है दफ्तर।
5: क्या कहा बड़ा बाबू ने, चेक मेरे पास है? नहीं तो मेरे पास तो कोई कागज वागज नहीं है, कल ही मैंने आपका चेक साइन करके बड़ा बाबू के पास भिजवा दिया था।
4: पर सर, वे तो कह रहे हैं आप ही के पास चेक है।
5: क्या कहा, मैंने कहा ना आपसे मेरे पास नहीं है?
4: पर सर, वे तो सो रहे हैं दफ्तर में।
5: व्हाट, क्या कहा, दफ्तर में आज भी सो रहे हैं? वे अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। चलिए चलिए, मैं खुद देखता हूँ, आइए। बड़ा बाबू, चंद्र प्रकाश जी का चेक इनको दे दीजिए।
2: हाँ तो दिया साहब, आपसे कि यहाँ कोई चेक वेक नहीं है।
5: आप तो होश में है बड़ा बाबू, मैंने कल ही चेक साइन करके आपके पास भेज दिया था।
2: सर आप?
5: हाँ हाँ बड़ा बाबू, मैं। आप अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे, आज से आप घर जाकर चैन से सोइए, मैं अभी आपको सस्पेंड करता हूँ।
2: सॉरी सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए सर, फिर आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
5: नो नो, आई विल डिसमिस यू। आप हमेशा यही कहते हैं लेकिन दफ्तर में सोने से बाज नहीं आते, दिस इज वेरी बैड बड़ा बाबू।
2: सर मैं सोया नहीं था सर।
5: व्हाट, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ।
2: नहीं सर, वो तो जरा सी आंख लग गई।
3: ये थे दफ्तर के बड़ा बाबू, आखिर ये बेचारे करे भी तो क्या। छोड़िए साहब, हमें क्या मतलब उनसे, ये हेडेक तो उनके बॉस का है। फिर ये तो कुछ भी बात नहीं, अब जो नमूना आपको मैं पेश करने जा रहा हूँ ये भी कमाल ही है कमाल। अगर इंसान जाग रहा हो तो आंखें लग भी सकती हैं, पर सोए हुए की आंखें खुली रहें और वो चलता भी रहे तो बात कुछ बनती नहीं। पर आप खुद ही देख लीजिए, ये सज्जन अपने ही घर में कैसे फंस गए हैं।
6: जी सुनते हैं? ओहो सुनिए ना,

0: सुनिए ना, अरे अभी अभी तो सोए थे, कहाँ चले गए? ओह, बाथरूम की बत्ती चल रही है। आप बाथरूम में कब से बैठे हैं जी? अरे रे, वो देखिए दरवाजा खुला है। हाँ, अरे अरे महावीर महावीर, लगता है चोर भागा जा रहा है। देखो चोर चोर, पकड़ो पकड़ो।
1: जय बजरंग बली के, जय बजरंगी बली के। कहाँ मालकिन, किधर चोर है? अरे आप चुप रही मालकिन, चुप रही। अभी उस बदमाश को हम पकड़ के लाते हैं।
0: पकड़ो, जाओ जाओ जल्दी जल्दी। अरे चोर
1: पकड़ लिया। अब क्या बताओ बच्चों, मेरे ही घर में चोरी करने के लिए सुझा था। अरे मालूम नहीं, मेरा नाम बजरंग बली। तेरी गर्दन तोड़ दूँ।
2: अरे गर्दन छोड़ दूँ।
1: अरे तो तुझे प्यार करूँ, तू है कौन? कौन है तू? और कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, तो क्या तू मेरा मालिक है क्या?
0: अरे अरे सुनते हैं जी। ओहो सुनिए तो, बाथरूम से निकले तो बाहर, देखिए चोरी हो रही है घर में। आप सोए हुए हैं, पता नहीं क्या करें, कब तक क्या कीजिएगा। अजी उठिए उठिए उठिए, महावीर पकड़ो पकड़ो।
1: ये लीजिए मालकिन।
0: हाँ बड़ा आया है चोरी करने के लिए।
1: पकड़ा गया। मालकिन कहता क्या था? हमारी सुनी ना, कहता था मुझे चोर दो। मैं चोर नहीं हूँ, लगता है कि तू मेरा मालिक है क्या?
2: अरे चोर नहीं हूँ, अरे मैं तुम्हारा मालिक हूँ।
0: बड़ा आया है गाली देने वाला, बड़ा गाली देने वाला। ला महावीर, जब झाड़ू दे तो
1: अभी लाया।
2: अरे चोर नहीं हूँ।
1: मालकिन मालकिन, चल बत्ती जला के देखते हैं।
0: जला जला। हाँ जी, ये तो आप ही हैं।
1: मालिक है,
0: आप तो हमारे मालिक हैं जी। राम, क्या हुआ महावीर? तुझे अपने मालिक को मार दिया? राम नहीं आई, तेरा हाथ नहीं गल गया? अरे महावीर राम, हे भगवान, तू अभी निकल जा मेरे घर से, अब भी चला जा।
1: मालकिन मालकिन, आप ही ने तो कहा था कि घर में चोर आया है, मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन।
0: हाँ रमा, चोट आई
2: पर क्यों बिगड़ती हो? हाँ रमा, गलती तो मेरी ही थी,
0: चलिए
2: नींद में ही बाहर निकल गया।
1: बजरंग बली,
0: ये लीजिए पानी पी लीजिए।
2: पानी मालिक, बजरंग बली,
0: हे भगवान, आप भी धन्य हैं। मैं तो सोच रही थी कि बाथरूम में आपकी आँख
3: लगी। तो देखा आपने कैसे कैसे नमूने हैं मेरे पास, सोने वालों की कमी नहीं है।
4: जरा सी आंख लग गई, गिरेंद्र प्रसाद की लिखी और निर्देशित झलकी अभी आप सुन रहे थे। ये झलकी हमारे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

ये था फिल्म अशोका का गाना, आवाजें अभिजीत चित्रा के एस और साथियों की। गीतकार थे गुलजार साहब और संगीतकार थे अनु मलिक।

फिल्म रिफ्यूजी का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, युगल स्वर सोनू निगम और अलका याग्निक के। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार अनु मलिक।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें थी, फिल्म का नाम था रिफ्यूजी।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर, मोहम्मद सईद, फरीब साबरी और उनके हमनवा, फिल्म का नाम है हिना, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन। ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है,

0: कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश

0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें

0: अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
0: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम है कोहिनूर।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म काला बाजार से लिया है। गायक स्वर मोहम्मद रफी का है, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत एसडी बर्मन का है।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद और स्वर मोहम्मद रफी का, शब्दकार शकील बदायूनी हैं और संगीतकार रवि हैं।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे

0: टन गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था अनाड़ी। और आइए अब सुनते हैं फिल्म जिद्दी का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत में ढाला है खेमचंद प्रकाश ने।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था जिद्दी। इसे प्रेम धवन ने लिखा था और धुन बनाई थी खेमचंद्र प्रकाश ने। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाजें। फिल्म का नाम है जीने की राह। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा। 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी।

तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

इसके बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

कर गया है। वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। वीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म नीरजा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी नीरजा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने नीरजा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। नीरजा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

रिजा जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी

फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया, जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती हैं।

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सांवरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती।

तो दोस्तों ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान, एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। अमलतास की झालरों पर जब उतरती है चांदनी, हवा के झोंके कुछ और मुखर हो जाते हैं। ताल झूमता है, कुमुदनी हुलस जाती है, तब अचानक होठों पर कोई अधूरी सी बात चली आती है।

कहीं दिल जोड़ता है टूटे हुए तार को, तो कहीं दिल मचलता है बस एक इकरार को। कभी तो मिलता नहीं जरा सा करार, और कहीं छाया है नाजुक एहसासों का खुमार।

ये राज हैं ऐसे जो सरेआम बताए नहीं जाते, ये नखमे हैं दिल के जो हर सांस पर गाए नहीं जाते। इन्हें तो बस वही गा सकता है जिसके दिल में बेपनाह मोहब्बत हो और आवाज हो ऐसी पवित्र कि लगे स्वाति की कोई बूंद हो।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विको टर्मरिक विद फोम बेस, बेहतर त्वचा का एक नेचुरल उपाय।
2: विको टर्मरिक विद फोम बेस मिटाए ऑयली स्किन, पिंपल्स और ब्लैकहेड्स हर वॉश के साथ। पाइए क्लियर, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन नेचुरली। विको टर्मरिक विद फोम बेस, बेहतर त्वचा का एक नेचुरल उपाय।

फासले कदमों के नहीं हो, बीच में कई बरस खड़े हो, रातों में जागी हुई आंखें हो, होठों पर खामोश हुए नगमे हो, तो भी कोई सुन ले तो ये नगमे फिर गा सकते हैं और उन आंखों में उतर सकती है नींद की पर।

टप टप कर स्मृतियों की बरसात होती है जब कभी, रात के आंगन का कोना कोना भीग जाता है, अंधेरे के सितार पर गूंज उठता है एक उदास राग, और चांद अपने ख्यालों में डूब जाता है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार, उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में
2: भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Nipunika Shahid. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करें